देह लाली लसी अरुधरी लाल लंगूर बज देव दानव दलन जय जय कपिसूर। हे हनुमान जी, आपका शरीर लाल है और उस पर लाल सिंदूर शोभायमान है और आपकी लाल रंग की पूछ धारण की हुई है। वज्र के समान मजबूत शरीर वाले आप दुष्टों का नाश करने वाले हैं। हे वीर, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय।

क्या करे न कर सके शिव करे से होई, तीन लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा ना कोई। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि आकांक्षा के साथ 100.7 FM रेनबो पर।

जैसे नदी अपने जल के लिए और वृक्ष अपने फल के लिए कभी चिंतित नहीं होते, वैसा ही स्वभाव एक सच्चे भक्त का होता है। वह केवल श्रेष्ठ कर्म करता है और अपनी जीवन रूपी नैया उस परम मल्लाह अर्थात ईश्वर को सौंपकर निश्चिंत हो जाता है।

सुख में भगवान को याद करना कृतज्ञता है और दुख में उन्हें याद करना विश्वास। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब उनका आभार मानना ही सच्ची भक्ति की शुरुआत होती है।

जीवन का नाम ही उतार चढ़ाव है। भक्ति हमें समस्याओं से भागना नहीं बल्कि उनके बीच शांत रहकर मुस्कुराना सिखाती है। जब हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो पहाड़ जैसी मुसीबत भी राई के समान लगने लगती है। याद रखिए, सोने को कुंदन बनने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही कठिनाइयां हमें निखारने के लिए आती हैं। हर समस्या में प्रभु आपके सहाय बने, इसी मंगल कामना के साथ मुझे यानी कि आकांक्षा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम पुष्पांजलि से।

हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड एट दिस टाइम आप कनेक्ट हो चुके हैं सिटी की म्यूजिकल हार्टबीट एफएम रेनबो कानपुर के साथ। जी हाँ, जिसे आप सुनते हैं 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर। वैसे डियर लिसनर्स, आपने मेरी आवाज सुनकर पहचान ही लिया होगा मुझे। यस ऑफ कोर्स, मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो हम सफर आरजे कौसर। गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम के इस सफर पर तो हार्टली वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपका इस प्यारी सी सुबह के मॉर्निंग शो में। आज सोमवार है, शक संवत 1948।

ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, तदनुसार 18 मई सन 2026। तो डियर लिसनर्स, आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इन्हीं गुड विशेस के साथ करती हूँ गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम का आगाज़ इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ।

जी हाँ, हवाएं कहीं भी आपको नहीं ले जाने वाली हैं। जी हाँ, लेकर वो सीधे आइए हमारे एफएम स्टूडियो की ओर, जिसे आप सुन रहे हैं 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर। और आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो हम सफर कौसर। हवाएं चल रही हैं क्योंकि सुबह हो चुकी है, स्टूडियो में आरजे कौसर आ चुकी है और प्रोग्राम शुरू हो चुका है। गुड मॉर्निंग कानपुर। तो नींद की आगोशियों से अब बाहर आ जाइए, चल दीजिए इस सफर पर, क्योंकि इस मॉर्निंग शो में म्यूजिक तो है ही, इसके साथ ही बहुत कुछ है आपके लिए। पर फिलहाल अभी आपको बता दूं उन प्रोग्राम्स के बारे में जो आप आज एफएम रेनबो कानपुर के स्टूडियो से एंजॉय करेंगे। तो अभी आप हैं गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, इसके बाद 8:30 पर सुनिएगा कुछ खूबसूरत ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग्स। प्रोग्राम होगा सुरों की पुरानी महफिल। सुबह 9:00 रस बहार प्रोग्राम का आप रोज ही की तरह लुत्फ उठा सकते हैं। इसमें आज की थीम है म्यूजियम, जहां चीजें नहीं कहानियां और निशानियां रहती हैं। इसके तुरंत बाद चित्रपट से प्रोग्राम में एंजॉय करिएगा कुछ ब्यूटीफुल से सॉन्ग्स। सुबह 11:00 हम नवा कार्यक्रम में मेरे साथ यानी आरजे कौसर के साथ हम नवा होंगी आरजे मीनाक्षी। इसके बाद दिन में 3:00 म्यूजिक आर प्रोग्राम आप सुनेंगे और 3:45 पर होगा हमारा हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम हेल्थ मैगजीन, जिसमें आज सुनिएगा डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा से दीपशिखा गुप्ता की बातचीत का सेकेंड पार्ट। विषय होगा सामान्य स्वास्थ्य। और शाम 4:00 एंजॉय करिएगा बैक टू बैक म्यूजिक। तो ये थी प्रोग्राम डिटेल्स, आप एंजॉय करिए एक बहुत ही लवली सा सॉन्ग आपके लिए प्ले कर रही हूँ। लवली भी है, सूदिंग भी है, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। बस एंजॉय करते रहिए 102.2 एफएम रेनबो के साथ। और आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो हम सफर कौसर, इस गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम के सफर पर।

जी हाँ, जन्म जन्म जन्म साथ रहना यूं ही, और यही तो मेरा आपसे कहना है कि हमेशा जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुनने को मिलते हैं, आपका एंजॉय होता है हर तरह से, आपका मनोरंजन करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। और साथ ही साथ चलने में जो सुकून है ना, वो तन्हाई में कहाँ जनाब। आपके साथ फिलहाल मैं हूँ आज आपकी अपनी रेडियो हमसफर आरजे कौसर, और अब वक्त है आज के विचार का, यानी कि मॉर्निंग थॉट का, क्योंकि एक अच्छा विचार पूरे दिन को बना सकता है पॉजिटिव एंड पावरफुल। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। तो गाइज, अपनी लाइफ में अच्छे दोस्त बनाइए, और अगर आपके पास एक भी अच्छा दोस्त है ना, और वो आपका सच्चा मित्र है, तो बस फिर सोचिए कि लाइफ की आधी परेशानियां तो आनी ही नहीं है आपके पास। फिलहाल बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग आपके पास भेज रही हूँ, सुनिए और एंजॉय करिए।

Hey guys, you are listening 102.2 FM Rainbow Kanpur with your RJ Kausar. So, ongoing program, hey good morning Kanpur, और इसमें अब सोशल मीडिया पर ब्लिंक करती हुई कुछ इम्पोर्टेंट ट्वीट्स का वक्त है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक्स हैंडल पर यह पोस्ट किया गया है कि लगातार कम कूलिंग, ज्यादा बिजली बिल और बार बार खराबी, ये आपके स्प्लिट एसी गुणवत्ता पर सवाल हो सकते हैं। बेहतर प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता और सुरक्षित उपयोग के लिए BIS क्वालिटी मार्क वाला ही स्प्लिट एसी खरीदें। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण स्वगणना के अंतर्गत ऑनलाइन प्रपत्र भरकर प्रदेशवासियों से 21 मई तक इस प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता की अपील की। सोशल मीडिया के एक हैंडल पर उन्होंने लिखा कि ये देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है, जिसका उद्देश्य हमारी जनगणना हमारा विकास की भावना के साथ सटीक आंकड़ों के आधार पर समग्र, समावेशी एवं सुनियोजित विकास को गति देना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भरता भारत की अगली पीढ़ी की विकास यात्रा तय करेगी। उन्होंने आगे लिखा कि देश क्वांटम तकनीक, डीप टेक फाइनेंसिंग और उद्योग बेस्ड शोध के जरिए नवाचार आधारित विकास के नए दौर की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ डियर लिसनर्स, तो ये थी कुछ सोशल मीडिया पर ब्लिंक करती हुई कुछ इम्पोर्टेंट ट्वीट्स, और इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग आपके लिए।

जी हाँ, जब ऐसे देश के ऊपर जो गाने बने हैं ना, जब वो कानों में सुनाई देते हैं तो देश के प्रति जो प्रेम है और जो जज्बा है ना, और भी ज़्यादा वो कुलाची मारने लगता है, और भी ज़्यादा बिल्कुल दिल भर जाता है देशभक्ति के प्रेम के जज्बे से। और चलिए अब जरा नजर डाल लेते हैं अतीत के आईने पर कि आखिर क्यों खास है आज का दिन, आज की तारीख। दोस्तों, आज है 18 मई और आज दुनिया भर में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जिसमें कि हमारी संस्कृति और विरासत को सहेजने का संदेश दिया जाता है। साथ ही ये दिवस हमें अतीत से जुड़ने और उसे समझने की प्रेरणा भी देता है। साथ ही 18 मई भारत की वैज्ञानिक ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण कर भारत ने दुनिया को अपनी पावर, अपनी शक्ति का एहसास कराया था। और जब अब इतनी खूबसूरत बात बताई है आपको, इतना खास दिन आपको बताया है, तो कुछ इतना ही खूबसूरत सॉन्ग भी तो होना चाहिए ना। तो बस देर किस बात की, लीजिए मैंने प्ले कर दिया आपके लिए ये सॉन्ग।

You're listening FM Rainbow Kanpur only on 102.2 with your RG Kausar. Ongoing program है Good Morning Kanpur. And अब इस शो में रुख अपना थोड़ा सा मोड़ते हैं देश विदेश की ताजा अपडेट्स की तरफ. तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे पहुंचेंगे. प्रधानमंत्री श्री मोदी की नॉर्वे की ये पहली यात्रा होगी और पिछले 43 वर्ष में नॉर्वे की यात्रा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं. साथ ही सिंधु जल संधि पर न्याय अधिकरण के फैसले को भारत ने किया खारिज. बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच 19 और 20 मई को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे चीन. तो देश विदेश की ताज़ा अपडेट्स में बस इतना ही, लेकिन आपको लेकर चलते हैं बड़ी ही ख़ास जगह. और वो ख़ास जगह क्या है ये तो आपको ये सॉन्ग सुनने के बाद ही पता चलेगा.

तो दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में एक बार फिर से अपने रुख को थोड़ा सा टर्न करते हैं, और जिस तरफ टर्न होंगे वहां पर मिलने जा रही है आपको शहर और उसके आसपास की इम्पोर्टेंट अपडेट्स। तो शहर के घंटाघर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते ट्रैफिक पुलिस हो गई है सख्त। तो चलना होगा रोड पर अब जरा संभल कर। इस घंटाघर चौराहे को जाम मुक्त करने के लिए अपने एक्शन मोड में आ गई है वहां की ट्रैफिक पुलिस। तो अब अगर किसी ने गलत पार्किंग की तो क्रेन उनकी गाड़ी को उठा लेगी। और यही नहीं, अगर एम्बुलेंस को रास्ता ना दिया तो होगा आप पर एक्शन। तो जरा संभल कर अगर आप घंटाघर चौराहे की तरफ जा रहे हैं तो जो बातें मैंने बताई हैं आपको उसको आपको ध्यान में जरूर रख कर जाना है। अच्छा, अगली जो हमारी खबर है उसको सुनकर आप एकदम कूल हो जाएंगे, और वो ये है कि गर्मियों की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने पैसेंजर्स की फैसिलिटी के लिए 14 यानी कि 14 समर स्पेशल ट्रेन्स के संचालन का फैसला किया है।

और अगली जो ये खबर है ये है कानपुर के रूरल एरियाज में पर्यावरण संरक्षण के साथ हरियाली बढ़ाने के लिए ग्रीन चौपाल की शुरुआत की गई है। और जुलाई से पहले 590 ग्राम सभाओं में ग्रीन चौपाल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो माय डियर लिसनर्स, अपडेट्स अभी और भी हैं, यहीं पर ख़त्म नहीं हो रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पर माहौल को म्यूज़िकल बनाने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग पहले प्ले करूँगी, उसके बाद आपको कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स से रूबरू कराऊँगी।

तो भाई गाना था तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपके ऊपर तो सुरूर चढ़ा हुआ है और ये सुरूर है गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम शो का। और ये सुबह सुबह का जो वक्त होता है ना, वैसे भी इतना खूबसूरत होता है कि इसका सुरूर तो अपने आप ही चढ़ जाता है। और जब आप

एफएम रेनबो से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो ये सुरूर आपका जो है ना ये डबल हो जाता है, यानी कि दो गुना। तो बस इसी सुरूर को लेकर, इसी खुशनुमा माहौल के साथ मैं हूँ आज आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो हम सफर आरजे कौशल, और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। तो बात चल रही थी अपडेट्स की, आपको कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स से रूबरू कराया जा रहा था, जो करा रही थी मैं, और इसके आगे चलिए चलते हैं एक और अपडेट आपको बताते हैं कि अगर आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ज़रा गौर से सुनिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस वर्ष यात्रियों की संख्या बढ़ाई जाने के बाद अब यात्रा के खर्च में 35,000 रुपये यानी कि 35,000 रुपीज़ बढ़ गए हैं। तो इस बात के लिए अपना माइंड भी ज़रा सेट करके रखिए और कैलाश मानसरोवर की यात्रा ज़रूर करिए। साथ ही शहरवासियों, आपको ये भी अपडेट दे दूं कि जीटी रोड पर रामा देवी से गोल चौराहे तक बनने वाले एलिवेटेड रोड का शिलान्यास 25 मई को किया जाएगा। करीब 11 किलोमीटर लंबे 4 लेन के एलिवेटेड रोड के कंस्ट्रक्शन से जीटी रोड पर जाम से निजात मिलेगी, और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जाम में लोग फंस जाते हैं और जो उनका इम्पॉर्टेंट काम होता है उसके लिए वो बहुत लेट हो जाते हैं, ख़ास करके जो बीमार होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनको जल्दी हॉस्पिटल पहुँचना होता है लेकिन देरी की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये बड़ी अच्छी सी बात है कि जाम से निजात मिलेगी इससे। साथ ही एक और बड़ी सी अच्छी सी खबर है आपके लिए कि यूपी के कुछ बड़े शहरों में मेट्रो का सफर और भी सुगम होना जो है ना वो बिल्कुल स्टार्ट हो गया है, और कानपुर लखनऊ में अब घर के पास से ही मिलेगा आपको वाहन, और जो आप के जो पार्किंग का झंझट है ना जो स्टेशन के पास, वो ख़त्म हो जाएगा, और इसके लिए 114 यानी कि 114 नए स्पॉट्स तय किए गए हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी अपडेट आपके लिए थी कि इससे भी जो आपके घर के पास से ही एकदम सुगम साधन आपको मुहैया हो जाएगा और स्टेशन के पास भी इतनी भीड़ नहीं रहेगी। तो ये आज की कुछ अपडेट्स थी और बहुत ही खूबसूरत अपडेट्स थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो आपके लिए सामने मैंने रखी, और बस इसके बाद आपके लिए एक बहुत अच्छा सा गाना तो तैयार है ही, और सच में सॉन्ग बहुत अच्छा है, आपको पसंद भी आएगा, बस इंजॉय करते रहिए।

0: और आपका इतना खूबसूरत सा ये प्रोग्राम सुनना तो बनता है ना। तो डियर लिसनर्स, जहाँ पसीना बनता है पहचान और मेहनत लिखती है जीत, तो अब पेश है खेल जगत की खबरों की ये सीरीज। एज यू नो बैटर की चल रहा है आईपीएल, तो कल इसमें दो मुकाबले हुए, पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया और दूसरा मैच राजस्थान रॉयल्स को हराकर दिल्ली कैपिटल्स ने अपने नाम कर लिया। और आज का मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। और सऊदी अरब इस साल अक्टूबर में अपनी पहली फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग शुरू करने जा रहा है, जिसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और युवराज सिंह को इस लीग का एम्बेसडर बनाया गया है। महिला T20 वर्ल्ड कप का वार्म अप शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 6 जून से शुरू होंगे अभ्यास मैच। कार्डिफ में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज से भिड़ेगी टीम इंडिया। तो बस सारे प्लेयर से कहना यही है कि किसी बात की परवाह नहीं करनी है, बस खेल भावना को बनाए रखना है और खेलना है और बस जीत आपकी ही होगी।
1: पत्थर के सबरा।

मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भीषण गर्मी के साथ उमस बढ़ रही है। हालांकि कई जिलों में तेज आंधी, धूल भरी हवाएं और हल्की बारिश की भी संभावना बनी हुई है। और मई के दूसरे सप्ताह में ही गर्मी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। और कल जो है वो जो कल का दिन रहा वो इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा है। तो चलिए आपको ये भी बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी 5 दिनों में आसमान साफ रहने के कारण वर्षा की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। और आज का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और इसके बाद एक गाना आपके लिए ज़रूर प्ले करूंगी, लेकिन बस उसके पहले आपसे चलते चलते बस इतना कहना चाहूंगी कि आपकी हर सुबह यूं ही मुस्कुराती रहे, जिसके साथ आप भी मुस्कुराते रहें, हर दिन नई उम्मीदों की धूप लेकर आए और दिल में खुशियों की हल्की हल्की बारिश होती रहे। गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम के साथ मैं थी आपके साथ आरजी कौसर। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते प्ले कर रही हूँ ये लवली सॉन्ग जिसके सुर आपकी सुबह को और भी खूबसूरत बना देंगे। और इस गाने के बाद आपको देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए अपने दिल्ली केंद्र से सीधे कनेक्ट कर देंगे। फिलहाल तो आपके लिए ये गाना।

जी हाँ, परवाह बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन अभी परवाह करना है मौसम क्यों, क्योंकि मौसम जो है ना वो अपने अपने तेवर बड़े दिखा रहा है इस वक्त, और पूरे उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में इस समय मौसम का

आकाशवाणी से समाचार में विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब

0: समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोटेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोटेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल

0: राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
1: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
3: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

0: चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और एआई में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का यह बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded India-EU FTA for the benefit of their people. We have more details on this from our correspondent in Sweden covering the Prime Minister's visit.
3: Central to the visit was the adoption of a joint action plan which aims to double bilateral economic exchange within 5 years. Under the theme India-Sweden Stronger Together toward 2047, both nations committed to holding a bilateral trade and investment summit in India in 2027. In the realms of technology and climate action, the visit secured significant agreements to co-create solutions 21st century. Both nations launched a joint innovation partnership 2.0 and agreed to establish a virtual India-Sweden Joint Sciences and Technology Center focusing on AI, 6G, quantum computing and life sciences. Furthermore, Sweden-India Technology and AI Corridor will be strengthened to connect the two nations' startup ecosystem. On the climate front, the leaders announced the third phase of the leadership group for industrial transition, significantly expanding cooperation in green steel and low-carbon industrial transformation. Defense and security cooperation have transitioned from a traditional buyer-seller model to a long-term industrial partnership with Swedish companies actively investing in India's defense production corridors. Prime Minister specifically thanked Sweden for its support following the Pahalgam terror attack, reaffirming a joint commitment to global stability. Finally, the visit celebrated a shared intellectual legacy and broader regional cooperation. To commemorate the centenary of Gurudev Rabindranath Tagore's historic visit to Sweden, both countries initiated the Tagore Sweden Lecture Series and exchanged unique gifts including replicas of Tagore's handwritten epigrams found in Swedish archives. The presence of European Commission's President Ursula von der Leyen highlighted the visit's importance to the India-Euro partnership, with a renewed push for the India-Euro Free Trade Agreement, described as the mother of all deals, to unlock new opportunities for innovators and investors alike.
4: We succeeded indeed in concluding our landmark trade agreement. We call it the mother of all deals. And just look at some of the figures. A shared market of over 2 billion people, that is close to one quarter of global GDP. Over 90% of tariff cuts. Enormous opportunity to grow trade and investment. From here in Gothenburg, Scandinavia's largest trading port, to Mundra port in your home state in Gujarat.
3: Sakshi Singh, Akashwani News, Gothenburg, Sweden.
2: Prime Minister Modi has invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission. During an interaction with select Swedish CEOs in Gothenburg, Mr. Modi made a strong pitch to Swedish companies to enhance their presence in India in manufacturing, green hydrogen mission, clean energy and other sectors. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences and digital technologies. Highlighting India's rapid economic transformation, Mr. Modi mentioned about strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next-generation infrastructure development in India.
5: Vodafone, Ericsson, Nokia, ओरांज जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है भारत 5G से 6G ट्रांजिशन AI एनेबल्ड नेटवर्क्स सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है.
2: The Ministry of External Affairs has said that business leaders and CEOs who met Prime Minister Narendra Modi in Sweden expressed strong interest in India and appreciated the country's transformation driven by sustained economic reforms over the past several years. Addressing reporters after the European Roundtable Industry Meeting, MEA Secretary of West, C.B. George, said that CEOs and senior industry leaders highlighted the significant changes they have witnessed in India in recent years,
6: which was attended by a large number of key companies in Europe. I would like to highlight that in his

आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण

सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

आप सुन रहे हैं 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर सिटी की म्यूजिकल हार्टबीट एफएम रेनबो कानपुर। मैं आरजी कौसर वेलकम कर रही हूं आपका सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम में। जी हां, आपको ले चलूंगी कुछ दशक पहले के दौर में, सुनवाऊंगी उस दौर के कुछ शानदार गीतों को जिनमें मस्ती, रफ्तार और दिल को झूमने पर मजबूर कर देने वाला एक अंदाज होगा। गाने थोड़े से पुराने होंगे पर एनर्जी होगी इन सॉन्ग्स में भरपूर। तो एंजॉय करिए इस प्रोग्राम का ये फर्स्ट सॉन्ग। और ये फर्स्ट सॉन्ग किस फिल्म से हमने लिया है ये आप खुद अंदाज लगाइए पहले, और फिर इस गाने के बाद मैं आपको इस गाने की पूरी डिटेल बताऊंगी।

जी हाँ, मैं भी आपसे पूछ रही हूँ कि आर यू रेडी। जी हाँ, रेडी इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या इस गाने की डिटेल्स सुनने के लिए आप रेडी हैं। तो बिल्कुल, अगर रेडी हैं तो मैं बता देती हूँ कि ये गाना मैंने लिया था नाकाबंदी फिल्म से, जिसे गाया था उषा उत्थुप ने। जी हाँ, उनकी तो आवाज़ ही अलग है, अलग से पहचान ली जाती है। और इस गीत को लिखा था अनजान ने, म्यूज़िक दिया था बप्पी लहरी ने, और एक और बहुत खूबसूरत ऐसा ही बिल्कुल इसी अंदाज का गीत आपके लिए लेकर आ रही हूँ सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम में। बस इंजॉय करते जाइए।

जी हाँ, ये हवा हवाई जो स्क्रीन पर बनी थी उनका नाम था श्रीदेवी और फिल्म का नाम था मिस्टर इंडिया। और जो ये खूबसूरत आवाज़ में भी आपने गाना सुना, ये आवाज़ थी कविता कृष्णामूर्ति की और इन बोलों को लिखा था जावेद अख्तर ने, जिसे संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं चालबाज फिल्म का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग, जिसे गाया है अमित कुमार और कविता कृष्णामूर्ति ने। आनंद बख्शी के गीत को संगीत में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

चालबाज फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, और अब इसके बाद शुरू की पुरानी महफिल प्रोग्राम में आ रहा है याराना फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, गीत अनजान के और संगीत है राजेश रोशन का। शुरू की पुरानी महफिल प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर के स्टूडियो से, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी रेडियो हम सफ़र कौसर।

यारा ना फिल्म का ये सॉन्ग अभी आपने सुना, और बस अब प्रोग्राम का वक्त इतना नहीं रह गया है कि आपको और बहुत सारे गीत सुनवाऊँ। मेरा मन तो बहुत है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स आपको सुनवाऊँ, लेकिन वक्त का तकाजा है कि बस एक गीत आपको और सुनवाऊँ, और ये है मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से हमने लिया है इसे। आशा भोसले, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की मिली जुली आवाज़ें हैं इस गीत में। अनजान के गीत को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

जी हाँ, प्यार से ही तो दुनिया है, प्यार से ही दुनिया चलती है। बस अपने व्यवहार को अच्छा रखें, अपनी बोली को मीठा रखें और बस जीत लें सबका दिल, यही तो जिंदगी है। फिलहाल सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम आप सुन रहे थे और मैं कौशल लेती हूँ अब इस प्रोग्राम से इजाज़त और बस आपको मिलती हूँ अगले प्रोग्राम रस बहार के साथ। थोड़े से इंतज़ार के बाद बने रहिए 102.2 FM रेनबो के संग।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 3:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
2: हेलो दोस्तों, वेलकम टू रस बहार प्रोग्राम 102.2 FM रेनबो के स्टूडियो से मैं RJ कौसर एक बार फिर आपका वेलकम कर रही हूँ। दोस्तों जरा सोचिए, अगर दुनिया में ये जो संग्रहालय हैं जिन्हें हम म्यूजियम कहते हैं, अगर ये ना होते तो हम अपने इतिहास को कैसे छुपाते। तलवारें सिर्फ किताबों में होती, राजाओं की कहानियाँ सिर्फ अफवाह लगती और हजारों साल पुरानी सभ्यताओं की सांसें हम तक कभी पहुँच ही ना पाती। म्यूजियम वो जादुई जगह है जहाँ वक्त रुक जाता है और इंसान अपने अतीत से आमने सामने मिलता है।

है। तो दोस्तों, आज हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो बस इस खास दिवस पर मैंने सोचा कि क्यों ना ख़ास बातें भी की जाएं आपके साथ, कि म्यूज़ियम वो है जहां चीज़ें नहीं कहानियां और निशानियां रहती हैं।

जी हाँ, कहते हैं कि अगर अपने शहर और इतिहास को समझना हो तो उसके संग्रहालय ज़रूर देखिए, और अपने शहर का जो कानपुर संग्रहालय है ना भाई, उसको तो आप ज़रूर देखने जाइए। कानपुर संग्रहालय जहाँ 1857 की क्रांति से जुड़ी यादें, पुराने सिक्के, हथियार और दुर्लभ तस्वीरें आज भी संभाल कर रखी गई हैं। सोचिए, जिन चीज़ों को कभी असली वीरों ने इस्तेमाल किया होगा वो आज भी हमारे सामने मौजूद हैं।

इसके अलावा कानपुर का जेके टेम्पल सिर्फ एक टेम्पल नहीं बल्कि यहाँ भारतीय संस्कृति और भारतीय कला से जुड़ी कई रेयर कई दुर्लभ चीज़ें भी देखने को मिलती हैं हमें। वहाँ जाओ तो ऐसा एहसास होता है कि संस्कृति और आधुनिकता एक साथ मुस्कुरा रही हो।

संग्रहालयों की। ये तो बात हमने अपने कानपुर शहर की करी थी, पर दुनिया में ना जाने कितने म्यूजियम ऐसे हैं जिनमें एकदम अनमोल चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अमेरिका के स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में लोग असली मून रॉक को देख सकते हैं। मून रॉक यानी कि चंद्रमा का एक टुकड़ा। दुनिया के कुछ म्यूजियम्स में डायनासोर के असली कंकाल भी देखे जा सकते हैं। और मून रॉक को देखने के बाद सोचिए ज़रा कि इंसान ने सिर्फ चांद तक का सफ़र तय नहीं किया, उसकी यादें भी धरती पर सहेज ली गईं।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।

दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है ये रस बहार और रस बहार प्रोग्राम आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर के स्टूडियो से और मैं इस प्रोग्राम के साथ हूँ आपकी अपनी रेडियो हम सफ़र कौशल। आज इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे सेलिब्रेट किया जा रहा है तो आज की थीम है म्यूज़ियम, जहाँ चीज़ें नहीं कहानियाँ और निशानियाँ रहती हैं। दोस्तों भारत के संग्रहालय भी किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है। कहीं मुगलों की तलवारें हैं, कहीं स्वतंत्रता

नानियों की यादें, तो कहीं हजारों साल पुरानी मूर्तियां, और दुनिया के कुछ म्यूजियम्स तो इतने अजीब हैं कि लोग भी हैरान रह जाते हैं। कहीं सिर्फ टूटे हुए रिश्तों की यादें रह जाती हैं। और इस बात पर आपको बताऊं कि क्रोएशिया के जोग्रेव सिटी में म्यूजियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप है, जिसमें लोग अपने टूटे रिश्तों की निशानियां जमा करते हैं, जैसे पुरानी चिट्ठियां, गिफ्ट्स और पिक्चर्स यानी कि तस्वीरें। है ना बहुत अजीबोगरीब बात। जी हाँ, यही तो खासियत है हमारे भारत की और हमारे भारत के गौरव की।

वेल गाइज, आज के मॉडर्न म्यूजियम तो और भी कमाल के हो चुके हैं। कहीं 3D शो चलते हैं, कहीं वर्चुअल रियलिटी से आप इतिहास को जी सकते हैं। यानी कि संग्रहालय अब सिर्फ देखने की जगह नहीं रही है, बल्कि फील करने का एक्सपीरियंस बन चुके हैं। बच्चे हो या बड़े, हर किसी को वहां जाकर लगता है जैसे वो टाइम मशीन में घूम कर आए हो। और ऐसे ही मॉडर्न म्यूजियम्स हैं दिल्ली का नेशनल म्यूजियम और लखनऊ का स्टेट म्यूजियम, जो बोलते हैं अपनी कहानी।

और दोस्तों अपने कानपुर शहर की बात एक बार फिर से यहाँ पर करूँगी मैं। कानपुर की हिस्ट्री 1857 की क्रांति से बहुत ही डीपली, बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई है और नाना राव पार्क के आसपास का इलाका आज भी उन संघर्ष की कहानियों को सुनाता है। संग्रहालयों में रखे दस्तावेज बताते हैं कि आज़ादी सिर्फ शब्द नहीं बल्कि लाखों कुर्बानियों की कहानी है। दोस्तों कानपुर सिर्फ उद्योग और गंगा किनारे बसे एक शहर के रूप में ही नहीं बल्कि अपने इतिहास और अपनी विरासत के लिए भी जाना जाता है। और जो यहाँ का एलन फॉरेस्ट जू है ना, वो भी म्यूजियम है, उसमें वन्य जीव और दुर्लभ जीव जंतुओं से जुड़ी जानकारी लोगों को नेचर के करीब लेती है। इसके अलावा कानपुर में कई कल्चरल सेंटर्स, ओल्ड हैंडीक्राफ्ट, ट्रेडिशनल अटायर और लोक कला भी संरक्षित है। और सच में श्रोताओं, सच कहें तो कानपुर की ये संग्रहालय शहर की यादों का खजाना है।

चलिए दोस्तों, आपको अब उन म्यूजियम्स से रूबरू कराती हूँ जो वर्ल्ड के कुछ सबसे फेमस और ऐतिहासिक संग्रहालय हैं। जी हाँ, जो अपनी कला, संस्कृति और इतिहास के अनमोल कलेक्शंस के लिए जाने जाते हैं। जिनमें पेरिस का लूव्र म्यूजियम, जहां लियोनार्डो दा विंची की फेमस पेंटिंग मोनालिसा और वीनस डी मिलो जैसी हजारों हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं। इसके बाद लंदन का ब्रिटिश म्यूजियम, जो दुनिया का सबसे पुराना म्यूजियम है। इसमें रोसेटा स्टोन और प्राचीन मिस्र की ममी जैसे बेशकीमती आर्टिफैक्ट्स हैं। तो अब जब आप इन जगहों पर जाइएगा तो इन म्यूजियम्स को देखने जरूर जाइएगा।

तो दोस्तों आपसे बात कर रहे थे वर्ल्ड के कुछ फेमस म्यूजियम्स की, तो कुछ म्यूजियम्स के बारे में आपको हमने बताया था इस गाने के पहले। इसके अलावा न्यूयॉर्क का मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, रूस का स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम जहां 30 लाख से ज़्यादा कलाकृतियां हैं, ताइवान का नेशनल पैलेस म्यूजियम, भारत का इंडियन म्यूजियम। जी हाँ, जो भारत का सबसे बड़ा

सब एशिया का सबसे पुराना म्यूजियम है जो कोलकाता में है। और इसके अलावा वॉशिंगटन का स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन जिसमें 19 म्यूजियम गैलरी और एक चिड़ियाघर भी शामिल है। कितना अमेजिंग है ना ये सब कुछ। वैसे दोस्तों सच बताऊं तो ये सभी म्यूजियम्स ना केवल हिस्ट्री को संरक्षित करते हैं बल्कि वे उस दौर की कला और संस्कृति को भी जीवंत करते हैं।

दोस्तों सोचिए, अगर ये म्यूजियम ना होते तो आने वाली जनरेशंस अपने अतीत को सिर्फ किताबों में ही पढ़ पाती। तो दोस्तों आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर वक्त निकालिए और सैर कराइए किसी म्यूजियम की, क्योंकि वहाँ जाकर जब इतिहास की धूल में छिपी स्टोरीज जब आंखों के सामने आती है ना, तब एहसास होता है कि हम कितनी महान विरासत का हिस्सा हैं।

तो दोस्तों रस बहार प्रोग्राम की ये थी खास पेशकश इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर। म्यूजियम जहां चीजें नहीं निशानियां रहती हैं। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। फिलहाल अब अपनी रेडियो हम सफर आरजे कौसर को दीजिए इजाजत रस बहार प्रोग्राम से। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट प्रोग्राम विविधा के साथ। बने रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर पर।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है आपका एफएम रेनबो कानपुर पर। और मैं आपकी अपनी रेडियो हमसफर आरजे कौसर अब लेकर आई हूँ विविधा प्रोग्राम, जिसके तहत रोज बिखरते हैं अलग अलग रंग। आपको पता है आज कौन से रंग बिखरने वाला है? चलिए मैं ही बता देती हूँ कि आज बिखरेगा चित्रपट से का रंग। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत ये रंग है, तो हो जाइए तैयार इस रंग में रंगने के लिए। हेयर कम्स द फर्स्ट सॉन्ग फॉर यू फ्रॉम द मूवी बॉम्बे। लिरिक्स है महबूब के, इस सॉन्ग में म्यूजिक है ए आर रहमान का, और आप ये आवाज़ सुनेंगे रेमो फर्नांडिस की।

नाउ जो सॉन्ग आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ उसे हमने लिया है रंगीला मूवी से, हरिहरन और सरोल लता की वॉइसेस आप इसमें सुनेंगे। एंड लकली इस सॉन्ग में ए आर रहमान का म्यूजिक है और लिरिक्स हैं महबूब के।

और प्रोग्राम के लास्ट में आप एंजॉय करिए ये सॉन्ग संग बाय आशा भोसले और आदित्य नारायण, साथ में रिचा शर्मा भी है और ताल मूवी का ये सॉन्ग है, लिरिक्स है आनंद बख्शी के एंड वाओ वंस अगेन द म्यूजिक इज बाय ए आर रहमान।

तो डियर लिसनर्स, ये था आज का विविधा प्रोग्राम जिसमें आज का रंग था चित्रपट से। अब इस प्रोग्राम से अपनी आरजे हम कौसर को दीजिए इजाज़त, और अब मैं आपसे मिलूंगी ठीक 11 बजे हमनवा प्रोग्राम के साथ, जिसमें आज मेरी हमनवा होंगी आरजे मीनाक्षी। फिलहाल अब आपको ले चलते हैं अपने लखनऊ केंद्र पर।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। यह किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को स्वीडन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वीडन का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना सिर्फ उनका सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह स्वीडन ने के हमारे उन सभी साथियों को भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया है, एक मजबूत आधार दिया। स्वीडन में मिला सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक मिला यह 31वां वैश्विक सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के शहजादजनवां विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा राजनीतिक दल है जो देश की सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम कर रही है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने राष्ट्र प्रथम की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को तैयार किया है। इससे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने कल पीलीभीत में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा है उसे करके दिखाया है। बहराइच नानपारा मार्ग पर थाना मटेरा अंतर्गत ढेवा के निकट कल देर रात हुई सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर घायल हैं। यह हादसा तेज रफ्तार अनियंत्रित

के कंबाइन से टकराने पर हुआ। पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव व एसएसपी ग्रामीण डीपी तिवारी ने बताया कि घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 20 मई से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही विभाग द्वारा कल और 20 मई को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में दिन में कुछ समय कुछ स्थानों पर तेज लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow.
5: जी हाँ दोस्तों, 10:05 का समय और साथ में 17, 18 और 19 सेकंड प्रोग्राम शुरू हो चुका है सुपरहिट सॉन्ग्स। और आज इस प्रोग्राम में आपके साथ है आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, अगले घंटे आप बिल्कुल नॉनस्टॉप म्यूजिक सुनेंगे आपके अपने प्यारे से चैनल FM रेनबो पर। तो पहला ट्रैक आप सबके लिए, इसे एंजॉय कीजिए हमारे साथ, यूं जुड़े रहिए इसी मुस्कुराहट के साथ।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले, तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले।
1: सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी।
2: चलते रे इश्क में पड़ जाते
3: हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी,
1: आपके अपने रेनबो की जबानी।
2: आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी।
4: जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर।
5: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
1: 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें।

0: फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
0: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

10:55 का समय हो चुका है फ्रेंड्स, और ये समय हमें इशारा कर रहा है कि सुपरहिट सॉन्ग को हम यहीं पर वाइंड अप करें और उसके बाद न्यूज ब्रेक, और न्यूज ब्रेक के बाद होगी आपकी हमारी पुनः मुलाकात आपके अपने प्यारे से शो संदेश आपके गीत हमारे में। तो बस इसी अंतिम गीत के साथ, यानी कि सुपरहिट सॉन्ग के इस अंतिम गीत के साथ आपको छोड़ रहा हूं, आता हूं न्यूज में और न्यूज ब्रेक के बाद आपका अपना प्यारा सा शो संदेश आपके गीत हमारे। मैं रहूंगा आपके साथ।

102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं हम नवा प्रोग्राम, और बस लीजिए शुरू हो रहा है हम नवा प्रोग्राम।

0: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे ही होंगे। हम नवा प्रोग्राम में आ चुकी हूँ एक बार फिर से। मैं आपकी अपनी रेडियो हम सफ़र आरजे कौसर, पर इस प्रोग्राम में अब मैं अकेले नहीं हूँ। आपको पता ही है कि अब मेरे साथ मेरी हम नवा भी होंगी, और वो कौन है वो आपको खुद अपना परिचय देंगी।
1: नमस्ते श्रोताओं, मैं हूँ आरजे मीनाक्षी, स्टूडियो में आ चुकी हूँ कौसर का पूरा पूरा पूरा साथ देने के लिए, और हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का प्रोग्राम हम नवा में।
0: मीनाक्षी, काफ़ी वक्त बाद हम दोनों एक साथ फिर से आए हैं हम नवा में, और जब इतने वक्त के बाद आते हैं तो उत्साह भी कुछ ज़्यादा ही होता है। और हम नवा की इस हॉट सीट पर हम लोग सच में एक साथ आज काफ़ी दिन बाद बैठे हुए हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर बात भी करने वाले हैं हम। और हमारे लिसनर्स को भी मालूम होगा कि इस प्रोग्राम में बात की जाती है उन मुद्दों की जो समाज से जुड़े होते हैं और कहीं ना कहीं आपसे भी जुड़े होते हैं।
1: भाई, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड मुद्दे लेकर आते हैं। बिल्कुल सही कहा कौसर तुमने, बातें आज होंगी कि जिसमें आप खुद अपने जवाब ढूंढ सकें, और हम आपको किसी भी समस्या से निपटने और किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए जागरूक कर सकें।
0: बिल्कुल,
1: तो बता देते हैं कि आज के वो विषय जिन पर हम बातचीत करने वाले हैं। आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है वर्ल्ड एसिड वैक्सीन डे, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन। और ये थोड़ा सा मजाक था,
0: इतना उत्साह भी अच्छा नहीं है। मुझे लग रहा है कि आज काफी दिन बाद मिले तो बड़ा कुछ ज्यादा ही उत्साह है तुम्हारे अंदर।
1: जी।
0: तो बिल्कुल, आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस पर करेंगे इस दिवस पर। और साथ ही एक और खास दिन आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो है इंटरनेशनल म्यूजियम डे, और इस पर भी काफी रोचक बातें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे बातों के साथ, और साथ ही साथ बात करेंगे संतुलित आहार की, कि कैसी दिखनी चाहिए हमारी एक बैलेंस्ड प्लेट, यानी कि खाने की थाली।
1: बिल्कुल, कि हम रोजमर्रा में जो भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारी थाली कैसी दिखने वाली है, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। और एक पंक्ति है कौसर, अक्सर लोग इसे बोलते हैं, सुनते हैं हम सभी, कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आखिर क्या मतलब है, किस सेंस में ये पंक्ति लिखी गई, क्यों बोलते हैं ये लोग, और जानेंगे इस पंक्ति का असली मतलब।
0: बिल्कुल, अभी तक आपने सिर्फ ये पंक्ति

0: सुनी है, लेकिन आज हम लोग इसका असली मतलब बताने वाले हैं। बस आपको जुड़े रहना है हमारे साथ पूरा एक घंटे तक, और साथ ही मीनाक्षी कुछ और भी बताने वाले हैं हम लोग कि गर्मी के इस मौसम में आपके लिए एक बढ़िया सी रेसिपी भी तो आनी है, साथ ही ज्ञान विज्ञान की भी बातें होंगी। तो ये दोनों टॉपिक्स भी आपके लिए लास्ट में हमने रखे हुए हैं, तो आपने सुन ही लिए हैं हमारे आज के विषय। तो बस इन विषयों से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी विचार हो, कुछ भी बात हो अपनी, तो बस हमसे शेयर करिएगा। जल्दी से हमें ईमेल करिए, हम आपकी मेल का इंतजार कर रहे हैं, और ईमेल आईडी आपको बताएंगी मीनाक्षी।
1: बिल्कुल, हमारी ईमेल आईडी वैसे तो हमारे साथियों को पता है, लेकिन जो नए श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं उनको हम जरूर बताना चाहेंगे कि हमारी ईमेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com।
0: बिल्कुल, पर अभी आपके लिए प्ले कर रही हूँ एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग, क्योंकि बातों के साथ म्यूजिक का कारवां भी चलता रहे तो सफर अच्छा कटता है ना मीनाक्षी।
1: बिल्कुल, सफर बहुत अच्छा कटता है अगर म्यूजिक और अच्छे अच्छे गानों का साथ हमारे साथ हो जाए।
0: बिल्कुल, तो इस सफर को सुहाना बना दे।
1: बिल्कुल सुहाना बना,
0: चलो बना देते हैं।

0: David me.
1: जब जिंदगी का सफर सुहाना होता है तो शायद इसी तरह से मन खुश होता है जैसे ये लोग अभी गाने में हंस रहे थे।
2: बिल्कुल, एक अच्छी चीज का सर ये रही कि जैसे इसमें हंसी मजाक के साथ गाना खत्म हो रहा था और हमारे प्रोग्राम की शुरुआत कुछ इसी तरह से हो रही थी, इतना हंसी हम दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, वही वजह थी कि हम इधर उधर का कुछ बोल गए थे।
1: और वही तो होता है ना एक कि इंसान अगर हंसते गाते अपनी जिंदगी के हर पल को जिए तो फिर जिंदगी कितनी ईजी फील होने लगती है।
2: प्रॉब्लम कितनी भी हो पता नहीं चलती, बिल्कुल हंसी में प्रॉब्लम निकल जाती है।
1: लेकिन बस अब इसी के साथ जो हमारे विषय हैं उनको भी लेकर चलना पड़ रहा है, तो बात करें फिर आगे।
2: बिल्कुल, कहने का मतलब कौसर का यही है कि अब थोड़ा सा हंसी मजाक को रोकते हैं और थोड़ा सा गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि एक गंभीर विषय पर ही हम शुरुआत करने वाले हैं बातचीत की। अभी जैसे पिछले महीने की अगर बात करें कौसर, तो अप्रैल में 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक दुनिया भर में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण सप्ताह, और भाई हमने भी अपने प्रोग्राम में इस पर लगभग हर दिन ही बात
1: की थी। बिल्कुल,
2: ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान से हम जोड़ सके, ये उद्देश्य था हमारा।
1: हाँ, और जागरूक भी किया था। और बिल्कुल इस तरह के जो अभियान है जो हुआ है तो होते ही रहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, और हम भी अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का बराबर निरंतर प्रयास करते ही रहते हैं।
2: एक छोटा सा प्रयास हमारी ओर से भी होता है, और इसी तरह आज का दिन भी कुछ खास है क्योंकि आज यानी 18 मई को हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन दिवस। इस विशेष दिन का मुख्य उद्देश्य HIV संक्रमण और एड्स से बचाव के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी टीके की तत्काल आवश्यकता के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
1: वैसे देखो मीनाक्षी, ये जिंदगी में इस तरीके के उतार चढ़ाव, जिंदगी मिली है तो इसमें बीमारियां भी मिलेंगी, कुछ परेशानियां भी मिलेंगी, जरूरी नहीं है कि पूरी जिंदगी खुशहाल ही बीत जाए, लेकिन कुछ भी क्या बोलते हैं कि इम्पॉसिबल नहीं होता है। इतनी टेक्निक आगे बढ़ चुकी है कि कोई भी चीज अब ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल हो, वो पॉसिबल ना हो पाए। तो बस अगर वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जा रहा है तो उसकी भी वैक्सीन बन चुकी है, उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। तो इस दिवस की शुरुआत 18 मई 1997 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एक भाषण से प्रेरित होकर की गई थी, जिसमें उन्होंने एड्स को खत्म करने के लिए अगले दशक में एक प्रभावी टीका विकसित करने का सुझाव दिया था। और पहला एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई 1998 यानी कि 1998 को मनाया गया था।
2: जैसे अभी कौशल तुमने कहा कि इस समस्या का संपूर्ण हल टीके के रूप में आ गया है, तो ऐसा नहीं है, संपूर्ण हल अभी तक नहीं आया है, खोज अभी जारी है। हाँ, इसकी रोकथाम के लिए प्रयासरत जो टीका है, जो दवा है, उसका प्रयोग हो रहा है, और आज का दिन उन हजारों वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, डॉक्टर्स के प्रति आभार व्यक्त करने का भी दिन है जो एड्स की वैक्सीन की खोज पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यही।
1: हाँ, लेकिन मीनाक्षी, हमने यही कहा था कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो हर चीज में कोशिश बराबर जारी है। और दुनिया के लोग आज के इस दिन यानी कि एड्स जैसी जानलेवा बीमारी के प्रति स्वयं जागरूक रहते ही हैं, और दूसरों को भी जागरूक करके इस महामारी को समाप्त करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।
2: और इस तरह से कि जो एड्स से बचाव के जो भी तरीके हैं उनको अगर अपनाया जाए तो बिल्कुल इस महामारी को हम रोक तो सकते हैं ना कि बढ़ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: भाई, जो लोग इस महामारी से प्रभावित हैं उन्हें एक उम्मीद मिलने का दिन है आज का दिन कि वैज्ञानिक प्रगति और सामूहिक प्रयासों से एड्स मुक्त भविष्य संभव हो सकता है, और उम्मीद जरूर बनाए रखनी चाहिए।
1: उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है।
2: बिल्कुल, इसी विषय पर हमसे जुड़ रही हैं डॉक्टर ऋचा गुप्ता, सुनते हैं उनके क्या हैं विचार।
3: नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा गुप्ता आकाशवाणी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिसने मुझे आज वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे हर साल 18 मई को वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है। इसका पर्पस हमारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड वॉलंटियर्स को मोटिवेट करने के लिए होता है, जो इसकी वैक्सीन बनाने के लिए दिन रात बिना अपनी परवाह किए मेहनत करते रहते हैं। यद्यपि अभी HIV की कोई

0: भी इफेक्टिव वैक्सीन विकसित नहीं हुई है, और इसका कारण यह है कि एचआईवी जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट होता है। फिर भी लेनेकापैविर एक अंडर ट्रायल वैक्सीन है जिसे साल में 2 बार लगवाने का प्रोविजन है। इस वैक्सीन का मोटिव हमारे इम्यून सिस्टम को सिखाने पढ़ाने का होता है, मींस कि यह हमारे इम्यून सिस्टम को यह सिखाती है कि ह्यूमन डिफिशेंसी वायरस जो कि एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे पहचानो, और इससे पहले कि वो हमारे शरीर में अपना इफेक्ट दिखाए उसे किल करो।
1: दोस्तों अभी कोई भी वैक्सीन हम डेवलप नहीं कर पाए हैं,
0: तो एड्स के लिए हमें बचाव के तरीकों को अपनाने के लिए ज्यादा महत्व देना चाहिए, जैसे कि सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन,
1: अवॉइडेशन ऑफ
0: यूज्ड
1: निडल
0: एंड
1: सेफर सेक्स।
0: थैंक यू।

0: बहुत बड़े बनोगे, और ये मुझे इसीलिए पसंद है कि एक उम्मीद की बात करता है ना।
1: और मैं फिर यहीं पर कहना चाहूँगी कि उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। अगर वो जो हमारे एक परेशानी वाले पल होते हैं ना, उसमें एक उम्मीद ही ऐसी होती है जो हमारे कान में धीरे से कहती है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, परेशान ना होना। तो उम्मीद को हमेशा बनाए रखना चाहिए, उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए।
0: बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद खोई तो सब कुछ खो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: सारा सब कुछ खो गया हो, बस एक उम्मीद बाकी हो, तो ये रहता है कि हमारी जीत होगी, जरूर होगी। और अब बढ़े अगले टॉपिक की ओर हम कौसर। तो आज भाई दुनिया भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। संग्रहालय एक ऐसी संस्था है जो समाज की सेवा और विकास के लिए कार्य करती है।
1: बिल्कुल, एक ऐसी संस्था जहां ऐतिहासिक, कलात्मक, वैज्ञानिक या सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं को एकत्र किया जाता है, उनका संरक्षण होता है, शोध किया जाता है और जनता के लिए उन्हें प्रदर्शित भी किया जाता है, ताकि जनता इन्हें देख सके और शिक्षा व आनंद प्राप्त कर सके।
0: आनंद जो प्राप्त करने की तुमने बात की एक अवसर, वो कौतूहल वाला आनंद होता है कि इतनी पुरानी चीजों को जब देखते हैं, एक बड़े आश्चर्य के साथ हम सब देखते हैं। संग्रहालय में मूर्त और अमूर्त को सहेज कर, जो चीजें हैं उनको सहेज कर रखा जाता है, जो कि मानव इतिहास को दर्शाती हैं। जैसे मूर्त और अमूर्त की मैंने बात कही, तो मूर्त वो जो हमें दिख रहा है, जो चीजें दिख रही है, अमूर्त वो जो संस्कृति और परंपराओं से रिलेटेड है। तो ऐसी कोई चीज हम देखते हैं तो उससे हमें ये पता लगता है कि किस सभ्यता को में कैसा खान पान था, कैसी व्यवस्था थी, उनके पहनावा कैसा था, इस तरह की चीजों का हमें पता लग जाता है। और जो कि भाई मानव इतिहास को दर्शाती है, ये केवल प्रदर्शन स्थल ही नहीं बल्कि अनुसंधान के केंद्र हैं। सरल शब्दों में अगर कहा जाए कि संग्रहालय इतिहास, कला और विज्ञान के अनमोल खजाने का भंडार है, तो भाई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, जो अतीत और वर्तमान के बीच पुल का काम करते हैं।
1: अच्छा मीनाक्षी, अगर सोचो जरा, अगर ये संग्रहालय ना होते तो जो हमारी अभी कमिंग जनरेशन है उनको कैसे पता चलता कि पहले के टाइम में तलवारें भी चलती थीं, राजा भी होते थे, रानियां भी होती थीं, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें, तो शायद वो इन सब बातों से अनजान ही रहते।
0: बिल्कुल कौसर, ये बात हम पर और तुम पर भी लागू होती है कि अगर सच में संग्रहालय ना होते तो हम कहाँ से देखते इस तरह की चीजें और हमें कैसे पता चलता।
1: बिल्कुल, जब अभी भी हम लोग संग्रहालय घूमने जाते हैं तो जब देखते हैं तो अच्छा अच्छा ये उस टाइम की बात है और उस टाइम ऐसा भी होता था और हुआ होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अफवाह है, वो हुआ था, इसलिए आज संग्रहालय में वो चीज संरक्षित है, है ना।
0: बिल्कुल, वर्तमान में रहकर हम इतिहास से आंखें मिला पाते हैं जब हम संग्रहालय में होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अगर इसकी बात करें तो समाज में संग्रहालयों की भूमिका, सांस्कृतिक आदान प्रदान, इतिहास का संरक्षण और आपसी समझ व शांति को बढ़ावा देना है।
1: और ये दिन आम जनता को संग्रहालयों की महत्ता समझाने और हमारी विरासत को सहेजने के लिए प्रेरित करता है। मीनाक्षी, आज लोगों को ये बताने का दिन है कि संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का संग्रहालय ही नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति के जीवंत केंद्र है। और इस वर्ष इसकी एक थीम है और हर वर्ष ही थीम होती है, और थीम है एक विभाजित विश्व को एकजुट करने वाले संग्रहालय।
0: आज तो एक अच्छा अवसर भी है जैसे कि इतिहास के जानने का और म्यूजियम देखने के लिए, जो कि टिकट आज लगता है। अच्छी बात ये होती है कि या तो कहीं कहीं पर वो फ्री होते हैं या फिर आधे दाम में टिकट लिए जाते हैं। और हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मनाया जरूर जा रहा है, लेकिन अगर हमारे देश में गए तो कितने सारे संग्रहालय हैं। 2023 में जो प्रधानमंत्री संग्रहालय की शुरुआत नई दिल्ली में की गई थी, वो भी देखने लायक है, अगर तुमने देखा हो कौशल।
1: और तुमने ये बात कही तो मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हम देशवासियों से बहुत सारी अपील की है, और उन्हीं में से एक अपील है कि देश के अंदर ही पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो आज से अच्छा अवसर भला और क्या हो सकता है इस बात के लिए, है ना मीनाक्षी।
0: इस हमारे प्रधानमंत्री की अपील है और आज का दिन बहुत अच्छा दिन बनता है उनकी इस अपील को हम बिल्कुल अपने जीवन में शामिल करें। शामिल कर चुके हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर अभी तक हमने इस अपील को शामिल नहीं किया तो आज का दिन बहुत अच्छा दिन है कि हम अपने देश में पर्यटन को इस तरह से भी बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर सकारात्मक जो कदम होता है उसमें सबसे पहले बचपन को जोड़ना चाहिए। तो भाई अगर आज आप नेशनल लेवल पर संग्रहालय देखें नहीं जा पा रहे कोई बात नहीं, तो अपने शहर में जो संग्रहालय हर

0: शहर में एक छोटा संग्रहालय जरूर होता है, हमारे यहाँ बिठूर का है, तो बच्चों को लेकर वहां जाना चाहिए और इतिहास से परिचय कराना चाहिए। बहुत सारे सिक्के होते हैं, पांडुलिपियां हमें देखने को मिलती हैं, जैसा कि तुमने कहा तरह तरह की तलवारें देखने को मिलती हैं,
1: हाँ
0: बहुत कुछ मिलता
1: अच्छा,
0: है।
1: बिठूर की बात तुमने मीनाक्षी कही है, अपने बिठूर का जो संग्रहालय है काफी पुराना है ना, तो स्वतंत्रता के लिए जान न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों के गौरवमय इतिहास से वहां पर जाओ तो रूबरू जरूर तुम होगी, है ना। और बिठूर का संग्रहालय सबसे बेहतर जरिया है हमें कि पुरानी चीजों को देखने का, क्योंकि कानपुर में मुझे लगता है सबसे पुराना संग्रहालय वही है ना।
0: बिल्कुल। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कौसर कि हर घर में एक छोटा सा संग्रहालय जरूर होता है
1: हाँ
0: कि देखना कहीं कोई लकड़ी का छोटा सा संदूक होता है, सबके घरों में ना भी होता हो तो हर घर में कुछ भी हो सकता है, कोई पोटली हो सकती है, उसमें कुछ पुराने सिक्के होते हैं जो
1: बिल्कुल
0: रखे
1: बिल्कुल
0: जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: है ना, बहुत सारी पुरानी किताबें होती जो दादाजी के जमाने की होती हैं, जिनके पन्ने कुछ कुछ गल रहे होते हैं, फट रहे होते हैं, लेकिन वो आज तक हटाई नहीं गई है।
1: अच्छा मीनाक्षी, तुमने ये कहा तो कुछ पैसे चलते थे कभी, हम लोग जब छोटे छोटे थे वो पैसे चलते थे जो अब नहीं चलते
0: वो
1: हैं।
0: 5 पाई 20 पाई
1: हाँ,
0: 10 पाई
1: तो वो भी हम संभाल के रखे हुए हैं, क्योंकि वो भी आगे चल के ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा कि संग्रहालयों में रखने के लिए हो जाएगा, वो पैसा जो आगे जो जनरेशन आने वाली है वो पहले देखेगी कि अच्छा इस टाइप के पैसे भी चलते थे।
0: तो बहुत अच्छे एक तुमने विचार भी यहाँ पे दिया है कौसर कि बच्चों को रिलेट करना चाहिए, जो सिक्के होते हैं वो आले वगैरह में जिनके यहाँ झरोखे बने आज भी पड़े होते हैं, या कहीं पोटली में, कहीं बक्से की किसी पोटली में वो मिलते हैं सिक्के,
1: हाँ
0: तो बच्चे पूछते हैं भाई, उनके लिए तो बिल्कुल नया होता है वो
1: नया होता
0: सिक्का कि
1: है
0: ये क्या है, वो
1: ये क्या
0: अजीब,
1: है।
0: मतलब
1: हाँ
0: एल्युमिनियम की धातु से वो बने होते हैं तो क्या
1: हाँ
0: है, या और पुराने टाइम पे जाएं तो छोटी छोटी पाइयां चलती थी जो तांबे की बनी
1: हाँ तुमने
0: होती थी।
1: पाइयों की बात करी तो कभी कभी मम्मी लोग बैठती हैं तो वो अपने जमाने की बात बताती हैं कि हमारे जमाने में पाई चलती थी, तो हम लोग पूछते अरे ये पाई क्या होती है, तो
0: हाँ
1: वो फिर उसका पूरा डिजाइन बताती हैं हमारे घर के लोग जो बड़े हैं, तो सुन के बड़ा ही वो
0: अच्छा,
1: रोचक लगता है।
0: कितने गर्व से बताती कि इस छोटी सी पाई से वो कितने सामान ले आती थी वो।
1: हाँ बिल्कुल, वो कि इतने की वो लइया भी लाई जाती थी, इतने की फिर उससे पट्टी भी लाई जाती थी, मतलब एक छोटी सी पाई उसमें कई सारी सामान मिल जाती थी।
0: हाँ तो देखो संग्रहालय जो एक शब्द है वो इंटरनेशनल लेवल से अगर हम स्टार्ट करें तो घर के बक्से तक जाता है कि संग्रहालय हर जगह पाया जाता
1: बिल्कुल
0: है। तो अगर बच्चों को जोड़ना चाहे तो आज घर की छोटी मोटी इन पुरानी चीजों से भी हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम संग्रह जरूर करते हैं।
1: हाँ, और साथ में अगर आप ले जाना चाहें तो हमारे जो कानपुर के संग्रहालय हैं आप बच्चों को ले जाइए और उनको दिखाइए और उनको बताइए, उनको जानकारियां मिलेंगी बहुत सारी कि क्या वहां पर रखा हुआ है और क्यों रखा है और क्या इतिहास है इन चीजों का, सब उनको जानकारी मिलेंगी, है ना।
0: हाँ पुरानी सभ्यताओं को लोग इसी तरह से तो जानते हैं कि
1: हाँ
0: रिलेटेड जो खुदाई वगैरह में जो बर्तन मिलते हैं, जो हथियार मिलते हैं, जो इस तरह की जो चीजें मिलती हैं,
1: हाँ
0: तब की जो सभ्यता है उसका अंदाजा आज हम इसी तरह से लगा पाते हैं।
1: बिल्कुल, तो बस आज अच्छे से आप अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाइए। फिलहाल तो अभी एक बहुत ही खूबसूरत सा आपके लिए गीत आ रहा है आपके रेडियो एंड मोबाइल सेट पर।

0: फिलहाल तो हम अपने श्रोताओं से कहना चाहते हैं कि आप हम नवा कार्यक्रम के साथ साथ चलते रहिए, जिसे आप सुन रहे हैं 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर। और आज बता दें कि हम नवा प्रोग्राम में जो दो लोग हैं जिनकी आवाज़ें आप सुन रहे हैं वो हैं आरजे कौसर
1: और आरजे मीनाक्षी। और कौसर, मैं ये भी कहती चलूंगी कि घड़ी किसी पे भी थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए। सुबह के दिन के 11:31 भी हो रहे हैं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ने का भी ये टाइम है।
0: बिल्कुल। और मीनाक्षी, यहाँ पर कहना चाहेंगे कि हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं ना, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बिल्कुल एक ही तरह की लाइफ जीता हो।
1: भाई, लाइफ का नाम ही चुनौती है।
0: बिल्कुल। और हर इंसान कभी ना कभी ऐसी घड़ी से भी गुजरता है जब रास्ते धुंधले से लगते हैं और उम्मीदें, फिर यहाँ पर उम्मीद की बात होने लगी कि उम्मीदें कम लगती हैं, लेकिन मन से तब भी एक आवाज़ आती है कि हौसला मत खो, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक मन हार नहीं मान लेता तब तक सब कुछ पॉसिबल होता है।
1: बिल्कुल। जब तुमने कहा कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लगता है कि कभी कभी ऐसी भी स्थितियाँ आती हैं कि सब कुछ मिट जाता है कौसर, हर तरफ से हार मिल रही होती है, लेकिन एक उम्मीद होती है, जो मन होता है वो अगर दृढ़ है तो कितनी भी कठिनाइयों हम पार कर ले जाते हैं। ऐसी एक कहावत भी बोली जाती है और वो कहावत है, कबीर दास जी का ये दोहा है, पंक्ति है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और भाई, ये छोटी सी पंक्ति यही बताती है कि इंसान की सफलता या असफलता उसके शारीरिक बल से ज्यादा उसके मानसिक बल यानी कि आत्मविश्वास पर डिपेंड करती
0: है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात तुमने कही है। अगर आपने अपने मन में ये ठान लिया और मान लिया कि मुझसे तो

0: ये काम बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब कि काम को करने से पहले ही आपने हार मान ली तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको जिता नहीं सकती, चाहे कितना भी आप कोशिश कर लें, क्योंकि आपके पास तो आत्मविश्वास ही नहीं रहा, खुद पर यकीन ही नहीं रहा। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है ना, तब हमारी मेहनत और कोशिश भी आधी अधूरी ही रह जाती है।
1: और आधी अधूरी जो चीजें रह जाएंगी उनका फल वाला कैसा होगा वो भी आधा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और भाई इसके विपरीत अगर हमारा मन स्ट्रॉन्ग है, दृढ़ है, सकारात्मक है, खुद पर भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो हम हर स्थिति में रास्ता निकाल ही लेते हैं।
0: और मुझे तो लगता है कि हर टाइम अपने को पॉजिटिव ही रखना चाहिए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए और बस ये सोचना चाहिए नहीं ये काम मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, है ना, तभी वो हो पाएगा। और ये अटूट विश्वास ही हमें तभी स्ट्रगल करने की एनर्जी देता है जब सारी उम्मीदें जो है ना वो खत्म हो रही होती हैं।
1: जब स्ट्रगल लाइफ में हो रहा होता है तो लोगों को तो लग रहा होता है कैसे करेगा क्या करेगा, लेकिन जो कर रहा होता है ना स्ट्रगल, उसके अगर मन में मजबूती है तो वो लोगों की बातों की परवाह नहीं करता है, बिल्कुल निरंतर अपने काम में लगन के साथ लगा रहता है और एक दिन जीत उसकी होकर ही रहती है। बात अगर हम कहें तो लागू होनी चाहिए स्टूडेंट की लाइफ में।
0: बिल्कुल
1: भाई, परीक्षा के डर से पहले ही अगर ये मान लें कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो भला क्या कर पाएंगे, और वो चाह कर भी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएगा या अच्छी पढ़ाई कर भी ली है लेकिन अगर खुद पे उसे कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं कर पाऊंगा, तो पढ़ने के बावजूद भी वो परीक्षा जब होगी तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो डर है उसकी मेहनत पर हावी हो जाता है। वहीं अगर एक स्टूडेंट जो है उसने पढ़ाई बहुत डीपली नहीं की लेकिन वो मन की मजबूती रहती है कि उसकी समझ बहुत अच्छी है और मन से वो सोचता है कि नहीं मैं कर लूंगा, तो समझने की जो शक्ति वो भी उसकी बढ़ जाती है और परीक्षा में परिणाम भी अच्छे ले आता है।
0: और उसको ये फिर ये भी रहता है कि नहीं अगर मैंने कड़ी मेहनत करी तो मैं सफल जरूर होऊंगा, है ना, क्योंकि कम समय में भी बेहतर तैयारी जो है ना वो सफलता की एक सीढ़ी ही हो जाती है।
1: बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कौसर, अगर हम 1983 के अपने वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो स्थितियां भला क्या थी, भारत की स्थिति कमजोर थी,
0: कमजोर
1: लेकिन
0: थी।
1: हमारे खिलाड़ियों में मन की जो एक तो यूनिटी थी, दूसरा मन का जो विश्वास था कि भारत को,
0: दृढ़ विश्वास था उन्हें,
1: विश्व कप मिला था और अब तो कितने ही मिल चुके हैं, लगातार मिलने वाले भी हैं, क्योंकि अब क्रिकेट ही क्या हम हर फील्ड में देखते हैं जो हमारे युवा हैं वो मन से बड़े मजबूत हो रहे हैं।
0: बिल्कुल। और यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी मीनाक्षी कि भारत देश को आजादी दिलाने में जो भी देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे, देश को आजाद कराने वाले लोग थे, सभी लोगों ने ये ठान लिया था और साथ में संकल्प कर लिया था कि बस अब देश को अंग्रेजों से मुक्त कराना ही है। जबकि जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो बहुत पावरफुल थी, बहुत शक्तिशाली थी, पर आजादी के जो परवाने थे ना, उन्होंने जब ठान लिया तो ठान लिया कि बस अब जो भी हो, बस आजादी की लौ को जो हमारे दिलों में जली है उसको बुझने नहीं देंगे, और मन के जीते जीत सिद्धांत पर वो लोग चले। और देखो ना आज क्या है कि आज हम आजाद हैं, कामयाब हुए, वो
1: आजाद भारत में हम सांस ले पा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: कई बार देखा जाता है कि खेल में खिलाड़ी तकनीकी रूप से कमजोर होने के बावजूद केवल अपने मजबूत मनोबल और आखिरी मिनट तक लड़ने के जज्बे के कारण सामने वाली मजबूत टीम को भी हरा देते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही बात तुमने मीनाक्षी कही, कभी कभी ऐसा होता है अरे वो टीम है, कभी क्रिकेट में ही देखो ना जैसे कुछ टीम होती है तो अगर मान लो कि भारत के जो खिलाड़ी हैं हमारे, अगर वो सोचे अरे नहीं नहीं वो उतने मैच जीत चुकी है और पहले से ही वो अपना विश्वास बिल्कुल थोड़ा वीक कर ले, तो फिर नहीं हो सकता है कि मैदान में वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो इसलिए मन को पहले दृढ़ रखो, अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा कर रखो। अच्छा मीनाक्षी, कभी गौर किया है कि दो लोग एक ही परेशानी से गुजरते हैं और परेशानी एक, लेकिन एक इंसान टूट जाता है जबकि दूसरा मजबूत होकर उसी जो कंडीशन होती है, जो परेशानी होती है उससे निकल जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो यहाँ पर फर्क सिर्फ जो है ना वो हालात का नहीं होता, फर्क होता है सोच का
1: फर्क होता
0: है। बहुत बार हमारी हार से नहीं, हमारे अपने डर से हमारी हार होती है।
1: बिल्कुल। तो मतलब डर को बिल्कुल हमें अपने अंदर से निकाल फेंकना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: है ना, जब डर नहीं होगा तो मन की बिल्कुल,
0: अभी भी हम लोग अपने मन से डर निकाले हुए है ना, माइक के सामने बैठे लेकिन डर नहीं है।
1: बिल्कुल कोई डर नहीं है, क्योंकि डरेंगे तो कैसे हम अपने श्रोताओं के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर,
0: वही चीजें।
1: बात हमेशा याद रखने की है कि अगर पूरी दुनिया भी आप पर मतलब भरोसा ना कर रही हो, लेकिन आप खुद पर खुद भरोसा रखें तो जीत की शुरुआत वहीं से हो जाती है। खुद पर विश्वास होना सबसे बड़ी ताकत है
0: सच में। तो बस जिस दिन इंसान अपने डर, निराशा, निगेटिविटी और जो आपकी

0: नकारात्मक सोच है उस पर जीत पा ले तो समझिए आपने आधी दुनिया तो जीत ही ली।
1: बिल्कुल।
0: तो बस ये जो पंक्ति है ना कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत, यही सीख देती है कि मन ही हमें जीत भी दिला सकता है और मन ही हमें हार भी। तो इसलिए खुद पर यकीन रखें, पॉजिटिव सोचें और अपनी मेंटल पावर को जो ना वो बिल्कुल कमजोर नहीं होने दें।
1: बिल्कुल, एक इसी तरह का गाना हो जाए।
0: हाँ बिल्कुल हो जाए।

0: बिल्कुल, हारी बाजी को जो जीत ले वही तो सिकंदर कहलाता है ना।
1: बिल्कुल कौसर, और देखो हमारे लिसनर्स कितने मतलब जागरूक हैं कि हमें लगता है मेल आ गई, तो क्या शामिल कर लेनी चाहिए?
0: बिल्कुल शामिल कर लेनी चाहिए। तो किसकी मेल है बता दो।
1: ये जो मेल आई है अभी अभी, ये है स्नेहा सोनी जी ने हमें मेल किया है, लेकिन एक इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है। इन्होंने अपने मेल में लिखा है कि तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हारो, मंजिल की मुसाफिर बस मेहनत करते रहो, एक दिन जिंदगी भी बदलेगी।
0: बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है
1: साथ
0: मीनाक्षी।
1: में आगे कौसर, इन्होंने भाई तुम्हारी बड़ी तारीफ की है, लिखते हैं कि कौसर दीदी और मीनाक्षी मैम को नमस्कार है, आपको भी
0: आपको
1: नमस्कार
0: भी
1: है भाई।
0: नमस्कार।
1: और कहते हैं कि कौसर दीदी आज आपके मॉर्निंग वाले कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे इन्हें, और हम नवा में जो जानकारी हम मिलकर इन्हें दे रहे हैं इसे भी सुनकर मतलब इन्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं, और
0: बहुत
1: कह
0: बहुत
1: रही हैं।
0: धन्यवाद इनका।
1: हाँ, और आगे कहते हैं कि छुट्टियों में कानपुर घूमने आएंगी ये, और संग्रहालय की जो हमारा जो बिठूर के संग्रहालय का जिक्र किया हमने, वहाँ आएंगी और सारी चीजें ये देखेंगी, तो स्वागत है आपका।
0: यानी कि यहाँ इस बात से पता चल गया कि कानपुर की नहीं है,
1: हाँ,
0: कानपुर के बाहर के हैं
1: कानपुर
0: ये।
1: के बाहर की
0: तो
1: है,
0: बिल्कुल
1: आसपास की
0: आइए,
1: है,
0: आपका
1: बिल्कुल
0: बहुत
1: आइए।
0: स्वागत है हमारे कानपुर शहर में। और एक और ईमेल है यहाँ पर हमें दिख रही है, ये भी ये है भैया मोनू सेठ की। इन्होंने लिखा है कि संग्रहालय केवल घूमने की जगह नहीं है, बल्कि हमारे गौरवशाली अतीत का आईना है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी संस्कृति और इतिहास का सम्मान करें। इस हमें भी संग्रहालयों में जाकर अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को समझने का प्रयास करना चाहिए। और इन्होंने आगे लिखा है, वैसे हम अपनी किताबों का भी संग्रहालय बनाकर इन्होंने अपने घर में सजोया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग अभी ये बात भी कर रहे थे कि अपने घर
1: हाँ
0: में भी हम
1: बिल्कुल,
0: अपना संग्रहालय बना सकते
1: तो
0: हैं।
1: इन्होंने घर वाले छोटे से संग्रहालय का जिक्र भी कर दिया है।
0: और मीनाक्षी बात आगे बढ़ाते हैं। देखो ना, आजकल की लाइफ इतनी बिजी, इतनी भागदौड़ भरी हो गई है कि हमें सही तरह से खाना खाने का भी वक्त नहीं मिल पाता है। और किसी तरह इस भागदौड़ भरी लाइफ में हम अगर अपना पेट भर भी लेते हैं ना, लेकिन बस ऐसे ही भर लेते हैं कि बस पेट भरना है, लेकिन बॉडी को सही पोषण नहीं दे पाते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी है, तो हम भागम भाग में खाना भी खा रहे होते हैं, क्या खा रहे हैं, और उसको ठीक से हम चबाते तक नहीं तो पचाएंगे कैसे?
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: भागम भाग वाला खाना है, तो उसका असर बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। बात इसी विषय पर होने जा रही है, संतुलित आहार की। कैसी दिखनी चाहिए एक बैलेंस्ड थाली हमारी भोजन की, और या प्लेट अगर कहें तो कह सकते हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि संतुलित आहार यानी एक ऐसी थाली जो स्वाद भी दे और सेहत भी।
0: बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ खाना, ज्यादा खाना मतलब हम सोचे, ये ना सोचे कि ज्यादा खाएंगे तो सेहत अच्छी बनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही मात्रा में सही चीजें जो खाना बहुत जरूरी होता है। तो चलो अपने लिसनर्स को बताते हैं कि आखिर एक बैलेंस्ड प्लेट दिखती कैसी है ना। तो देखो ना, कई लोग सोचते हैं कि संतुलित आहार मतलब फीका खाना या फिर सिर्फ सलाद खाना, लेकिन असल बात क्या है कि बैलेंस्ड प्लेट रंगों और पोषण से भरी होती है।
1: बिल्कुल सही कहा कौसर तुमने। एक अगर हम संतुलित थाली की बात करें, तो थाली को वैसे चार हिस्सों में बांटते हैं, लेकिन संतुलित थाली को मैं कहूँ कि हम तीन हिस्सों में बांटें, और आधे हिस्से में सिर्फ हम सब्जियों को शामिल करें, तो
0: बिल्कुल,
1: ये संतुलित थाली का एक जरूरी हिस्सा हो जाता है।
0: जो कि हमें प्रोटीन
1: और
0: देंगी।
1: अब जो आधा भाग बचता है, तो उसको हम दो भागों में बांट लेते हैं, तो चौथाई चौथाई हिस्सा बचता है, तो उस चौथाई एक चौथाई हिस्से में हमें हेल्दी फैट वाली चीज़ें शामिल करनी है, और जो दूसरा चौथाई हिस्सा है उसमें हेल्दी कार्ब्स हमें शामिल कर लेने हैं। और अगर कम शब्दों में, सरल शब्दों में कहें, तो एक कलरफुल थाली हमारी
0: बिल्कुल
1: होनी चाहिए,
0: बिल्कुल
1: सब कुछ
0: बिल्कुल।
1: उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा
0: जो
1: में होना
0: चीज़ें ये
1: चाहिए।
0: बताई हैं ये एक डाइटिशियन के अकॉर्डिंग है, और अगर इस तरीके से थाली सस्ती है ना, तो बिल्कुल कलरफुल थाली तो लगने ही लगेगी।

0: जिसमें पौष्टिकता भी होगी, है ना, जो हमारे शरीर को स्वस्थ भी रखेगी,
1: प्रोटीन भी हो,
0: सब कुछ होगा,
1: भी इस तरह की सारी चीजें शामिल हो, और साथ में पानी की हम जरूर बात कर लें कि थोड़ा सा पानी भी होना चाहिए।
0: बिल्कुल। अच्छा, वही प्लेट का एक हिस्सा प्रोटीन वाला होना चाहिए, जैसे दाल, पनीर, चना, अंडा, और क्योंकि ये बॉडी को ताकत और मांसपेशियों को जो है ना वो स्ट्रांग बनाता है। लेकिन आजकल होता है क्या है मीनाक्षी, कि फास्ट फूड और पैकेज्ड वाले जो चीज़ें होती है ना, जो स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं बच्चे, तो वो हमारे जो थाली होती है उसका बैलेंस बिगाड़ देते हैं, क्योंकि जिसमें स्वाद तो मिलता है, टेस्ट मिल जाता है हमारी जबान को, लेकिन पोषण जो होता है ना वो कहीं पीछे छूट जाता है।
1: स्नैक्स होते हैं वो भोजन का हिस्सा तो वैसे भी नहीं होते हैं, हाँ, उसमें नमक और इतना मसाला होता है,
0: बिल्कुल,
1: वो केवल जबान का ही स्वाद होता है, स्वाद से उतरने के बाद वो कुछ भी नहीं रहता,
0: कुछ भी नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें जो होती है, कभी कभार तो खाना ठीक है, लेकिन डेली की आदत इसको बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि इन्हें खाने से धीरे धीरे हमारी जो बॉडी है ना वो वीक होने लगती है,
1: कमजोर होने लगती है। नहीं, मैं जबान में स्वाद तो मिल रहा होता है उस मसाले का जो लगा होता है उन चिप्स के पैकेट्स में या कुछ भी हम घर बाहर का खाते हैं, लेकिन हमारी सेहत को कुछ नहीं मिल रहा होता है। इसीलिए घर का मतलब बिल्कुल ताजा बना हुआ जो हम चीजें तैयार करते हैं उन्हें हमें खाना चाहिए, है ना।
0: हाँ बिल्कुल, जो हरी सब्जियां होती है ना, और जैसे गाजर हो गई, चुकंदर, टमाटर, पपीता, केला, और जो मौसमी फल आजकल तो बहुत पानी वाले फल आ रहे हैं ना, बिल्कुल जो पानी की कमी को बिल्कुल दूर कर देते हैं।
1: एक चीज कौसर और मुझे याद आ रही कि मैंने देखा है कि आप तो जो सीजनी हम कहते हैं मौसम के अनुसार जो फल सब्जियां मिल रही हैं हमें उन्हें खाना चाहिए,
0: हाँ।
1: लेकिन अब क्या हो रहा है कि मैं बारहमासी हर चीज दिख रही है,
0: हाँ।
1: तो अभी भी अगर आप देखें तो जब सब्जी वाले भाई आते हैं तो उनके ठेले पे ऐसी कोई चीज नहीं होती जो सर्दियों में ना मिल रही हो,
0: बिल्कुल।
1: तो थोड़ा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हीं फल सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें जो मौसम के अनुसार हमें मिलती, क्योंकि प्रकृति हमें मौसम के अनुसार ही चीजें देती है। जैसे गर्मी का टाइम है तो पानी वाली चीजें फल सब्जियां ज्यादा मिलती है, तो हमें इन चीजों को अपनी थाली में ज्यादा से ज्यादा शामिल करना चाहिए।
0: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हो तो मीनाक्षी, क्योंकि अच्छी सेहत किसी मेडिसिन से नहीं, रोज की अच्छी आदतों से हमें मिल सकती है, संतुलित पौष्टिक भोजन से हमें वो अच्छी सेहत मिल सकती है। तो अगली बार जब थाली सजाइए अपने खाने की, तो उसमें ध्यान रखिए कि उसमें रंग भी हो, पोषण भी हो, और थोड़ी सी समझदारी भी हो, ऐसी दिखनी चाहिए आपके संतुलित आहार की एक बैलेंस्ड थाली। और फिलहाल तो एक गाना इंतजार कर रहा है,
1: बिल्कुल गाने को हम प्ले कर देते हैं।
0: बिल्कुल।

0: लव यू जिंदगी, और हर इंसान को कहना चाहिए लव यू जिंदगी।
1: बिल्कुल कौसर, अभी हम संतुलित थाली की बात कर रहे थे। हमारी सेहत के लिए हम भोजन में कई चीजें शामिल करते हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की। और भाई बड़े तो सब कुछ खा भी लेते हैं, पर छोटे बच्चे तो सिर्फ दूध पर ही निर्भर करते हैं। बहुत छोटे बच्चों के लिए अगर कहा जाए तो बिल्कुल सही बात है ये।
0: हाँ बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है। और बच्चों के संग संग दूध सभी के लिए जरूरी आहार है, इसे संपूर्ण

0: मौजूद होते हैं जो शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं।
1: भाई जब दूध की इतनी अहमियत है तब भी बहुत सारे लोग हैं जो दूध पीना पसंद ही नहीं करते, भाई ऐसे में दूध को हम दूसरे रूप में भोजन में शामिल कर सकते हैं?
0: हाँ, किसी ना किसी रूप में वो हमारे शरीर में तो जाए ना, तो जैसे मट्ठा, पनीर, और मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है दूध को दही के रूप में भोजन में शामिल करना। बाज़ार से आप उसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो इसे घर पर भी बनाया जा सकता है।
1: ज्ञान विज्ञान का सेगमेंट है हमारा ये कौसर, और इस सेगमेंट में रोचक विषय हम यही लेकर आए कि दूध से दही बनने के विज्ञान की ये रोचक प्रक्रिया की बात है। इसमें दूध से दही एक जीवाणु के कारण बनता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। इस पूरी प्रक्रिया को किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहते हैं।
0: हाँ, और दूध मुख्यतः 5 चीजों से मिलकर बना होता है मीनाक्षी, पानी, प्रोटीन, वसा, लैक्टोज और कुछ मिनरल्स। और ये दूध में मौजूद कैसीन प्रोटीन की वजह से दूध दही में परिवर्तित होता है।
1: कैसीन प्रोटीन की बात तुमने कही, तो ये अणु दूध में तैरते रहते हैं। इन कैसीन प्रोटीन के अणुओं को एसिड से रिएक्शन होता है।
0: हाँ।
1: जब हम दही की थोड़ी सी मात्रा को हल्के गर्म दूध में डालते हैं तब लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं, क्योंकि एक तो होता नहीं, बहुत सारे होते हैं, ये बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज को खाना शुरू कर देते हैं और फिर अपने वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में लैक्टिक एसिड को छोड़ते जाते हैं।
0: तो इसकी प्रक्रिया जो है बड़ी ही
1: रोचक है।
0: बिल्कुल, तो इस तरह से दूध में धीरे धीरे लैक्टिक जो एसिड्स होते हैं ना उनकी मात्रा बढ़ने लगती है और फिर दूध में मौजूद कैसीन प्रोटीन के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से चिपकने लगते हैं और इस प्रक्रिया में ये अणु एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं।
1: क्योंकि पहले तो छिटके छिटके से रहते हैं, लेकिन जब ये लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु अपना जो काम करता है उससे ये एक जालनुमा संरचना बनाते हैं, तो होता क्या है, संरचना के कारण पानी की कुछ जो मात्रा होती है इसी में कैद हो जाती है।
0: हाँ।
1: ये फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है दूध में धीरे धीरे लगभग 5 से 6 घंटे तक चलती रहती है।
0: बिल्कुल। अच्छा मीनाक्षी, अपने घर में जब हम लोग दही जमाते हैं तो उसको जरा, अगर वो एक जगह पर जैसे ही उसको दूध को फेंट कर रखा और अगर वो फिर जरा सा हिल भी जाए तो देखा है ना कि दूध जमता नहीं, वो दही जो जमता नहीं है।
1: इसीलिए अगर एक बार जहाँ वो दूध से दही बनने का जो बर्तन है वो करके अगर हमने दही मिला के रख दिया तो उसको हिलाना बिल्कुल मना होता है कौसर। और दही जमने के दौरान थोड़ा सा भी अगर हिल जाए तो दूध के अंदर ये जो हम लोगों ने कही कि संरचना बनने लगती है एक जालनुमा, तो प्रोटीन का जाल टूट जाता है जिससे बैक्टीरिया का जो नेटवर्क
0: जो फैलाव है वो रुक जाता है। हाँ।
1: और दही ठीक से जमने के बजाय पतला या पानी जैसा रह जाता है।
0: तो बिल्कुल जब भी आप दही जमाएं तो उसको एक जगह जहाँ रख दें वहां से बिल्कुल भी मत हिलाएं, तभी आपका जो दही है वो अच्छा जम जाएगा। और बात दही की चली है तो अब की रेसिपी भी कुछ ऐसे ही बताने वाले हैं हम लोग। मसाला छाछ है ये, तो जल्दी से बता दें क्योंकि वक्त का तकाजा ऐसा है कि जल्दी जल्दी बस बताना ही है। तो ये जो सामग्री है 2 ग्लास के लिए है, तो मीनाक्षी बता दो जल्दी से कि क्या क्या सामग्री है लेनी है।
1: इसके लिए चाहिए होगा हमें 1 कप दही और 2 कप ठंडा पानी, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, स्वाद के अनुसार आपको ये नमक लेना है, बारीक कटी हरी मिर्च 1, पुदीना पत्ती 8 या 10 और हरा धनिया 1 बड़ा चम्मच और थोड़े से बर्फ के टुकड़े।
0: हाँ, वो बर्फ के टुकड़े आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ठंडा लेना चाहती हैं या आप प्लेन पानी में लेना चाहती हैं। तो आप बनाने की विधि भी जल्दी से बता देते हैं। सबसे पहले दही को अच्छी तरह आप फेंट लें, अब इसमें ठंडा पानी डालकर फिर से मिलाएं ताकि झागदार आपका छाछ तैयार हो जाए। जितना फेंटेंगी उतना ही वो झागदार छाछ आपका तैयार होगा। अब इसमें भुना जीरा, काला नमक, साधारण नमक, हरी मिर्च, पुदीना और हरा धनिया डालें और इसके बाद एक बार फिर से अच्छी तरीके इसको चला लें और ग्लास में बर्फ डालकर ठंडी ठंडी मसाला छाछ परोसें, फिर देखिए क्या ही मजा आने वाला है ना।
1: और इन गर्मियों के दिनों में तो ये अमृत की तरह काम करता है कौशल। मैं कहूंगी घड़ी की ओर एक निगाह हम डाल लें।
0: बिल्कुल डाल ली, और घड़ी इस वक्त हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दे रही है कि हम बात को और आगे बढ़ाएं और अपने श्रोताओं से कुछ और बातें शेयर करें, तो इसलिए हमें उनसे लेनी होगी इजाजत। तो ये था आज का हमनवा प्रोग्राम, मैं कौसर आपके साथ थी सुबह से, तो अब मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन मीनाक्षी,
1: 3 से 5 बजे तक मैं भी आपसे मिलूंगी। फिलहाल अभी प्रोग्राम हमनवा से यहाँ पर हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार
0: नमस्कार।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टनसन से बातचीत की। श्री मोदी ने दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह प्रधानमंत्री मोदी को 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांडुलिपियों को भारत की आत्मा का अध्याय मानते हैं। वेद, उपनिषद, रामायण जैसे ग्रंथ हमारी धरोहर हैं। पांडुलिपियों में गणित, विज्ञान, दवा और कला का ज्ञान है। यह हमारी संस्कृति और सोच को दिखाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आग्रह करता हूं कि पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए आगे आएं। यदि आपके पास भी कोई भी प्राचीन पांडुलिपि, हस्तलिखित ग्रंथ, पत्र आदि उपलब्ध हैं तो इसकी जानकारी ज्ञान भारत मोबाइल ऐप अथवा पोर्टल पर अपलोड करें ताकि उसका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। केरल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली नई यूडीएफ सरकार ने आज तिरुवनंतपुरम में शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और केपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष रमेश चिन्नाथला, केपीसीसी के वर्तमान अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष के मुरलीधरन और आईयूएमएल नेता पी के कुनहाली कुट्टे शामिल हैं। तिरुवनंतपुरम में 21 सदस्यीय सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जारी है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने कल पीलीभीत में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस समारोह पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी में मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे या इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री

0: श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 4 धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
0: 4 धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी।
3: चलते रे इश्क भी पड़ जाते
4: हमारी और आपकी साझा कहानी,
5: आपके अपने रेनबो की जबानी।
3: आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी।
6: जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर।
7: ये
8: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
9: 100.7 FM रेनबो,
10: धड़कन लखनऊ की।

12:06 का वक्त हो चला है दोस्तों। प्रोग्राम शुरू हो चुका है शत्रु पर, जिसमें आज हम करने वाले हैं हेल्थ की बात। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि आज है मंडे, तो मंडे का हम रखते हैं आपका खास ध्यान। लेकिन FM रेनबो आपका हर दिन कुछ ना कुछ खास ध्यान रखता ही, कहीं ना कहीं से हम प्रोग्राम में आपकी हेल्थ की बात करते ही करते हैं। जैसे बीता हुआ दिन संडे, कल है तल फिटनेस में, हमने आपकी भी हेल्थ की बात की थी इसी समय। और आज बात खास बहुत होने वाली है प्यार की, एहसास की। ये प्यार और एहसास हेल्थ से कैसे जुड़ता है ये हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक जो बीत चुका है, हमने क्या सेलिब्रेट किया था? इंटरनेशनल कंगारू केयर अवेयरनेस डे। जी हाँ, जिसे हम शॉर्टकट में अगर कहें तो KMC, कंगारू मदर केयर कहते हैं। और इसकी क्यों जरूरत होती है, क्या खास होता है, किस लिए इसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, इसकी हम बात करेंगे। और हमारे साथ होंगे हमेशा की तरह एक्सपर्ट। जी हाँ, जब एक्सपर्ट कोई बात बताते हैं ना आपको, तो ज्यादा ध्यान आती है और आप ध्यान भी देते हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो कौन होगा हमारे साथ, हम बताएंगे आपको इस गाने के बाद। तो रेडी हो जाइए ध्यान से सुनने के लिए, जुड़ना है आपको। वैसे तो 12 से 4 रहेगी शालिनी आपके साथ, लेकिन अगर इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो बहुत ढेर सारी जानकारी आपको मिलने वाली है।

0: 12:12 का वक्त, प्रोग्राम शत्रुपा में शालिनी है आपके साथ। आज लेकर बात कंगारू मदर केयर। जी हाँ, KMC पर आज हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, जो कि पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। तो सबसे पहले सर का करते हैं वेलकम अपने स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, मुझे FM रेनबो में आमंत्रित करने के लिए। मैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।
0: सर, सबसे पहले श्रोताओं को बताइए कि कंगारू मदर केयर यानी कि KMC क्या होता है। बहुत सारी जानकारी तो है हमारे श्रोताओं पर, लेकिन आपसे जो जानकारी मिलेगी वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी।
1: देखिए सालिनी जी, कंगारू मदर केयर नवजात शिशु की देखभाल की एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी विधि है, जिसमें बच्चे को माँ के सीने से स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में रखा जाता है। बच्चे को केवल डायपर, कैप एवं मोजे पहनाकर माँ के सीने पे सीधा रखा जाता है और ऊपर से कपड़े या कंबल से ढका जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे को गर्माहट, सुरक्षा, प्यार और बेहतर पोषण मिलता है। KMC विशेष रूप से समय से पहले जन्मे बच्चे और जो कम वजन के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत लाभकारी होता है।
0: अच्छा सर, इस जो केयर को कंगारू ही नाम क्यों दिया गया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है?
1: देखिए शालिनी जी,

0: कंगारू एक विशेष प्रकार का स्तनधारी जीव है जो कि मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
1: जी
0: मादा कंगारू के पेट में एक थैली होती है जिसमें वो अपने छोटे बच्चे को पेट की थैली में रखकर सुरक्षित और गर्म रखती है। उसी
1: जी
0: तरह केएमसी में माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर गर्माहट और सुरक्षा देती है, इसलिए इसे कैंगरू मदर केयर कहा गया है। इसका मुख्य कॉन्सेप्ट है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इमोशनल बॉन्डिंग एंड वार्मथ एंड प्रोटेक्शन।
1: बहुत अच्छी बात सर। जैसा कि आपने बताया कि जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं, जन्म समय से पहले जन्मे बच्चे और जो वजन जिनका कम होता है उन्हें ये केयर दी जाती है, तो क्या ये नॉर्मल न्यूबॉर्न जो बेबी होते हैं उसके लिए भी ये केएमसी यानी कि ये कंगारू मदर केयर फायदेमंद होती है?
0: केएमसी सबसे अधिक प्री मेच्योर और लो बर्थ वेट बेबी के लिए उपयोगी माना जाता है, लेकिन यह सामान्य न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी बहुत लाभकारी है। सामान्य बच्चों में भी इससे ब्रेस्ट फीडिंग बेहतर होती है, बच्चा शांत रहता है, माँ एवं बच्चों की बॉन्डिंग मजबूत होती है एंड बच्चे का बॉडी टेम्परेचर स्टेबल रहता है।
1: बहुत अच्छी बात सर। ये कंगारू केयर से बच्चों को सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है?
0: केएमसी के कई महत्वपूर्ण फायदे हैं, जिससे बच्चे का तापमान नियत रहता है, संक्रमण खतरा कम होता है, बच्चे का वजन जल्दी बढ़ता है, ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी होती है, बच्चा कम रोता है
1: जी
0: एंड नींद बेहतर होती है, एवं माँ एवं बच्चों का भावनात्मक संबंध मजबूत होता है, एवं इसके करने से बच्चे के अस्पताल में रहने की अवधि भी कम हो सकती है।
1: अच्छा, ये जो वजन जल्दी बढ़ता है इसके बारे में जरा बताएं, अभी आपने कहा ना।
0: हाँ, केएमसी से बच्चे की एनर्जी बचती है क्योंकि उसे शरीर गर्म करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग बेहतर होने से बच्चे को पर्याप्त पोषण मिलता है, इससे वेट गेन तेज और बेहतर होता है।
1: बहुत अच्छी जानकारी। और सर 12:16 और 12 सेकंड हो चले हैं और ये वक्त कह रहा है कि एक प्यारा सा गाना सब तक पहुंचा दिया जाए, और इसके बाद अभी आपसे ढेर सारे सवालों का जवाब लेना है, जैसे कि बच्चों में ये केएमसी से इम्यूनिटी और इन्फेक्शन से कैसे बचाव में ये मदद मिलता है, क्या कंगारू केयर से ब्रेस्ट फीडिंग बेहतर होती है, या इमोशनल जो बाउंडिंग होती है इसका क्या असर पड़ता है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे श्रोताओं को जानना है, तो सर प्यारा सा गाना सबके लिए।

0: हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, मैं हूँ भाग्यश्री और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
1: दोस्तों 12:24 और 4 सेकंड हो चले हैं, प्रोग्राम

0: रूपा में शालिनी है आपके साथ लेकर कंगारू मदर केयर के बारे में बात। और हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं किंग जॉर्ज के विश्वविद्यालय से। ढेर सारी बातें सर से जान चुके हैं लेकिन और भी बातें हैं जो हमें जाननी है। सर, क्या बच्चों की जो इम्यूनिटी है या इन्फेक्शन बच्चों में कुछ हो जाता है तो क्या उससे भी बचाव में मदद करता है ये KMC यानी कि कंगारू मदर के, और इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाता है इसके बारे में बताएं।
1: देखिए, इसे माँ के संपर्क में रहने से बच्चे को सुरक्षित वातावरण मिलता है, ब्रेस्ट फीडिंग अधिक होने से बच्चे को माँ का दूध मिलता है जिसमें एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी के फैक्टर्स होते हैं, स्किन से स्किन कॉन्टेक्ट करने से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का खतरा भी काफी कम हो जाता है।
0: अच्छा सर, ये जो आपने बताया ना KMC से ब्रेस्ट फीडिंग में कैसे मदद मिलती, कैसे बेहतर होता है ये?
1: हाँ शालिनी जी, KMC से ब्रेस्ट फीडिंग बहुत बेहतर होती है क्योंकि बच्चा माँ के करीब रहता है, बच्चे के जो फीडिंग क्यूज होते हैं जल्दी पहचान में आते हैं
0: जी।
1: इससे माँ में जो दूध बनने वाले हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ते हैं जिससे बच्चा बार बार फीड कर पाता है और इसलिए उसकी ब्रेस्ट फीडिंग की संभावना बढ़ जाती है।
0: जैसा कि सर आपने बताया कि माँ और बच्चे का जो इमोशनल टच है, बाउंडिंग है, उस पर भी असर पड़ता है, तो क्या असर पड़ता है, कैसे?
1: हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इससे KMC कराने से माँ और बच्चे के बीच प्यार, विश्वास और जुड़ाव बढ़ता है, माँ को बच्चे के प्रति कॉन्फिडेंस आता है एंड पोस्टपार्टम स्ट्रेस भी कम हो सकता है, बच्चा भी माँ की आवाज, हार्ट बीट और टच से सुरक्षित महसूस करता है।
0: अच्छा, जब KMC केयर हम बच्चों को देते हैं वो माँ के पास होता है, उसका एहसास होता है, तो क्या इससे बच्चे की नींद और रोने में जो कमी होती है इसमें भी कुछ मदद मिलती है?
1: हाँ, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से बच्चा शांत और सुरक्षित महसूस करता है, इससे रोना कम होता है, नींद अच्छी आती है, स्ट्रेस कम होता है, हार्ट रेट और ब्रीदिंग भी स्टेबल रहती है।
0: सर, जैसे कि आपने बताया कि कंगारू मदर केयर बहुत अच्छा होता है, इसका एहसास माँ के लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन कई महिलाओं को ऐसा लगता है कि न्यूबॉर्न बेबी को ज्यादा गोद में रखने से उसकी आदत खराब हो जाती है, तो ये जो मिथ है इसके बारे में भी बताएं।
1: हाँ, ये एक पूरी तरीके से मिथ है। नवजात बच्चे को प्यार, गर्माहट और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। KMC से बच्चे को इमोशनल और फिजिकल ग्रोथ अच्छी होती है, इससे बच्चे की आदत खराब नहीं होती है।
0: अच्छा, जो ये कंगारू केयर है ना, ये कब से शुरू करना चाहिए, इसका सही समय क्या होता है?
1: देखिए, यदि बच्चा स्टेबल है तो जन्म के तुरंत बाद इसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन यदि प्रीमेच्योर बेबी है या बच्चा वेंटिलेटर सपोर्ट पे है या ऑक्सीजन सपोर्ट पे है तो उस कंडीशन में हमें डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको शुरू किया जाना चाहिए एंड डॉक्टर की निगरानी में ही करा जाना चाहिए। अगर बच्चा स्टेबल है, खुद से सांस ले रहा है तो हम उसको कभी भी जितनी जल्दी हो सके उसको शुरुआत में कर सकते हैं।
0: अच्छा, इसे कितनी देर तक करना चाहिए इसके बारे में भी बता दीजिए।
1: इसको जितनी देर किया जाए उतना ही अच्छा होता है। यूजुअली रिकमेंडेशन होता है कि 8 to 24 hours पर डे। स्टार्टिंग में हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, मिनिमम टारगेट हमारा 8 hours पर डे रहता है और उसको ग्रेजुअली 24 hours पर डे करना चाहिए। इसको केवल बच्चे के डायपर को चेंज करते समय हटाना चाहिए, अदरवाइज 24 hours तक कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 घंटे से कम के सेशन को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बार बार हटाने से बच्चा डिस्टर्ब होता है।
0: बिल्कुल सही बात है, उसकी भी मतलब उसके भी आराम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो KMC केयर की बात हम कर रहे हैं, कंगारू मदर केयर की, तो माँ के अलावा क्या दादा, दादी, पापा या जो भी उसके बड़े भाई बहन भी हैं अगर समझदार हैं तो क्या वो भी ये केयर दे सकते हैं बच्चों को?
1: हाँ, यदि माँ उपलब्ध ना हो या फिर माँ किसी अन्य काम में बिजी है तो उस कंडीशन में पति, दादी या अन्य कोई भी ट्रेंड केयर गिवर इसकी केयर दे सकते हैं। इससे कंगारू फैमिली केयर भी कहा जाता है।
0: क्या बात है, मतलब कंगारू मदर केयर और कंगारू फैमिली केयर, ये दो नाम भी हमारे, दूसरा नाम भी हमारे सामने आया। दोस्तों, आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा, ढेर सारी जानकारी भी मिल रही होगी। अब केवल बच्चे को आपको दूर से नहीं खिलाना है, उसे अपना एहसास देना है, उसे कंगारू केयर भी देनी है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन जैसा जैसा डॉक्टर हिमांशु गुप्ता हमें बता रहे हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट यानी कि बाल रोग विभाग किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से, उसी तरह की चीजों को अपनाना

और अब वक्त तो चला है प्यारे से ट्रैक का, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और उसके बाद वापस फिर से ढेर सारी जानकारी के साथ होंगे हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु गुप्ता।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।

0: चार धाम यात्रा, सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: दोस्तों, FM रेनबो पर इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है शत्रु पर, जिसमें आज हम करते हैं हेल्थ की बात। और हेल्थ की बात आज प्यार और एहसास से हो रही है, यानी कि कंगारू मदर केयर, जिसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बाल रोग विभाग किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं हिमांशु सर। और सर, आप बताएं कि ग्रामीण क्षेत्रों में या जो छोटे घर में रहने वाली महिलाएं हैं, वो कैसे कंगारू मदर केयर आसानी से कर सकती हैं, अपना सकती हैं?
3: हाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, KMC के लिए किसी महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ साफ कपड़ा, आरामदायक बैठने की जगह, स्वच्छता, परिवार का सहयोग। इसमें बस आपको क्या करना है, आप अपने साफ सफाई का ध्यान रखें, और कोई जो सामने से खुलने वाले जो गाउन होते हैं उनको आपको पहनना है, बच्चे को टोपी पहनाना है, मोजा पहनाना है, डायपर पहनाना है, और सामने से खुले आधी बांह के आस्तीन वाले कपड़े पहनाकर बच्चे को अपने दोनों आस्तनों के बीचों बीच में रखें, और गर्दन सीधी रहे, बच्चे का सर एक तरफ हल्का सा मुड़ा होना चाहिए और गर्दन सीधी होनी चाहिए, जिससे बच्चा और माँ का आई टू आई कॉन्टेक्ट रहे, जिससे बॉन्डिंग बढ़ेगी और माँ को भी अच्छा लगेगा और कॉन्फिडेंस रहेगा। और उसके बाद ऊपर से एक कोई कंबल या कोई तौलिया से उसको आप अच्छे से कवर कर दें।
2: अच्छा सर, जो वर्किंग वुमेन है, जो काम करने के लिए बाहर जाती हैं ऑफिस में, घर पे ज्यादा काम टाइम नहीं दे पाती हैं, उनके लिए क्या सुझाव रहेगा KMC के से रिलेटेड?
3: देखिए, जो कामकाजी महिलाएं हैं वो घर आने पे KMC कर सकती हैं, रात में स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट कर सकती हैं, ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस कर सकती हैं, और परिवार के सदस्यों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए।
2: सर, जरा एक बार फिर से कंगारू केयर का जो सही तरीका है वो, उसके बारे में जरा बताइए।
3: हाँ, ये बहुत जरूरी है, इसके लिए हमें अपनी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, हाथ अच्छी तरीके से धोना चाहिए, बच्चे को केवल डायपर, कैप, मोजे और सामने से खुलने वाली बिना बांह वाली शर्ट पहनाना चाहिए, बच्चे को माँ के सीने पे सीधे रखें, बच्चे का सिर एक तरफ हल्का ऊपर रखें, बच्चे की पीठ को कपड़े या कोई शॉल से सब ढक दें, और बच्चे की ब्रीदिंग पे ध्यान रखें।
2: सर, हमें ये लगता है कि कंगारू मदर केयर के लिए ये जो तरीका है, कंगारू केयर का सही तरीका, इसको सही से आना बहुत जरूरी है। तो बच्चे को पकड़ने का और बच्चे को कपड़े पहनाने का सही तरीका एक बार फिर से बता दीजिए।
3: ये आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, इसमें ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को पोजीशन क्या करें KMC देने के लिए। इसलिए आपको ध्यान देना है कि बच्चा माँ के दोनों आस्तनों के बीच सीधी पोजीशन में रखना चाहिए, एवं बच्चे का सर एक तरफ टर्न होना चाहिए, एवं गर्दन सीधी रहनी चाहिए, जिससे बच्चे एवं माँ का आई टू आई कॉन्टेक्ट हो सके, और बच्चे का जो कूल्हा है वो एक फ्रॉग लाइक पोजीशन में होना चाहिए, हाथ मुड़े होने चाहिए अंदर की ओर, और बच्चे का पेट और माँ का पेट का ऊपरी हिस्सा एक लेवल पे होना चाहिए, एंड बेबी का जो बॉटम है उसको एक स्लिंग से सपोर्ट करना चाहिए।
2: जी असर, इसके अलावा कंगारू मदर केयर करते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए?
3: हाँ शालिनी जी, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा आराम से सांस ले रहा हो, बच्चे का चेहरा ढका ना हो, माँ बहुत थकी नहीं हो, एंड बच्चा बहुत ठंडा या बहुत गर्म ना लगना चाहिए, स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें, इन सब छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
2: सर, क्या कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जब कंगारू मदर केयर नहीं करना चाहिए या डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए?
3: देखिए, डॉक्टर की सलाह जरूरी है, यदि बच्चा बहुत गंभीर रूप से बीमार है, या बच्चा कोई वेंटिलेटर सपोर्ट पे है, या उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, उसको कोई सीवर इन्फेक्शन हो, उसको सीजर्स आ रहे हो, या माँ खुद गंभीर रूप से बीमार हो, ऐसी कंडीशन में KMC नहीं करना चाहिए, या ऐसी कंडीशन में डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी होती है।
2: सर, जैसा कि आपने बताया कि NICU में है बच्चा, तो क्या तब हम कंगारू केयर कैसे हेल्प करते हैं बच्चे की?
3: हाँ देखिए, NICU में अगर कोई माँ अपने बच्चे की KMC करती है तो इससे बच्चे की रिकवरी में बहुत फायदा करती है। इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन का खतरा, मृत्यु दर में बहुत कमी आती है, बच्चे की ऑक्सीजन स्टेबिलिटी बेहतर होती है, स्ट्रेस कम होता है, बच्चे का शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, बच्चे का वजन तेजी से बढ़ता है, और साथ साथ इसके क्या होता है कि बच्चे की जो ब्रेस्ट फीड

0: होती है वो भी इम्प्रूव होती है, और केएमसी करने से पेरेंट्स की बॉन्डिंग मजबूत होती है।
1: तो दोस्तों सुना ना कितनी इम्पोर्टेंट है ये कंगारू मदर केयर। जैसे कि कंगारू अपने बच्चे को अपने पॉकेट में रखता है ना, देखा होगा आगे से थैली होती है, इसके अलावा और किसी एनिमल में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट कंगारू मदर केयर लिया गया है। लेकिन कंगारू फैमिली केयर भी किया जा सकता है, मदर अगर अवेलेबल नहीं है तो पिता, दादी, दादा, नाना, नानी जो भी है उसको केयर दे सकते हैं। लेकिन हाँ, केयर कैसे देनी है, कैसे पोजिशन में रखना है, कैसे ध्यान रखना है बच्चे का, इन सारी बातों का खास ध्यान रखना होगा आपको। और अब आ रही है एक प्यारे से ट्रैक की, और उसके बाद अभी भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम दोबारा भी पूछ सकते हैं सर से, ताकि आपके कहते ना कि ये बात दिमाग में आ जाए, गांठ बांध लें इस बात को। ठीक है, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: दोस्तों 12:45 हो चले हैं प्रोग्राम शत्रुपा में हेल्थ की बात डॉक्टर हिमांशु गुप्ता के साथ, और शालिनी है कंगारू मदर केयर लेकर, यानी कि कंगारू केयर केवल मदर ही नहीं कोई भी कर सकता है। तो एक फिर से सवाल को रिपीट करते हैं और सर से जानते हैं, क्या सिर्फ माँ ही कंगारू केयर कर सकती है या और भी कोई?
4: नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पति और परिवार के अन्य सदस्य भी ट्रेन गाइडेंस में केएमसी दे सकते हैं।
3: सर क्या सर्दियों में कंगारू केयर सुरक्षित है?
4: हाँ, ये बिल्कुल सुरक्षित है। असल में केएमसी बच्चे को प्राकृतिक गर्माहट देता है एंड हाइपोथर्मिया से बचाता है।
3: सर अच्छा, जो कमजोर बच्चे होते हैं, कम वजन वाले बच्चे होते हैं, उसमें ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है?
4: हाँ, ऐसे बच्चों में सही पोजिशनिंग, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, फीडिंग ऑब्जर्वेशन एंड रेगुलर फॉलोअप बहुत जरूरी होता है।
3: अब माताओं के लिए, नई माताओं में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप उनसे क्या कहना चाहेंगे?
4: मैं नई माताओं को संदेश देना चाहूंगा कि हर माँ अपने बच्चे की सबसे अच्छी देखभाल कर सकती है, कि हमसे कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। आपका प्यार, स्पर्श और समय ही बच्चे की सबसे बड़ी दवा है, इसलिए सभी नई माताएं अपने बच्चे में केएमसी जरूर से जरूर करें।
3: सर कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो पहली बार माँ बनती हैं, यानी कि उनका पहला जब बेबी होता है तो उन्हें अपने बेबी के केयर करने में भी डर लगता है और ब्रेस्ट फीडिंग में भी उनको डर लगता है। तमाम सारे सवाल उनके आते हैं कि बॉडी का, हमारा जो हमारी बॉडी है वो ना अच्छी रह जाए या और भी सारी चीजें, दिक्कतें होंगी, क्या करें? उनके डर के लिए उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, उनके बारे में भी जरा बताएं।
4: देखिए शालिनी जी, डरना स्वाभाविक है। जो नई माँ है वो बच्चे के प्रति काफी संवेदनशील होती हैं, उनको छोटी छोटी बातों से डर लगता है, बट इसके लिए आपको डरना नहीं है। धीरे धीरे सीखें, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ से मदद लें, परिवार का सहयोग लें, हर दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा।
3: और अब सर एक लाइन में श्रोताओं को हमारे कंगारू केयर का सबसे बड़ा संदेश क्या देना चाहेंगे?
4: मैं यही कहना चाहूंगा कि माँ का स्पर्श ही नवजात के लिए सबसे सुरक्षित, सस्ती एवं असरदार दवा है। माँ का स्पर्श जीवन का आधार है। कंगारू केयर से नवजात का उज्जवल संसार है। धन्यवाद।
3: क्या बात है, स्पर्श की बात की गई है, प्यार की बात की गई है, एहसास की बात की गई है, और ये हर रिश्ते में इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर हम नवजात शिशु की बात करें तो यहाँ पर ये बहुत से ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक और उसके बाद करते हैं बात, और साथ ही साथ हम विदा लेंगे कौन, अपने एक्सपर्ट से, जो कि डॉक्टर हिमांशु गुप्ता सर थे हमारे साथ अभी, असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के GMU से।

0: के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: सात रंग का इंद्रधनुष है,
2: सात सुरों की सरगम है,

0: के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: सात रंग का इंद्रधनुष है,
2: सात सुरों की सरगम है,
3: सात जन्म है सात समंदर,
1: साथ हमारा हरदम है,
3: जिंदगी के सतरंगी रंग
2: FM रेनबो के संग।

12:55 और 55 सेकेंड होने को है। और दोस्तों आप सभी लोग सुन रहे थे प्रोग्राम शत्रुपा, क्योंकि थे इसलिए आया है, अब वक्त चला है इसे वाइंड अप करने का। और जो कंगारू मदर केयर के बारे में हमने बताया है वो फैमिली केयर भी बन सकता है, बस देने का सही तरीका, सही समय, कब देना है, कैसे देना, हर कोई दे सकता है। बच्चे के साथ बाउंडिंग अच्छी होगी, उसे एहसास अच्छा लगेगा, बच्चे की कई सारी चीज जैसे कि कम नींद आना, उसे उसके रोना, ये सारी चीजें कम होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिया जा सकता है। और मजे की बात क्या है, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है ना, और तो और जो देता है ना उसे भी अच्छा एहसास होता है। तो डॉक्टर हिमांशु सर ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, उसे फॉलो करना है और साथ ही साथ हमसे जुड़े रहना है, यानी कि एफएम रेनबो के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम ओटो पे तेरी बात में शालिनी होगी फिर से आपके साथ, अभी भी है, कहीं नहीं जा रही है। और आज हम लेकर आते हैं और लोगों की बातचीत, तो बातचीत में आज हम लेके आए कि आपको अकेले घूमना पसंद है या अपनी फैमिली के साथ घूमना पसंद, या कोई खास दोस्त है आपका, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पे।

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 लिपियों को भारत की आत्मा का अध्याय मानते हैं। वेद, उपनिषद, रामायण जैसे ग्रंथ हमारी धरोहर है। पांडुलिपियों में गणित, विज्ञान, दवा और कला का ज्ञान है। यह हमारी संस्कृति और सोच को दिखाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आग्रह करता हूं कि पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए आगे आएं। यदि आपके पास भी कोई प्राचीन पांडुलिपि, हस्तलिखित ग्रंथ, ताड़पत्र आदि उपलब्ध है तो इसकी जानकारी ज्ञान भारत मोबाइल ऐप अथवा पोर्टल पर अपलोड करें ताकि उसका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। उत्तर प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। प्रदेश सरकार ने 2400 मेगावाट क्षमता की नई तापीय ऊर्जा परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की लागत लगभग 38,358 करोड़ होगी। इस परियोजना को प्रदेश सरकार एवं एनटीपीसी ने संयुक्त उपक्रम के माध्यम से स्थापित और संचालित किया जाएगा। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इस ऐतिहासिक निर्णय पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखीमपुर बहराइच नेशनल हाईवे 730 पर आज सुबह सड़क हादसे में 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे यह हादसा एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी गाड़ी के बीच हुई भिड़ंत से हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। अधिकारियों ने घायलों को सीएससी कमरिया भिजवाया जहां 2 गंभीर रूप से घायलों का इलाज जारी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर आ रहे हैं। रायबरेली कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि 19 मई को राहुल गांधी रायबरेली के बछावा विधानसभा क्षेत्र के मेहरी गांव में बारात घर का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद कीरू में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर लालगंज में महिला संवाद में भाग लेंगे। 20 मई को वह सुबह गेस्ट हाउस में लोगों से मुलाकात करने के बाद लोधवारी गांव में वीरा की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद वापस दिल्ली जाएंगे। देश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी रखी जाए। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाए।

0: के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: एक बजकर 4 मिनट और 14 सेकंड हो चले हैं प्रोग्राम होठों पे तेरी बात की हो चुकी है शुरुआत। और आज हम बहुत ही खास बात करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शालिनी इतनी गर्मी हो रही है और आप घूमने-झूमने की बात कर रही हैं। देखिए घूमने तो जाते ही हैं, लेकिन हाँ

तरीके से जाते हैं, प्लान बना के जाते हैं, सोच समझ कर जाते हैं कि कब कहाँ कैसे जाना है और किसके साथ जाना है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है ना दोस्तों, जो हम प्लान बनाते हैं, प्लान हमारा रह जाता है, धरे के धरा रह जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। कई बार बिना प्लान के ही हम अचानक से सैर पर निकल जाते हैं और कई बार निकलने के बाद भी वो जगह पर पहुंच नहीं पाते हैं। तब फिर हम क्या कहते हैं, हाँ वक्त को यही मंजूर था। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही प्यारी सी बात कि आपको किसके साथ घूमना पसंद है, फैमिली के साथ, अकेले, या कोई खास फ्रेंड, या बहुत सारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो आपको बता डालना है अपनी बात fmakashwani@gmail.com पर। बाकी कई लोगों की बातचीत तो हम लेकर ही आए हैं जो आप तक पहुंचाएंगे। और इन सब चीजों के लिए क्या करना होगा, आपको हमारा साथ देना होगा, सुनते रहना होगा 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो
1: धड़कन लखनऊ।
2: और अब सुनिए इलाकाई खबरें।
3: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। स्वीडन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस अवार्ड से नवाजा। ये स्वीडन का किसी भी सरबराह ममलकत को दिया जाने वाला सबसे बड़ा एजाज़ है। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्वीडन का आला तरीन एजाज़ हासिल करना सिर्फ उनके लिए एजाज़ नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए एजाज़ है। ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अब तक मिला 31वां आलमी एजाज़ है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपनी सरकारी रिहायशगाह पर कैबिनेट मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में रियासत के मजमूई तरक्की, गुड गवर्नेंस और अवामी सहूलियात की तौसी से मुतालिक मुख्तलिफ अहम तजावीज़ पर फैसले किए गए। इससे कबल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अपनी काबीना में नए मुकर्रर करदा और तरक्की पाने वाले वज़रा को कलमदान तफवीज़ किए। नए मुकर्रर करदा वज़रा में साबिक बीजेपी रियासती सदर भूपेंद्र चौधरी को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSME का महकमा सौंपा गया है। मनोज कुमार पांडे को खुराक और शहरी सप्लाई का महकमा दिया गया। अजीत पाल सिंह, जिन्हें काबीना में तौसी के दौरान वजीर ममलकत के ओहदे पर तरक्की दी गई है, उन्हें फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल पेंशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। सोमेंद्र तोमर को मिलिट्री वेलफेयर और सूबाई डिफेंस फोर्स के महकमे का चार्ज दिया गया है। चार नए मुकर्रर करदा वज़राए ममलकत को भी कलमदान दिए गए। कृष्णा पासवान को हैवानात और दूध की तरक्की का महकमा, सुरेंद्र दिलेर को रेवेन्यू का महकमा, हंसराज विश्वकर्मा को छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारों की वजारत और कैलाश राजपूत को तवानाई और इजाफी तवानाई के ज़राए का महकमा सौंपा गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के जरिए मुनक्किदा इंस्ट्रक्टर एजाजी तकरीब और चेक तकसीम प्रोग्राम में शिरकत की। इस तकरीब का इनेकाद तालीमी साल 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर्स के एजाजिया को 9,000 से 17,000 रुपये माहाना करने के लिए किया गया था। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि एजाजिया में इजाफे के साथ साथ रियासती हुकूमत असातिज़ा को 5 लाख रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस कवर का फ़ायदा फराहम करने जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का इरादा है कि हर बच्चा तालीम हासिल करे ताकि तरक्की याफ्ता भारत का अज़्म पूरा हो सके।
4: जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था, और आज हम इसको घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे।
3: लखीमपुर खीरी ज़िले में आज सुबह हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम अज़ कम 9 अफराद जाँ बहक हो गए। ज़िला हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती हाईवे पर अदालीसपुर गांव के करीब यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज़ रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर सामने से आ रही एक गाड़ी से टकरा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव काम शुरू कर दिया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शदीद रंज का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी ज़िले में पेश आने वाले सड़क हादसे में जानी नुकसान इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है। मेरी ताज़ियत सोगवार ख़ानदान के साथ है। वज़ीर आला ने मकामी इंतजामिया को ज़ख्मियों और मुतासरीन को फौरी और मुनासिब इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। महकमा मौसमियात ने मशरक़ी उत्तर प्रदेश के शुमाल मशरक़ी हिस्सों में 20 मई से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। साथ ही महकमे ने 19 और 20 मई को रियासत के मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में दिन के वक्त कुछ मकामात पर तेज़ लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

0: इस दरमियान रियासत में लगातार बढ़ रही जबरदस्त गर्मी और लू के मद्देनजर वजीर आला ने इंतजामिया को चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से मुतासिर मरीजों के इलाज के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएं। वजीर आला ने अस्पतालों में अदवियात, बेड और डॉक्टरों की दस्तियाबी को बरकरार रखते हुए एम्बुलेंस सर्विसेज को फ़ाल रखने की भी हिदायत दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: सफर की हमारी यूं शुरुआत होती है, सुबह 6 बजे पुष्पांजलि से पहली मुलाकात होती है, दिन भर का समय कैसे बीत जाता है, रेनबो अपना हर रंग मानो बिखेरता जाता है,
2: रंग दे तुम
1: रात में तब सुकून आता है जब सदाबहार गीत कोई हमारे कानों में गुनगुनाता है,
3: मन क्यों बहका आधी रात को।
1: तमाम सारी जानकारी मनोरंजन के संग सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर सुनना ना भूलें, सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
4: ओ दिल दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है,
5: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन,
6: हैंगओवर
5: Only 100.7 FM Rainbow.
7: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
8: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।

0: दोस्तों 1:21 हो चले हैं प्रोग्राम होटो पे तेरी बात में, शालिनी है आपके साथ। तो आपको कहाँ घूमने जाने हैं इसकी बात हम नहीं करने वाले। जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो कैसे आपको पसंद है जाना, फैमिली के साथ, अकेले या अपने फ्रेंड्स के साथ? तो जरा सुनिए इनका क्या है कहना।
1: मैं चंद्रस कुमार हूँ। वैसे तो अकेले भी बढ़िया लगता है घूमने में। अकेले में जैसे कोई रोक टोक नहीं, चाहे जहाँ जा सकते हैं कहीं भी। और फैमिली में ये रहता है, उन्हीं के हिसाब से जो है देख के मतलब घूमना उमना पसंद करना पड़ता है, ये है। बाकी तो दोनों में मजा आता है। अभी मैं भी इस कश्मीर गया था दोस्तों के साथ, बहुत मजा आया। चाहे मन चाहे जो भी कहीं भी जा सके। और फैमिली के साथ ये रहता है, देख रेख के मतलब साथ में उनको लेके चलना पड़ता है, ये सब रहती है इसमें। वैसे तो दोस्त के साथ ज्यादा अच्छा लगता है घूमने में, और तो बढ़िया।
0: देखिए हर कंडीशन के साथ घूमने का अपना अलग मजा है। अकेले गए तो कोई रोक टोक नहीं, फैमिली के साथ गए तो उसका अलग मजा है, फ्रेंड्स के साथ तो क्या कहने। गुलफसा सिद्दीकी का मैसेज आ चुका है, इन्होंने हमें संडीला से मैसेज किया है। इनका कहना है कि इन्हें अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ घूमने जाना अच्छा लगता है, और कई बार ये लखनऊ जाती है घूमने, बड़ा इमामबाड़ा और घंटा घर। बिल्कुल सही बात है, घूमने जाना चाहिए। और ये बबीता राय जी का भी मेल आ चुका है, लखनऊ गोसाईगंज से ये हमें मेल कर रही है। लिख रही है कि मैम जी, मुझे कहीं भी बाहर जाना हो तो मैं अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ जाना पसंद करती हूँ, अकेले जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चलिए ठीक है, और भी मेल शामिल करेंगे लेकिन इस प्यारे से ट्रैक के बाद।

0: दोस्तों, आप सभी लोग सुन रहे प्रोग्राम उठो पे तेरी बात। और रोशनी रावत जी का मेल आ चुका है सफीपुर जिला उन्नाव से, और इन्होंने लिखा है कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है घूमना फिरना, इसीलिए बहुत सी जगहों पर गई, और मुझे अकेले नहीं ग्रुप में जाना ज्यादा पसंद है, और हर जगह के अनुभव अलग अलग हैं। और इन्होंने कहाँ कहाँ की घुमाई कर ली है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू, चंडीगढ़, दिल्ली, सभी जगह पर घुमाई है, और ये बस शुरुआत है, अभी तो भारत भ्रमण करना है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं भारत के अंदर ही जहां जाकर हमें सुकून मिलता है, बढ़िया वाला अनुभव होता है जो किसी से शेयर किया भी नहीं जा सकता। कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर अच्छा वाला अनुभव, तो भारत की कई जगहों पर घूमने चाहिए और हर जगह का अनुभव लेकर आइए और लोगों से शेयर करिए, बताइए अपने भारत के बारे में। और किसका मेल आ चुका है, ये किसका मेल आया है, अर्पित शर्मा, निर्मला और तुषिका शर्मा और थाना राम शर्मा जी का मेल है राजस्थान से। और अच्छा, इन्होंने बस हमारी तारीफ लिख दी है, अपनी बात इन्होंने नहीं लिखकर भेजी है कि घूमने से रिलेटेड इन्हें किसके साथ जाना पसंद है। और जिला रायबरेली पहाड़ी पर से रामराज, राजू भानु और शंकर भैया और कई सारे लोगों ने मेल हमें लेकर भेजा है। अच्छा, इन्होंने भी जो काम की बात है उसकी तो बात ही नहीं की है कि इन्हें कैसे घूमने जाना पसंद है, अपनी फैमिली के साथ, अकेले या अपने दोस्तों के साथ। और मैम जी, आपको सादर प्रणाम। पिंकू सोनी परिजा, इन्होंने कहा से, बाराबंकी से हमें लिखकर भेजा है, और इन्होंने लिखा है कि फैमिली टूर इज बेस्ट, सो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, इन्हें अपने फैमिली के साथ कहीं जाना पसंद है। और दोस्तों, इसके अलावा जो हम बातें लेकर आए हैं तो इनकी भी सुन लेते हैं कि इनका क्या है कहना।
1: मेरा नाम कौशिक है, मैं लखनऊ से हूँ, और मैं भी दोस्तों के साथ घूमने प्रेफर करूँगा, ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिल जाती है, और मेरे पेरेंट्स ज़्यादा घूमने का शौक़ रखते भी नहीं है, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो मिल जाएगी, लेकिन मस्ती नहीं कर पाऊँगा मैं लोगों के साथ, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहता हूँ। दोस्तों के साथ अगर मेरे को कहीं पर जाना है तो मैं कहीं पर जा सकता हूँ, मेरे को कुछ ऐसा एडवेंचर करना है जो कि पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकता, वो भी कर सकता हूँ, तो हाँ बेटर रहता है दोस्तों के साथ, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ फ्रेंड्स के साथ घूमना।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: मैं समय हूँ और मैं हरीश बिमानी हूँ और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
3: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: मौसम चाहे जैसा भी हो, घूमने सुमने जाना सभी को पसंद है। और इसके लिए तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल बच्चे ही पसंद करते हैं, बड़े नहीं, बूढ़े नहीं और जवान नहीं, सब जाते हैं। और देखिए ये मेल किया है समशुल कमर राही बेगम, रुखसार रकीबा शाहीन तूफा आफरीन, इन्होंने आजमगढ़ से लिखा है। इन्होंने लिखा है, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो अपने बच्चों को जरूर साथ में लेकर जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे साथ होते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। और जब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं ना कि भाई हम जाएंगे तो घूमने, लेकिन बच्चों को नहीं ले जाएंगे, इनको घर में ही छोड़ कर, क्योंकि ये सभी नाक में दम जो कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं उनके बिना अच्छा नहीं लगता। तो अपनी चॉइस है, अपनी बातें हैं, अपना मजा है, तो इनका क्या है कहना, इनकी भी सुन लेते हैं।
1: मेरा नाम मुन्ना कुमार है, मैं लखनऊ में अभी ड्यूटी कर रहा हूँ, यहीं पे भी स्टे किया हूँ। ऐसे अगर घूमने की बात की जाए तो अभी आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि करंटली आप किस सिचुएशन में। मान लीजिए अभी आप फैमिली मैन नहीं है, आपके शादी नहीं हुई है, इन केस तब आपको सिंगल घूमने में मजा आता, क्योंकि उस समय आपके साथ फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स के साथ जो इन्जॉयमेंट होता है वो अलग होता है। अगर आपके साथ फैमिली है, मान लीजिए आप मैरिड हैं तो आप फैमिली के साथ घूम रहे हैं, फैमिली के साथ घूमने के साथ क्या होता है कि आप फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं, अपने फैमिली के साथ माता पिताजी हैं, भाई हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनके साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो उसका इन्जॉयमेंट अलग होता है। इस पर आपके फैमिली के ऊपर डिपेंडेंसी जैसे होती है कि आपका नेचर क्या जा रहा है, फैमिली के इन्वायरमेंट में भी नेचर जाता है, तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। बाकी बेसिकली तो फैमिली के साथ ही सबको प्रेफर करना भी चाहिए और जाना भी चाहिए। मैं भी फैमिली के साथ ही जाता हूँ, क्योंकि एट ए टाइम फैमिली आपके साथ रहेगी, आप तो सिंगल दोस्तों के साथ तो हमेशा मौज मस्ती करते रहते हैं। थैंक यू।

दोस्तों, सभी लोग अपने दिल का ही हाल तो बता रहे हैं। जैसे कि सुधाकर राधे जाधव जी का भी मेल आया है कालेगांव जाफराबाद से, और ये लिख रहे हैं कि धूप बहुत होने की वजह से ये कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम, हमारा खेत और हमारा घर। भाई खेत का जो मौसम है ना, वो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, भरी दोपहरी में जब आप खेतों में काम करते हैं तब तो गर्मी होती ही है, और आप काम करते हैं, हमारा किसान काम करता है, तो ही हमको अनाज मिल पाता है, खाने की चीज।

0: चीजें मिल पाती हैं, उन्हें सलाम है। बसंत कुमार सिन्हा का भी मेल आ चुका है और ये हमें दमदार एयरपोर्ट कलकत्ता से मेल कर रहे हैं और अकेले में कहीं घूमने में कोई मजा नहीं है, पूरे परिवार के साथ बच्चों के साथ घूमने में आनंद आता है। बिल्कुल सही बात है। वैसे अगर हम कहें ना, जो अकेला है अभी तक, जिसकी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, उन्हें अकेले में घूमना फिरना पसंद है, दोस्तों के साथ पसंद है, और जिनके बीबी बच्चे हैं, जिनका परिवार है, माता पिता है, वो चाहते हैं कि परिवार के साथ घूमने जाएं। और सुनिए इनका क्या है कहना।
1: हेलो, मेरा नाम रामजीत है, मैं लखनऊ से हूँ। मुझे घूमना जो है मेरे फैमिली के साथ है, फैमिली के साथ मुझे अच्छा लगता है। जैसे कोई इधर है, कोई बाहर है, तो कभी 6 मंथ या 1 ईयर में आता है, तो फिर फैमिली के साथ एक साथ होते हैं, तो घूमने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मतलब एक्सप्लेन होता है हर एक बात, हर एक।
2: मेरा नाम उद्भव मिश्रा है और मैं लखनऊ से हूँ, और अगर आप उससे पूछें तो मैं प्रेफर करूँगा अपने दोस्तों के साथ घूमना, क्योंकि दोस्तों के साथ घूमने में ज़्यादा मस्ती हो जाती है। फैमिली के साथ भी प्रेफर कर सकता हूँ, क्योंकि फिर उसमें जो एक्सपेंसेस है वो मेरे ऊपर नहीं आते, तो और एक्स्ट्रा वैकेंट ट्रिप हो सकती है।
3: मेरा नाम है सरफराज अहमद खान और मुझे घूमना फैमिली के साथ पसंद है, क्योंकि मेरा फैमिली जो है वो मेरे फ्रेंड की तरह रहता है, मुझे कोई भी उनके साथ एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो सब एक फ्रेंड की तरह रहते हैं। अक्सर मैं अपने फैमिली के साथ ही घूमता हूँ, और मैं एडवाइस तो नहीं दूंगा कि ऐसा सभी करें, जिसको जो बेहतर हो उसे वो करना चाहिए, लेकिन अक्सर फैमिली के साथ घूमना चाहिए, क्योंकि फैमिली को भी जब साथ में घूमते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है।

दोस्तों 1:49 का वक्त हो चला है और बाबू अंसारी जी का मेल बाराबंकी से आया है और इन्होंने लिखा है कि मुझे घूमना पसंद है और मैं अपने चाचा के साथ घूमने जाना पसंद करता हूं और उन्हीं के साथ सारी जगह का टूर बन जाता है। क्या बात है। अमन का भी मेल आ चुका है। और अच्छा अमन, आपने आज टॉपिक ही नहीं सुना, यानी कि आपने देर से हमको ज्वाइन किया है ना। बहुत गलत बात है। देखिए, चलिए हम बता देते हैं कि आपको जब कहीं घूमने जाना है तो अपनी फैमिली के साथ पसंद है, अकेले जाना पसंद है या अपने फ्रेंड्स के साथ जाना। और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की।

और दोस्तों इसी के साथ बता दें कि वक्त हो चला है इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का, लेकिन उससे पहले मोहम्मद फैज रामपुर कटरा जिला बाराबंकी से हमें कुछ कह रहे हैं। इनका कहना है कि अगर इन्हें घूमने जाने का मौका मिलता है तो ये अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ जाना चाहेंगे। और ये अपने बड़े भाई के मोबाइल की मेल आईडी से मेल कर रहे हैं और इनके दोस्त बाबू अंसारी भाई भी इनके साथ हैं। और ढेर सारे ईमेल और भी आ चुके हैं। प्रवीण जी का मेल आया है, अच्छा, अगर ये धार्मिक स्थानों पर जाएंगे तो परिवार के साथ, खूबसूरत प्राकृतिक जगह पर जाएंगे तो अकेले, और मौज मस्ती वाली जगह जाएंगे तो दोस्तों के साथ। भाई प्रवीण जी, अगर आपकी फैमिली सुन रही होगी ना, आज आपकी क्लास लगने वाली है। अमन का कहना है कि इन्हें अपने पापा के साथ घूमने जाना बहुत

धार्मिक स्थानों पर जाएंगे तो परिवार के साथ, खूबसूरत प्राकृतिक जगह पर जाएंगे तो अकेले, और मौज मस्ती वाली जगह जाएंगे तो दोस्तों के साथ। भाई प्रवीण जी, अगर आपकी फैमिली सुन रही होगी ना, आज आपकी क्लास लगने वाली है। अमन का कहना है कि इन्हें अपने पापा के साथ घूमने जाना बहुत पसंद है और रास्ते में खूब सारी यमी चीजें खिलाते हुए पापा जाते हैं इनके। और अब इस प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक सुनिए, एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम हॉटमेल में आप हमें ढेर सारी मेल वैसे ही करने वाले हैं, लेकिन जो नए हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो भी हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पे। बढ़िया बढ़िया वाले गाने पसंद कीजिएगा।

नमस्कार, दोपहर के 2 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखीमपुर खीरी हादसे में हुई जान माल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरूआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും

0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रूपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज

0: मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
1: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ मन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
2: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

बजकर 39 मिनट और 15 सेकंड का वक्त और हमारे बीच मेल आ चुका है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव। अच्छा, कई सारे लोगों का नाम है जो जिनकी मेल अभी हमने पढ़े, ये सारे फ्रेंड्स आपस में बन चुके हैं और कई सारे ऑप्शन दिए हैं भाई। तो दिग्दर्शन जी, आपका मेल लेना बनता ही है। और मेल आया है सुधाकर राधे जाधव जी का है, काले गांव जाफराबाद से है। प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद, सानवी हैं साथ में। और जोन डी क्रॉस्टो, रोजी, पर्ल, विलेस का मेल जानकी, जनकपुरी, सहारनपुर से आया हुआ है। किसी भी गीत में इनका नाम शामिल कर लिया जाए। और सीतामणि बिहार से मुसर्रत जहानाज और तलहत जहानाज, फरहत जहानात, रिहवत जना जहानाज, मतलब सबके नाम एक ही राइम्स में लिए गए हैं ना, तो एक साथ पढ़ पाना थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल। साजिया साहिन और नाजिया नूरी नाज का मेल आ चुका है।

और मेल आया हुआ है, दीपेश वर्मा पूनम ज्योति शिवांश का है और पीपर लोडर सरगांव छत्तीसगढ़ से इन्होंने हमें मेल किया है। निसार अली जी का भी मेल तेलीवाला उत्तराखंड से आ चुका है। नौशाद सलमानी बेबी आलिया आयान बाबू के साथ में। नवी हसन जी का मेल है, शहनाज नावेद हसन रसीद वारिस सुहेल हसन अनम अब्बासी यसफ का दरवाजा एठा से मेल किया है। तुलसी मस्कीन जी का भी मेल आया है और बिहार कॉलोनी से इन्होंने चैतन्य मस्किन के साथ मेल किया है। सुरेश नारंग का भी मेल आ चुका है सोनाली के साथ, सहारनपुर से ये हमें मेल कर रहे हैं। पीएस नहाकर निर्मला विशाल नरवेल महाराष्ट्र से, मलकापुर नारायण इंगले राजकुमार और आशीष जी का मेल आ गया है। राधे कुमार विद्यार्थी जी का भी मेल आया हुआ है और इनका मेल कहाँ है भाई, जब आप कई बार एक ही मेल में लिखते हैं ना तो वो मेल आपका मिलता नहीं है, फॉरवर्ड होके दिखता है और क्या लिखा है आपने ये गुम हो जाता है। तो ध्यान से दोबारा जब भी मेल करें तो नया मेल कंपोज करें, राइट करें। गोकुल चौक गंग जला सहरसा बिहार से ये हमें मेल कर रहे हैं। सविता राकेश रंजन राजीव संजय ओम गुंजेश कुमकुम और बहुत सारे लोगों के नाम इन्होंने लिखे हुए हैं। वारिस अली खान जी का भी मेल आ चुका है, इन्होंने हमें संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से मेल किया है। सीताराम कांगड़ा जी का भी मेल है, बबीता बोट निखिल तन्वी के साथ में ये मेल कर रहे हैं। एकता कॉलोनी रोहतक से मेल आया है और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक के, सुनिए और एंजॉय कीजिए।

और हम तो ना जाने आपको कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं, और ये देखिए अब हम आपको ले जाने वाले हैं हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम सावेर राही महराज जहां ने हमें मेल किया हुआ है, और हीरामणि वर्मा का पारस मणि पुष्पेंद्र नोखेलाल के साथ में भाटापारा छत्तीसगढ़ से मेल आ चुका है। अंकित कांगड़ा का भी मेल आया। मोनी प्रिंस बोर्ड सीताराम साहिल के साथ हरियाणा से मेल हमें कर रहे हैं। तेज बहादुर यादव जी का मेल आ चुका है। रायबरेली उत्तर प्रदेश से हमें ये मेल कर रहे हैं। ममता रोनी तो और बेबी मोनी का भी साथ में है। दिलावर खान का भी मेल आ चुका है। हसीना बानो एलिजा नवाब लड्डू के साथ रघुवीर नगर से, ये बहुत प्यारा सा नाम है। और किसका मेल है, मोहम्मद सादिक अहमद शाकिर और बहुत सारे नाम है सनावत से ये हमें मेल कर रहे हैं। कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम का पिपरिया से, और समझी लामापारा से मुकेश श्रद्धा अदिति राधे दीपक का भी मेल आ चुका है। और कौशिक वंदना का भी मेल आया है। मम्मी पापा महेश के साथ में राजकोट गुजरात से हमें मेल कर रहे हैं। अशोक राज जी का मेल रायपुर मितौली लखीमपुर खीरी से आ चुका है। और संतोष भाकेर और सुनैना सुकन्या सविता का मेल नादेंड महाराष्ट्र से मेल आया हुआ है। लालगिरी का भी मेल हिना हर्षित खुशी गोस्वामी के साथ आ चुका है। और इन्होंने कहां से हमें मेल किया है ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहा, अच्छा लिखा है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। कहते हैं ना कि आंख कहीं और गई तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तभी तो नाम नहीं दिखा। और अब बारिश प्यारे से ट्रैक की एंजॉय कीजिए।

0: के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

दोस्तों 2:54 और 6 सेकंड हो चले हैं और लगभग लगभग सभी के नाम और सभी की ईमेल्स को मैंने शामिल कर लिया है। क्या बात है शालिनी, कितने स्मार्ट हो भाई। कोई तारीफ नहीं करेगा तो हम खुद ही कर लेते हैं। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा जी का मेल आया है। उदय भानपाल जी का भी मेल आ चुका है। एक नहीं कई सारे मेल आप कर देते हैं भाई, ऐसा मत किया करिए, थोड़ा सा दुख होता है। इन्होंने बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से मेल किया है। जयसिंह दीक्षा प्रतीक्षा विमलेश भी के साथ में आया हुआ है मेल। और बसंत कुमार सिन्हा का भी इस प्रोग्राम में मेल आ चुका है। और भाई दरकिनार बिल्कुल नहीं हम करते हैं, आपका मेल तो हमने हॉच मेल में भी शामिल किया था। कलकत्ता से आप हमें रेखा देवी के साथ मेल कर रहे हैं। पीके गुप्ता जी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने हमें अजय कुमार मिश्रा, विनोद कुमार, इन्होंने गोला गोकरण नाथ लखीमपुर खीरी से हमें मेल किया है। मनोज बंशल जी का भी मेल आया, हरियाणा से हमें ये मेल कर रहे हैं। मुकेश कश्यप जी का मेल है। सोनू सुरेश राजपाल, काजल मानवी, तानवी लक्ष्य सोनी, मतलब कोई नाम बाकी नहीं है। अजीत यादव का हसनगंज रसूल

अलीपुर बकिया से मेल आया है और ये साहिब आलम और बब्बन भाई का राजा जी पुरम लखनऊ से मेल आया हुआ है। रमाकांत सिंह का मेल है और अंकित कांगड़ा का मेल आ चुका है और भाई किसी की नाराजगी नहीं हो, बाबू अंसारी आपका भी मेल आ चुका है और आपने हमें हॉच मेल में भी मेल किया था, एक नहीं दो दो मेल किए थे, थैंक यू साथ देने के लिए। दारा सिंह का मेल आया है, रामेश्वर है और संदीप मक्कर का मेल शामिल किया जा चुका है, रवि कुमार राहुल का मेल आ चुका है और हसीना के नाम से, रामराज के नाम से कई सारे मेल, बोधराज खुरवाल जी आपने भी हमें मेल किया है।

का मेल आया है, रामेश्वर हैं और संदीप मक्कर का मेल शामिल किया जा चुका है, रवि कुमार राहुल का मेल आ चुका है और हसीना के नाम से, रामराज के नाम से कई सारे मेल, बोधराज खुरवाल जी आपने भी हमें मेल किया है, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, गीतिका भानु प्रकाश के साथ में आप हमें रेगुलर ईमेल करते हैं, भूलते नहीं है, तो हम कैसे आपका नाम लेना भूल सकते हैं। विनीत कुमार का भी मेल आ चुका है, रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से आप हमें मेल कर रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ इस प्रोग्राम को करें वाइंड अप, क्योंकि लास्ट गाना आप तक पहुंचाना है और उसके बाद प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में सातों तरह के रंग बिछाने हैं। शंभुदयाल जी का मेल है, राजेश वर्मा है और देख लेते हैं कोई ऐसा तो नहीं है जो रह गया हो। शेख मूसा जी का भी मेल है, पंकज शर्मा का मेल आया हुआ है, स्वर्ण सिंगल, अनिल वर्मा, फगुरम यादव, दीपेश, शंभु दयाल, बस इसके अलावा महेश बोहारा, मोहम्मद आमिर, प्रवीण रानपारा, वकील अहमद के अलावा नेहा वर्मा और बस इसके अलावा किसी का मेल नहीं है। अब इस गाने की करते हैं शुरुआत, नहीं तो ये गाना भी नहीं पहुंच पाएगा आप तक। सुनिए और एंजॉय कीजिए।

102.2 FM पर कनेक्ट हैं आप सिटी के म्यूजिकल हार्ट बीट रेनबो कानपुर के संग। जी हाँ, स्टूडियो की घड़ी बजा चुकी है दिन के 3 और ये टाइम है प्रोग्राम म्यूजिक कार का। प्रोग्राम म्यूजिक कार के ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और बातों को लेकर हाजिर हो चुकी है आपकी रेडियो फ्रेंड डार्जे मीनाक्षी। प्रोग्राम की स्टार्टिंग करने से पहले आपको बता रही हूं अपनी ईमेल आईडी। तो हमारी ईमेल आईडी है जिस पर आपको हमें करने हैं प्रोग्राम से रिलेटेड मेल। हमारी ईमेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com। जुड़े रहिए हमारे संग 102.2 FM पर और सुनते रहिए प्रोग्राम, साथ ही साथ ईमेल भी हमें करते रहिए, शामिल होंगी आपकी ईमेल। फिलहाल प्ले करने वाली हूँ प्रोग्राम का ये पहला गाना, इसे सुनकर ही हमेशा की तरह आपको गेस करना है दोस्तों कि आज प्रोग्राम में किस विषय पर बातें होने वाली हैं। और अगर ना गेस कर पाए तो भाई कोई बात नहीं, हमेशा ही कहती हूँ मैं हूँ ना। आ रहा है आप तक प्रोग्राम म्यूजिक आर का ये पहला गाना।

जी हाँ, 102.2 FM पर शुरुआत हो चुकी है प्रोग्राम म्यूजिक कार की। इस प्रोग्राम को लेकर आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त आरजे मीनाक्षी। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रोग्राम के पहले गाने से ही आप गेस करिएगा कि किस विषय पर प्रोग्राम होने वाला है। तो सारे श्रोताओं की तो नहीं, लेकिन हाँ, हमारे एक श्रोता हमसे जुड़े हैं और उन्होंने अपनी मेल हमें लिख भेजी है, पर ये मेल शामिल होगी, जरूर होगी, लेकिन अगले गाने के बाद। अभी तो बात कहानी वाली है ना। कहानी की शुरुआत किसी एक छोटे से विचार से, किसी सवाल से, सपने से या फिर किसी घटना से हो जाती है, और कहानियां हमेशा बीते समय के पन्नों में ही छुपी होती हैं। दोस्तों, कहानी का मतलब एक सिलसिला, कुछ किरदार, जैसे राजा और रानी। सरल शब्दों में कहें तो कहानी तब भी बन जाती है जब क्या हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ, कुछ हुआ है तो भला क्यों हुआ और आगे क्या हुआ। फिलहाल हम अपने कहानी वाले प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे, और उसके पहले आपके लिए क्या, आपके लिए है सवाल। तो सवाल है कि कौन सी ऐसी कहानी है जो अभी तक आपके मन में बसी है? क्या आपने भी किसी को कोई कहानी सुनाई है? कहानियों से रिलेटेड की कहानी, जैसे रोचक विषय पर आज प्रोग्राम हो रहा है, तो इससे संबंधित आपके पास यादें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, किसी की याद दिलाती होंगी। ये कहानी किस्से वाली जो बातें हैं, तो आप उन्हें हमें लिख भेजिए। कहाँ पर? हमारी ईमेल आईडी है airkansomedia@gmail.com। हमें है आपकी ईमेल का इंतजार, और आपको है इंतजार प्रोग्राम के अगले गाने का। ये रहा

साथियों, कहानियों से संबंधित चल रहा है प्रोग्राम म्यूजिक और आप सुन रहे हैं 102.2 एफएम पर आरजे मीनाक्षी। इस प्रोग्राम को लेकर कहानियां जीवन में काफी प्रभाव डालती हैं, केवल पढ़ी या लिखी ही नहीं जाती बल्कि सबसे ज्यादा रोचक ये तब बन जाती हैं जब कोई उन्हें सुनाता है रोचक तरीके से। बच्चे जब कहानियां सुनते हैं ना तो वो भी कहीं ना कहीं साक्षर हो रहे होते हैं। तो भाई बहुत बड़ी भूमिका होती है कहानी सुनाने वाले की, यानी कि कहानीकार की, कि वो कहानी या किस्सा किस तरह से सुना रहा है।

0: कई साल पहले की ये बात है।
1: बोलो माँ, क्यों क्यों हो गए?
0: भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: की रात मुझे याद है, वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ से, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे

दिन के 3:25 हो रहे हैं 102.2 FM पर कहानी किस्सों से भरपूर प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिकर लेकर हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे मीनाक्षी। साथियों दादा दादी नाना नानी की कहानियां भला उन्हें कौन भूल सकता है। जी हाँ दादा दादी नाना नानी वाली कहानियां किसने नहीं सुनी होंगी जो केवल मनोरंजन का एक साधन ही नहीं हुआ करती थी बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती थी। जरा याद कीजिए वो दिन जब कभी आपने भी ममतामयी उस गोद में रोमांच से भरपूर कहानियों के साथ ही साथ मेहनत ईमानदारी सच्चाई और बुद्धिमानी की सीख से परिपूर्ण कहानियां सुनी थी। जी हाँ किस्से कहानियां प्रेम और पुरानी यादों का अनमोल खजाना ही तो होते हैं। आज जब कहानियों की बात हो रही है तो बहुत सारी भूली बिसरी कहानी जो कहीं मन के किसी कोने में दबी पड़ी है फिर से उभर कर आ गई ना सामने।

और भाई देखिए, भूली बिसरी एक कहानी का गाना हम सुन जरूर रहे थे, लेकिन ऐसे ही कुछ किस्सा लिए आया है हमारा अगला मेल है। और ये मेल हमें किया है निष्ठा ने इन्नाव से। अपनी मेल में लिखती है कि कभी कभी बचपन की यादें अचानक दिल को छू जाती हैं। मुझे याद है मेरे ताऊ जी मेरे हर अटपटे सवाल का इतने प्यार और धैर्य से जवाब देते थे जैसे उनके पास हर सवाल का जवाब हो। उनकी कहानियाँ भी कमाल की होती थी। कभी राजा रानी की कहानी, वो मुझे ऐसी कहानियाँ सुनाते थे जिससे मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाते थे। और उसी में इन्होंने लिखा है कि कभी कभी राजा रानी की कहानी भी वो इन्हें सुनाते थे। आसमान, तारों और दुनिया की अनोखी बातों से जुड़ी कहानियाँ, कभी वीर योद्धाओं की कहानियाँ और कभी कभी ऐसी कहानियाँ जिनमें छिपी होती थी जिंदगी की बड़ी सीख। मैं उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनती थी और हर कहानी के साथ कुछ नया सीखती थी। आगे लिखती हैं कि आज जब जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है तब वो शामें और वो कहानियाँ बहुत याद आती हैं। शायद वही पल थे जो बचपन को इतना खास बना देते हैं। सही कहा निष्ठा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बाकी श्रोताओं को भी मैं बता दूं कि हमारी ईमेल आईडी है airkansomedia@gmail.com। कहानियों से हमें परिवार, दोस्ती और प्यार का महत्व समझ में आता है। बड़ों से सुनी गई कहानियों से हमें जीवन की सीख मिलती है, जैसा कि हमने अभी मेल में भी ये बात पढ़ी, क्योंकि उन कहानियों में छुपे होते हैं उनके अनुभव भी, जो हमें अपने जीवन में बगैर किसी गलती के आगे बढ़ने की सीख देते हैं। किससे कहानियों को सुनते सुनते हम पढ़ जाते हैं पाठ कौन से? जी हाँ, साहस, धैर्य, ईमानदारी जैसे जीवन के नैतिक मूल्यों वाले पाठ। आ रहा है आप तक म्यूजिकल प्रोग्राम का ये अगला म्यूजिकल ट्रैक।

जी हाँ, बड़ी सपनीली होती है ये कहानियां। बच्चों को कहानियों के रोचक संसार से जोड़ने के लिए पंचतंत्र की शिक्षाप्रद कहानियों से जोड़ा जा सकता है। प्रकृति से बड़ी सरलता से जुड़ जाते हैं बच्चे इन कहानियों के माध्यम से, क्योंकि इन कहानियों में एक बड़ा सा जंगल होता है और उस जंगल में रहते हैं ऐसे पशु पक्षी जो हम इंसानों की तरह सोचते भी हैं और बोलते भी हैं। बच्चों को और चाहिए क्या? कछुआ और खरगोश, शेर और खरगोश वाली कहानी, अंगूर खट्टे हैं जिसमें चालाक लोमड़ी वाली कहानी थी, प्यासा कौवा कैसे बुद्धिमानी से कंकड़ियां डालता है घड़े में और पानी ऊपर आ जाता है घड़े में, अपनी प्यास बुझा लेता है। तो ऐसी रोचक जो कहानियां हैं जो बच्चों को जीवन में कुछ करने की शिक्षा भी हंसी खेल में दे दिया करती थी। और अगर इंग्लिश में कोई कहानी पढ़ना चाहे तो रस्किन बॉन्ड की कहानियां भी पढ़ी जा सकती हैं, बहुत ही रोचक होती हैं। इनकी कहानियों में पिरोए होते हैं जीवन के छोटे छोटे पल। भाषा शैली भी इतनी सरल और सहज होती है जो बच्चों के मन में बड़ी जल्दी उतर जाती है। जी हाँ, कहानी किस्सों का संसार

यार कभी मतलब ये जो बातें हैं ना कभी रुकने थमने वाली नहीं होती हैं दोस्तों। बट हम घड़ी की ओर देख रहे हैं तो आज के प्रोग्राम म्यूजिक कार के आखिरी गाने का समय हो चला है। आप तक भेज रही हूँ आखिरी गाना, लेकिन उससे पहले एक मेल हमारे पास आ गई है तो उसे हम शामिल कर लेते हैं। तो ये मेल हमें की है धीरज ने गल्ला मंडी से। ये लिखते हैं कि इंसान का दिमाग कहानियों पर ऐसे फिदा होता है कि अगर आप किसी को सिर्फ फैक्ट्स बताते हैं तो उस बस 10% ही उसे याद रखता है, और अगर वही बात किस्से में लपेट कर बताई जाए तो 70% याद रह जाती है। किस्से वो पुल हैं जो दादाजी के बचपन को आपके आज से जोड़ते हैं। कहानी सिर्फ सुनने की चीज नहीं, ये वो जादू है जो थके हुए मन को हल्का कर देता है। कहानी सुनकर डरा हुआ बच्चा भी बहादुर बन जाता है और अकेला इंसान खुद को भीड़ में बैठा महसूस करता है। आज आप स्क्रीन पर रील देख रहे हैं, कल कोई आपकी रील देखेगा, पर जो किस्सा आज आप किसी को सुनाओगे तो 20 साल के बाद भी किसी की नींद में गूंजेगा। इसलिए कहानी सुनो भी सुनाओ भी, क्योंकि यादें मिट जाती हैं पर किस्से जीते रहते हैं सालों साल। तो बहुत बहुत शुक्रिया धीरज आपका कि आपने हमें मेल किया, और बहुत ही अच्छी बातें आपने अपनी मेल में लिखी। आ रहा है आप सभी के लिए म्यूजिक प्रोग्राम का आज का ये आखिरी गाना।

इस गाने के साथ ही अब म्यूजिकल प्रोग्राम से आरजे मीनाक्षी को यहीं पर दीजिए इजाजत। 102.2 FM पर कनेक्ट हैं आप, सिटी की म्यूजिकल हार्ट बीट है ये।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: और लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम हेल्थ मैगजीन। आज सुनिए डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा से दीपशिखा गुप्ता की बातचीत। विषय है सामान्य स्वास्थ्य।
1: 102.2 FM रेनबो कानपुर पर लीजिए सुनिए कार्यक्रम हेल्थ मैगजीन।

0: आज का कार्यक्रम हेल्थ मैगजीन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ मैं दीपशिखा गुप्ता। श्रोताओं, आज स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा को, जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, कानपुर के प्रख्यात सीनियर सर्जन हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सेंटेनरी ईयर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इसके साथ ही एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज में।
1: धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल संबंधी वो कौन से मॉडिफिकेशन या चेंजेस हैं जिसका पालन सभी को एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए?
1: दीपशिखा जी, ये तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि आज हम देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट है, जो छोटा है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसको इतना ज़्यादा, पहले तो स्कूल में वर्क करता है, उसके बाद में उसको कई तरह की कोचिंग ज्वाइन करनी होती है, उसके पेरेंट्स उसको पढ़ाते हैं, सबको ही चाहते हैं कि अपना बच्चा नंबर वन हो। खेल कूद के प्रति किसी को, बहुत कम पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आउटडोर खेलना उतना ही ज़रूरी है जितनी की पढ़ाई। अगर उसने एक घंटा अच्छी तरह से दौड़ भाग करके नहीं खेला तो उसका निश्चित रूप से ना सिर्फ भविष्य बल्कि उसकी सेहत भी खराब होगी। तो ये मेरा अनुरोध है पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए प्रोत्साहित करें। एक दूसरी चीज़ भी जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, आजकल बच्चे अपने बिस्तर पे, कमरे पे मोबाइल और टीवी लेके बैठे रहते हैं और उसी पे काम करते हैं और उनकी माताएं या उनके घर परिवार के लोग उनको वहीं पे ला के खाना दे देते हैं, उनको वहीं पे ला के चिप्स पकड़ा देते हैं, उनको फास्ट फूड एरेटेड ड्रिंक्स है वो देते हैं, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। तो लोगों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, इसको घर में रखिए ही नहीं, ना रखिए और बिल्कुल सख्ती से इन चीज़ों के लिए मना करें, उनको आउटडोर खेलने के लिए भेजें। फिर घर के चाहे पुरुष हो या महिलाएँ, हर एक को चाहिए कि जितनी भी फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, चलना फिरना, सुबह मॉर्निंग व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, टहलने जाना, योगा प्राणायाम करना, किसी किस्म का शारीरिक श्रम करना बहुत आवश्यक है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हमारे पास टाइम ही नहीं, हम तो रात को 12-1 बजे सोते हैं, 9-10 बजे उठते हैं, नहा धो के सीधे भागते हैं। हाँ, हमारे पास, अगर साहब अपनी सेहत के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो माफ़ कीजिएगा, आप फिर जो भी आप कर रहे हैं उसका आनंद आप नहीं ले पाओगे। अल्टीमेटली क्या होगा कि आप

बीमार पड़ोगे, आपका मोटापा बढ़ेगा, आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज होगी, आपको डायबिटीज होगी, और आप सारे जो लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ को बहुत आनंद से अच्छी तरह से जीना है। आप पैसा कमाना जरूरी है, काम करना जरूरी है, लेकिन साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने शरीर को 1 घंटा रोज शरीर को देखभाल के लिए दीजिए। और अगर सुबह टाइम नहीं मिलता है तो शाम को जाइए, जिम में जाइए, नहीं तो सबसे सस्ता है आप किसी भी गाड़ी

0: गई है, रिमोट कल्चर आ गई है, हम बैठे बैठे सोचते हैं कि हम तो साहब एफोर्ड कर सकते हैं, तो मैंने घंटी बजाई और पानी आ गया। आप खुद उठें और पानी जाके पिए, इतने में ही कुछ स्टेप चल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में लाना आवश्यक है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट। दूसरा रहा खान पान
1: जी।
0: जो खान पान एक, एक जो पेट का रोग, तो मैं समझता हूँ कि एक बात हुई वानगी भरे, खतरनाक मर्ज इसकी वजह से हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रेफरेंस धीरे धीरे उस तरह के प्रोडक्ट्स या फूड पे हो रही है जो रिफाइंड है, जो टिंड है। रिफाइंड जैसे मैदे से बनी चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि, और नान, ये जो सब हम खाते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिपेशन करती हैं। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ मोटापा बढ़ता है, उसकी वजह से हमारे पपाइल्स, फिसर, फिस्चुला जैसे गंभीर रोग होने लगते हैं, और तो और कैंसर जैसे गंभीर रोग, जिन लोग कॉन्स्टिपेशन होता है, जो लोग फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं और मोटापा होता है उसके साथ होते हैं। डायबिटीज़, हम वर्ल्ड कैपिटल हो रहे हैं हिंदुस्तान, जो सबसे ज़्यादा हो रही है सिर्फ हमारे गलत खान पान के कारण। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, यंग एज में हार्ट अटैक होना, ये प्रॉब्लम हम इन्हीं खान पान की वजह से। तो मेरा सबसे अनुरोध है, जवान को तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं उसको जैसे भगवान ने बनाया कि उनको कभी कभी के लिए रखिए, पार्टी के लिए रखिए। पहले लोग बाहर रेस्टोरेंट जाते थे ओकेजन्स पे, बर्थडे, एनिवर्सरी, अभी महिलाओं में चलन है कि रोज घर से बाहर जाना है, शाम को खाना खाने कहीं नए रेस्टोरेंट में जाना है। खाना आप कहीं खा सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह का जो रेस्टोरेंट का स्पाइसी, ऑयली और रिफाइंड वाला फूड खाएंगे, वो आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। और मोटापा आज सबसे बड़ी भयंकर बीमारी हो रही है हिंदुस्तान में, मोटापा बड़ी तेज़ी से, हर तीन में से एक व्यक्ति मोटा है, और मोटापे के साथ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, घुटनों का मरज, कमर का दर्द, ये सब उसके साथ आपको ब्याज में मिलते हैं। साथ में महिलाओं में, अगर लड़कियों में आजकल प्रायः देखा गया 13-14-15 साल की लड़कियाँ वो ओवरवेट हो रही हैं, उसकी वजह से उनकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है, फिर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी फिट रहना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। और इसके लिए अपने खान पान पे, अपनी लाइफ स्टाइल पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाना पड़ेगा। आप घर का खाइए, हरी सब्जियाँ, सलाद, फल, बहुत सारे चोकर वाला आटा, ये नियमित रूप से मैं तो करता हूँ, और मैं शुरू से इन चीज़ों पर ध्यान देता हूँ। मेरी प्लेट शुरुआत होती है फुल प्लेट फल की। आप सीजनल फल खाइए, बहुत महंगे फल खाने की ज़रूरत नहीं है, पपीता मिले, अमरूद मिले, उनको खाइए, लेकिन फल खाइए, और दिन में सलाद भोजन के साथ ज़्यादा सा खीरा, ककड़ी, गाजर, ये सब का आप सेवन खूब सारा करिए। छिलके वाली दाल लीजिए, चोकर वाला आटा लीजिए, रोटी खाइए, और हाँ, पार्टी कभी है, कभी कभी समोसा भी खाएंगे तो चलेगा, लेकिन रोज़ उसी के सहारे चलेंगे तो नहीं चलेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, बातें अभी और भी होंगी, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि आप अपनी पसंद का कोई एक गीत हमारे श्रोताओं को सुनवा दें।
0: मैंने बहुत बचपन में एक फिल्म देखी थी हकीकत, और उसमें एक बहुत अच्छा गीत था जो मैं हमेशा गुनगुनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है।

0: हूँ।
1: डॉक्टर साहब, वैसे तो बातें हमारे कार्यक्रम में होती हैं स्वास्थ्य संबंधी, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी श्रोताओं ने आपसे जिंदा दिली का पाठ भी जरूर सीखा होगा। और कहा जाता है कि स्ट्रेस का भी आजकल विकारों में या रोगों में एक बहुत बड़ा योगदान होता है, तो ऐसे में स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देंगे?
2: ये मेरा एक ही सुझाव होगा कि जब भी आप उठते हैं, सुबह उठते हैं, और मैं हमेशा अपने मरीजों को भी बताता हूँ कि सुबह उठ के पहले तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। और क्योंकि नोबडी नोस, सबसे पहले आप अगर ये समझ लें कि किसी को भी नहीं पता, और कोई डॉक्टर कोई भी, जब किसी की मौत आती है, जब जिसको किसी को जाना है वो जाएगा किसी भी बहाने से, हमें डर के जीना नहीं चाहिए, हमें अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखना चाहिए और हमें हर दिन को टुकड़े टुकड़े में जीना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आज हम बैठे तो हम आज की फिक्र करें, कल जो हो गया वो हो गया, उसको आप बदल नहीं सकते और उसको याद करके आप दुखी या खुश नहीं हो सकते, और कल जो होने वाला है वो किसी को पता नहीं है। तो हमें अपने आज को कैसे सुंदर बनाएं, कैसे उसको एक काउंट करें, प्रोडक्टिव बनाएं कि आज के दिन में, और सुबह उठ करके ईश्वर को धन्यवाद देने के बाद अपना हमें दिन का कार्यक्रम, हम आज दिन में क्या अचीव करना चाहते हैं। डोंट ट्राई टू बी मल्टी टास्कर, आप बहुत सारे काम इकट्ठा मत ले लें, आप जो काम करें उसको मन लगा के करें और उसको पूरा करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आपने चार काम हाथ में ले लिए और चारों काम में कुछ भी नहीं हुआ और दिन खत्म हो गया। तो कोशिश अपनी होनी चाहिए कि जो भी हमारा कार्यक्रम है दिन का उसको अच्छी तरह से करें, और उसके बाद हम अपने आप को, अपना ख्याल रखना खुद सीखें। आपके पास परिवार होगा, आपके पास पैसा होगा, आपको कुछ भी होगा, लेकिन अगर जब आप अस्वस्थ होंगे, बीमार होंगे, तो झेलना आपको ही पड़ेगा। कोई दूसरा आपके भ्याप पे, आपके बच्चे, आपके वाइफ या आपके पेरेंट्स या आपके मित्र, कोई वो सिर्फ आपकी सहानुभूति रखेंगे, वो आपके पास बैठ जाएंगे, लेकिन शरीर के कष्ट, तो पहले अपने शरीर का ख्याल रखना सीखें। दूसरा, अपने शरीर को कहते पैम्पर करना, अपने को पैम्पर भी करना सीखे। आपको कुछ खाने का शौक है, कुछ पहनने का शौक है, कुछ अपने आप को कुछ भी करने का है, तो वो आज ही करना है। आज अगर कर लेंगे तो समझ लीजिए सब कुछ अच्छा, संतुष्ट जिसको कहते हैं ना, हैप्पी, हैप्पी माइंड, तो उसके साथ जब आप जाएंगे रात को सोएंगे तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, और निगेटिव ना रहें, सकारात्मक रहें, और किसी भी, कोई भी आपको क्रिटिसाइज करता है इसके मतलब आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, और किसी के उलझन में, निगेटिव चीज़ों में ना पड़े। अगर आप बचे रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो शरीर जो है इंसान का या ह्यूमन बॉडी, ये बहुत बड़ी एक आपके लिए गिफ्ट है ईश्वर की, परमात्मा।

0: आत्मा की, गॉड की, अल्लाह की, उस बॉडी को, उस शरीर को जितना अच्छा आप रख सकते हैं, और उसके द्वारा अपने काम के अलावा हमेशा ये सोचें, क्या मैं अपने परिवार के लिए, क्या मैं अपने समाज के लिए यूज़फुल हूँ। अगर आप यूज़फुल नहीं हैं तो भी आप फिर किसी भी काम के नहीं है। आपके पास बहुत पैसा होगा, आप बहुत ऐश्वर्य से रहते होंगे, लेकिन आपका सच्चा मित्र कोई नहीं हो। आप देना सीखें, आप समाज को गिव बैक टू द सोसाइटी, आई थिंक लाइफ इज़ वंडरफुल एंड यू विल हैव ए वेरी गुड लाइफ एंड हैप्पीनेस ऑल थ्रू। दैट इज़ माई मैसेज। थैंक यू
1: डॉक्टर साहब, बहुत सारी फायदेमंद और ज्ञानवर्धक बातें आज आपने हमसे साझा करी। हमारे बीच आने का, हमसे इतनी सारी बातें करने का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं आपका और आकाशवाणी का आभार प्रकट करता हूँ मुझे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेल्थ मैगजीन। 102.2 FM पर कनेक्ट है आप सिटी के म्यूजिकल हार्टबीट रेनबो कानपुर के संग। अगला प्रोग्राम होगा बैक टू बैक म्यूजिक।

0: इतनी रात में SMS, KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
1: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक आवश्यक सूचना सुनिए, कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
3: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 3:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
2: जोड़िए ये अरे एक लो एक मुफ्त, अरे एक लो, एक मुफ्त।

सर सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नवीन परिसर शहीद पद स्थित गोमती नगर विस्तार सेक्टर 7 में 1010 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल नवीन ओपीडी ब्लॉक और टीचिंग ब्लॉक के निर्माण संबंधी परियोजना को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 855 करोड़ 4 लाख 34 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज बांदा के चिल्ली गांव में आयोजित ग्राम तीर्थ स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के परिणाम हम भुगत रहे हैं, हमें प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वाराणसी में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने देश में पेट्रोल पीएनजी और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर लोगों को आश्वस्त किया कि उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक घरों तक पीएनजी सुविधा पहुंचाना है। प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे 15 मई से 5 जून 2026 तक विश्व पर्यावरण दिवस पखवाड़े का आयोजन कर रहा है।

इस श्रृंखला में आज विभिन्न पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों का आयोजन किया गया। लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए एक साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली का नेतृत्व महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे नरेश पाल सिंह ने किया। रैली में अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखीमपुर खीरी में हुए सड़क हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ने इस हादसे में अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। लखीमपुर में आज सुबह ट्रक और सवारी वाहन की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई थी। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग।
5: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग।
6: कोई न

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned 100.7.
3: Stay tuned 100.7 FM Rainbow.
4: धड़कन लखनऊ की।
5: बिल्कुल ऐसा ही फन होगा। टॉप 10 होंगे, गीत आपके सामने, लेकिन आज टॉप 10 के गीत कैसे होंगे, किस पर होंगे आधारित? कौन है ऐसा शख्स जिस पर आज के टॉप 10 गीत होंगे? सोचिए, गेस करिए। मैंने तो गाना पहला प्ले कर दिया। एक ये भी आपको बताऊंगा कि ये जो करेक्टर है आज का, इससे रिलेटेड एक सवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा और उसको मेल के माध्यम से आपको जवाब भी देना होगा। फिलहाल ये गीत एंजॉय कीजिए और उसके बाद फिर बातों का सिलसिला 5:05 साथ में कुछ सेकंड्स टॉप 10 लेकर मैं जमशेद एक बार फिर आपके साथ।

नजारा हर सुहे में त्यौहार, कैसा नजारा होगा? ये सारी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं आई? चलिए मैं बता देता हूँ, टॉप 10 में आज मैं बात करने वाला हूँ 3 फरवरी साल 1958 को जन्मी बेहतरीन अभिनेत्री रीमा राघव की, और उन्होंने आज ही के दिन यानी 18 मई 2017 को इस दुनिया को अलविदा कहा था। उन्हीं की बात करूंगा मैं आज टॉप 10 में, और टॉप 10 गीत होंगे उन्हीं के फिल्म से। पहला गाना अब तक पहुंच चुका है, फिलहाल हिंदी फिल्मों की शानदार अभिनेत्री, माँ के किरदार में देखा होगा, और मैं बात भी करूंगा, एक सवाल भी करूंगा, लेकिन बीच में आऊंगा, यानी 5:30 पर मेरा सवाल होगा और आखिर में आपको जवाब देना होगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर क्लियर हो जाएगा। चलिए 5:30 मैं सवाल पूछूंगा आपसे। फिलहाल बात कर रहा हूँ रीमा लागू की, और बेहतरीन अदाकारी थी, ज्यादातर आपने फिल्मों में उनको माँ की भूमिका में देखा होगा, शानदार भूमिकाएं उन्होंने निभाई। और फिल्म मैंने प्यार किया में अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक बहुत अच्छी माँ का किरदार निभाया था, वो माँ जो औलाद के साथ पूरी के पूरी साथ खड़ी हुई थी, और साथ में फिर वो वास्तव की कठोर माँ हो या फिर दिल्लगी की मालिकाना माँ, कोई भी किरदार हो, रीमा लागू ने बखूबी सभी किरदारों को निभाया है। यानी अगर मैं कहूं कि उनकी भूमिकाओं का कोई सानी नहीं था तो शायद गलत नहीं होगा, और उन्होंने नए जमाने की मां की भूमिकाओं को भी बखूबी निभाया था, फिर चाहे आशिकी हो या साजन, फिर या फिर कोई और भी गीत हो, सब में कुछ कुछ होता है। फिल्म देखी आपने, हम साथ साथ हैं, आपने देखा, एक किरदार उनका बार बार सवाल दिमाग में आ रहा। चलिए वो सवाल करूंगा बाद में, फिलहाल ये गीत आप तक पहुंचाऊं।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
4: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
7: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
8: हैंगओवर
7: Only 100.7 FM Rainbow।

रामाला को की बात करूंगा मैं। उनका जो असली नाम था वो गुरिंदर भातभाड़े था और वो जानी मानी मराठी अभिनेत्री मंदाकिनी भातभाड़े की बेटी थी और उनके अभिनय की काबिलियत तब सामने आई जब वे पुणे के हुजूर पागा HHCP में पढ़ाई कर रही थी। प्रोफेशनल तौर पर अभिनय करने के लिए उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी और फिर लगातार उन्होंने अभिनय का दामन थामा था। और अगर हम उनकी जिंदगी की बात करेंगे तो उनका विवाह मराठी अभिनेता विवेक लागू से हुआ था और शादी के बाद उन्होंने अपना नाम रीमा लागू रखा था। अच्छा, एक चीज और कॉमन सी चीज मैंने आपके सामने रखी है, अगर आपने नोट किया होगा तो ये तीन गाने मैंने प्ले किए उसमें कौन था इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो हमारा सवाल होगा 5:30 बजे मैं पूछूंगा वो इसी पर आधारित होगा।

कैस किया कुछ? चलिए अभी बात चलती रहेगी, अभी 5:30 बजने बहुत वक्त बाकी है ना। रावण से अपने अभिनय का सफर शुरू करने वाली रीमा लागू ने हिंदी फिल्मों की अगर हम बात करें तो कई सुपरहिट फिल्में जो थी उनमें उन्होंने काम किया और उनको हिंदी फिल्मों में माँ का किरदार, इससे पहले हमने बोला था ना, उसके लिए जाना जाता है। और बॉलीवुड में उनका सितारा फिल्म कयामत से कयामत तक में चमका था जब उन्होंने जूही चावला की माँ का किरदार निभाया था। रीमा अभिनय के फील्ड में लगातार आगे बढ़ती गईं और कहते ना कि कुछ भी हो जाए, अभिनय जब किसी को मिलता है विरासत में या कहा जाए उसका दिमाग उसमें जाता है तो फिर कामयाबी तो मिलती ही मिलती है। कई तरह की फिल्में, कई तरह के सीरियल, कई तरह के विज्ञापन फिल्में लगातार एक के बाद एक रीमा लागू को मिलती चली गई और देखते ही देखते बॉलीवुड की वो सबसे चहेती माँ बन गई थी। तो चलिए अगर हम पहली फिल्म की बात करेंगे तो इस गीत की बात जरूर करेंगे।

और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी आशिकी, बड़ी हिट, सुपर डुपर हिट थी, और इसमें भी रीमा लागू थी। मैंने कहा ना, माँ का किरदार बड़ी बखूबी, बड़ी खूबसूरती से निभाया उन्होंने। हालांकि अभी मैं बात करूंगा तो अगर हम बात करेंगे तो सलमान खान का जिक्र जरूर आएगा, क्योंकि सलमान खान के करियर में रीमा लागू का बहुत बड़ा योगदान था, शुरुआत से लेकर देख लीजिए जो भी फिल्में आपने देखी होंगी। और कुछ देर के बाद इसी से रिलेट करता हुआ सवाल भी होगा आपके लिए। फिलहाल ये गीत आपके लिए फिल्म आशिकी से।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड जनहित में जारी।
4: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
5: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
6: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
5: ओनली 100.7 FM रेनबो।

बिल्कुल जी लो, जैसे मस्त कलंदर। और मैंने वादा किया था कि 5:30 बजे के बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मैं बात कर रहा हूं टॉप 10 में आज रीमा लागू की, बेहतरीन अभिनेत्री, बेहतरीन अदाकारा, और कई सारी फिल्मों में उन्होंने माँ का किरदार निभाया। फिलहाल मैं आपको ऑप्शन दूंगा, 3 नाम लूंगा, सबसे ज्यादा किसकी फिल्म में उन्होंने माँ का किरदार निभाया है, सबसे ज्यादा किस एक्टर की माँ बनी है, किसके फिल्म में माँ का किरदार निभाया है। और ऑप्शन आपको दे रहा हूं, सलमान खान, आमिर खान या फिर शाहरुख खान। सलमान खान, आमिर खान या फिर शाहरुख खान, रीमा लागू ने इन तीनों में से किस एक्टर की मां का किरदार सबसे ज्यादा फिल्मों में निभाया है? सलमान खान, आमिर खान या फिर शाहरुख खान। ये आपको मैंने दिया कि भाई टॉप 10 की बात हो रही है, उसमें एक छोटा सा सवाल हो जाए। और आपके पास जो मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com, यह है आपकी मेल आईडी। तो बस जल्दी से हमें कीजिए मेल, बता दीजिए कौन है, कितनी सबसे ज्यादा फिल्में थी, किसकी सबसे ज्यादा फिल्में थी जिसमें रीमा लागू ने माँ का किरदार निभाया है। फिलहाल ये ट्रैक है फिल्म रंगीला का, और इसमें तो कोई और था, और इसमें बस ये सारी बातें चलेंगी।

चलिए मेरा कहना भी फिलहाल सुन लीजिए क्योंकि 5:40 हो चुके हैं, अब 6 गाने तो हो चुके हैं, 4 गाने अब तक आपको और पहुंचाने होंगे, है ना? मुझे अब तक पहुंचाने होंगे भाई, क्यों परेशान हो जाते हैं। फिलहाल रीमा लागू की बात हो रही है, उन्हीं की फिल्म से जुड़े हुए 10 गीत आप तक पहुंच रहे हैं। और हम आपको बताएं कि जितनी भी सलमान खान की फिल्में थी उनमें माँ की भूमिका रीमा लागू ने निभाई और सारी फिल्में सुपरहिट रही। और हालत तो ये हो गई थी कि लोग उन्हें सलमान खान की माँ कहकर पुकारने लगे थे, क्योंकि उनके चेहरे पर ममता और स्नेह ने उन्हें वास्तविक जीवन में भी सलमान खान की माँ बना दिया था। और उस पर संयोग ये भी रहा कि जिस भी फिल्म में रीमा लागू रही सलमान खान के साथ, उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फिर हम मैंने प्यार किया की बात करें, या फिर पत्थर के फूल की बात करें, या फिर साजन की बात करें, या हम साथ साथ हैं की बात करें, या फिर जुड़वा की बात करें, लेकिन फिलहाल ये गीत जो है ये है यस बॉस, इसमें थे शाहरुख खान, और ये गीत आपके लिए आपके रेडियो सेट पर। और इस फिल्म में भी रीमा लागू थी।

0: के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: Stay tuned 100.7 FM Rainbow,
2: धड़कन लखनऊ की।
3: और सलमान खान की हिट फिल्मों की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये है पत्थर के फूल का गीत। इसमें भी रीमा लागू ने माँ का किरदार निभाया था। 5:46 साथ में कुछ सेकंड्स जमशेद आपके साथ टॉप 10 में।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow।
3: धड़कन लखनऊ की।

चलिए सवाल मैंने पूछा था कि रीमा लागू ने सबसे ज्यादा किसकी फिल्मों में मां की भूमिका निभाई है। तीन ऑप्शन आपको दिए थे, मैंने कहा था सलमान खान, शाहरुख खान या फिर आमिर खान। ढेर सारे जवाब आपके आ चुके हैं। राधे श्याम जी ने हमें किया है मैसेज और प्रोग्राम आपको अच्छा लगा और आपने नाम लिया है सलमान खान की माँ के रूप में सबसे ज्यादा फिल्मों में काम किया है। देखिए कौन लोग हैं जिन्होंने, अच्छा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन शाहरुख खान, ये रवि रस्तोगी जी का कहना है और टिंकू सिंह हैं, उन्होंने हमें लखनऊ से कपूरथला अलीगंज से मेल किया है, और सबसे ज़्यादा सलमान खान, इन्होंने भी लिखा है। अब देखना है किसका ऑप्शन सही है। ब्रजेश सिंह डीपू इटावा कैसरगंज बहराइच से, नमस्कार गुड इवनिंग, और आपने भी सलमान खान का ही नाम लिया है। और अजमत अंसारी ने सलमान खान लिखा है, नाम आपने लिखा लेकिन कहाँ से मेल किया ये आपने नहीं लिखा है। ओम प्रकाश सैनी बाजपुर उत्तराखंड से, नमस्ते सर, आपने भी सलमान खान का नाम लिया है। और मैंने कहा ना कि तीन ऑप्शन में से देखिए आमिर खान का नाम किसी ने नहीं लिया, शाहरुख खान का नाम एक ने लिया, बाकी सब ने सलमान खान का नाम लिया। तो सही ऑप्शन है सलमान खान, सबसे ज्यादा फिल्मों में उन्होंने माँ की भूमिका निभाई सलमान खान की फिल्मों में।

और अगर चलते चलते मैं बात करूं तो रीमा लागू को फिल्म मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन के लिए साल 1990 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स का अवार्ड मिला था और अभिनेता राहुल राय की आशिकी और संजय दत्त की वास्तव के लिए भी उन्हें इसी सम्मान से नवाजा गया था। फिलहाल चलते चलते एक ट्रैक यानी आखिरी गाना, 10वां गाना आप तक पहुंचा रहा हूं और जिस पर ये गाना फिल्माया गया है, एक्ट्रेस की बात कर रहा हूं, उसकी माँ का भी किरदार निभाया था इस फिल्म में रीमा लागू ने। मैं चलूंगा यहां से बाय-बाय कहता हुआ, अगला प्रोग्राम शामे अवध उसको लेकर फिर मैं मौजूद रहूंगा आपके पास। छोटा सा न्यूज ब्रेक और आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है, जिसके परिणाम स्वरूप आज प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। संस्कृति विभाग द्वारा द्वितीय वर्ष 2026-27 में आजादी के बाद विभिन्न युद्धों में शहीद सैनिकों की स्मृति में स्मारक निर्माण की कार्य योजना प्रस्तावित की गई है। इसमें से कुछ जनपदों में स्मारकों के निर्माण के लिए धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी आगरा के प्रस्ताव पर वर्ष 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए बहादुर सिंह की स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा जनपद मथुरा में कारगिल युद्ध 1999 में शहीद श्याम सुंदर बेनीवाल की स्मृति में स्मारक का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। शाहजहांपुर में संभावित बाढ़ वर्ष 2026 से निपटने की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में स्टीयरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी विभागीय अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में बाढ़ संभावित क्षेत्रों, तटबंधों और सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि बीते 2 वर्षों में जिन सड़कों पर बाढ़ का पानी भरने की समस्या रही है, उन्हें चिन्हित कर वहां बैरिकेटिंग और संकेतक लगाए जाएं। वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गर्मी के मौसम और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिसके चलते दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है। मंदिर परिसर एवं दर्शन मार्ग में विभिन्न स्थानों पर मटकों में शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही दर्शन पथ पर जूट मैट बिछाई गई है, जिससे श्रद्धालुओं को नंगे पैर चलने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग।
5: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग।
6: तो

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned 100.7
3: Stay tuned 100.7 FM Rainbow
4: धड़कन लखनऊ की।

और एक ताजा खबर ये भी है कि बहुत शिद्दत की गर्मी है बाहर। मैं तो भाई यहां बैठा हूं, यहां तो गर्मी नहीं लग रही, लेकिन बाहर का मौसम कैसा है, मिजाज कैसा है मौसम का, ये तो आपको पता चला है। लेकिन फिर भी आप सभी को बधाई, सैल्यूट है साहब, जो इस समय इस गर्मी को झेलते हुए, शिद्दत की गर्मी को झेलते हुए अपने कामों को सरंजाम दे रहे हैं, सैल्यूट है आपको। और बधाई से दे रहा हूं, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने आज का दिन भी गुजारा। शाम हो गई है, 6:05 हो गए, तो इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयां। और आज का दिन भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से विविधताओं से भरा रहा होगा। तो क्या रहा आज के दिन में खास, ढेर सारी बातें होंगी मेरे यानी जमशेद के साथ। तो बस प्रोग्राम की करते हैं शुरुआत, उसका नाम है शाम ए अवध, यानी अवध की खूबसूरत सी शाम। और चैनल है 100.7 FM रेनबो, जिसे प्यार से आप कहते हैं, भाई साहब आपसे कह रहा हूं, धड़कन लखनऊ की। और इस गीत को करिए एंजॉय। पर्दे पर हैं संजय दत्त साहब, श्रीदेवी हैं, और इस गीत में और भी क्या क्या है। कलेक्ट कर लीजिएगा, श्रीदेवी नहीं है, उर्मिला दिख रही मुझे, इससे पहले श्रीदेवी थी।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: दिल दस्तरखान बिछाया दावते इश्क है।
3: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
4: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
3: ओनली 100.7 FM रेनबो।
5: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
6: और मैंने कहा ना कि आज का दिन भी अपने अंदर बहुत सारी ढेर सारी खासियतों को समेटे हुए, क्यों सही कह रहा ना मैं? और मेरी खास बात यह है कि आज पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस है, जो हर साल 18 मई को मनाया जाता है। और भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण राजस्थान में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई साल 1974 को किया था। और इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस मनाया जाता है। इसके बाद साल 1998 में भारत ने 11 मई और 13 मई को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था। नहीं, किसी से कम है क्या? और अचानक किए गए इन परमाणु परीक्षणों से अमेरिका, पाकिस्तान सहित सभी देश अचंभित रह रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई अचानक से ये बात हुई थी। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगुवाई में ये मिशन कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया कि पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। और इससे पहले साल 1974 में जब भारत ने अपना पहला परीक्षण किया था, तब भी भारत की ताकत का लोहा पूरी दुनिया में इसको देखा गया था, माना गया था। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का स्थान और उसकी साख एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभरी थी। तो बस इसी में तो हम कहेंगे तीन

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow।
3: धड़कन लखनऊ की।

चल छैया छैया ये मुझे दोपहर में कहना चाहिए था आपसे। आप तो ऑलरेडी छैया छैया हो गई, सूरज ढल चुका होगा, 6:23 हो चुके हैं, कुछ सेकंड्स भी हैं साथ में। जमशेद हूँ आपके साथ, शामियावाद प्रोग्राम है, लखनऊ की खूबसूरत सी शाम है। और इस समय अगर दिन की बात करेंगे, दिन में आदमी छैया की तलाश करता है, ऐसी जगह वो गाड़ी भी चला रहा होता है, सोचता है छैया छैया गाड़ी चलाएं जिससे धूप कम लगे और गर्मी का एहसास उसको कम हो। लेकिन गर्मी तो गर्मी है। हाँ, ये जरूर हो सकता है जब छैया छैया चलेंगे आप तो हल्की सी जो हवा चलती है वो आपको बहुत अच्छी लगती है ना। तो चलिए फिलहाल आगे की बात करता हूं मैं। और अगर आगे की बात करेंगे तो आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है, यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे। हर साल 18 मई को मनाया जाता है, क्योंकि संग्रहालय एक अनमोल चीजें होती हैं हमारे साथ। कोई भी संग्रहित चीज कर लेते हैं। पुराने नोट रखने का शौक है आपको है भैया? बिल्कुल आपको होगा पुराने नोट रखने का या पुरानी चीजों को रखने का। इसी तरह से अनमोल यादों को संजो कर रखा जाता है संग्रहालय में। और ये दिन पूरी दुनिया में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल मनाया जाता है। लोग चले जाते हैं हमारे इस पास से, लेकिन उनकी यादें सुंदर तरीके से संजो कर रखे जाते हैं, जैसे हम भी उनके बारे में जान सकें। ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे लिए रख दी गई हैं, हम संग्रहालय में जाकर देखते हैं। अच्छा, ऐसा भी था, ये भी हुआ करता था और उनको नुकसान ना पहुंचे इसलिए कई तरह के संग्रहालय बना दिए गए जिसको ये चीजें याद रखने में हमारी मदद करते हैं। कुछ बात करूं, वो स्टोव याद है किसी को? वो एंटीना याद है जो ऊपर जाके हिलाया जाता था? वो पुराना ट्रिंग ट्रिंग वाला टेलीफोन याद है? तो कई सारी चीजें हैं, बहुत से लोगों ने अपने घरों में संग्रहालय बना रखे होंगे, सजा कर रखे होंगे, पुराने कैमरा होंगे किसी के पास, कैसा होता था रील वाला कैमरा। अब तो आपके पास एक हाथ में मोबाइल है, छट से क्लिक कर लिया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आप फोटो क्लिक करते थे, उसके बाद उस रील को धुलवाते थे, कुछ खराब होते थे, कुछ अच्छे होते थे, और जो अच्छे होते थे वो एक एल्बम में सजा कर रखे जाते थे। आज भी आपके पास होंगे। इसीलिए आज के दिन मनाया जा रहा है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। वो चीजें जो कहीं ना कहीं हमारे पास से जा चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, लेकिन संग्रहालय में संरक्षित हैं, हम उन्हें देख सकते हैं और ये महसूस कर सकते हैं कि पुराना वक्त कैसा था, कैसी चीजें थीं, कैसे बनाई गई थीं। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं।

0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
2: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow।
5: धड़कन लखनऊ की।

बिल्कुल दिल का चैन ले जाएंगे, लेकिन हाँ ताकने की अगर बात है तो इधर उधर जब गाड़ी चलाते हैं तो ताकने की जरूरत नहीं होती। गाड़ी चलाइए, सामने देखकर गाड़ी चलाइए, वरना बड़ी दिक्कत हो सकती है। ये आपके लिए सावधानी के लिए बात कह रहा हूँ। फिलहाल अभी विकास जी से बात हुई, थोड़ा सा व्यस्त है मीटिंग में, तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे एरिया हैं, अगर हम बंदरिया बाग की तरफ जा रहे हैं वहां पर थोड़ा सा ट्रैफिक मिल सकता है, और कमता चौराहे के आसपास थोड़ा सा शाम का वक्त है, आज सोमवार है, और ट्रैफिक इसलिए भी और बढ़ जाता है क्योंकि लोग ऑफिस से घर की तरफ प्रस्थान कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो कमता के आसपास भी थोड़ा सा ट्रैफिक आपको मिल सकता है। लेकिन मैंने कहा कि ताकने की बात नहीं है, सामने से चलिए, देख कर चलिए, और अगर आपको लगता है कि आप ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने में अपना योगदान दे सकते हैं तो अपने साथ चलिए, लेन में चलिए, और

उधर जिगजैग करके ड्रैग करके गाड़ी मत चलाइए, क्योंकि अक्सर जाम वहीं पर लगता है। और हाँ भाई साहब, जो एफएम में सुन रहे हैं टैक्सी वाले भाई साहब, आपसे कह रहा हूँ, और ये देखिए आप भी बजा रहे ना रेनबो, ये बैटरी रिक्शा वाले भाई, आप लोगों से बहुत विनम्र निवेदन है, विनम्रता के साथ थोड़ा सा साइड दे दीजिए लोगों को, लोग निकल जाएं, और अगर आसपास एम्बुलेंस निकले तो बिल्कुल आगे मत लगाइए, साइड में किनारे लगा लीजिए। और ट्रैफिक को मैंने कहा ना व्यवस्थित करने में थोड़ा सा जो हमारा योगदान है, यानी लखनऊ की जो तहजीब है, पहले आप, पहले आप, पहले मैं नहीं, निकल जाइए साहब, थोड़ा सा वक्त लगेगा, 2-4 मिनट लगेंगे, दो चार, हम ऐसा नहीं 2-4 घंटे लग जाएंगे, थोड़ा सा देर में ही सही, लेकिन लोग सुकून से शांति से ट्रैफिक से चलेंगे, जाम भी नहीं लगेगा, है ना, दिक्कतें भी नहीं होंगे, है ना। ये गाना भी खूबसूरत सा है, आप तक पहुंचाने की कोशिश है, और ये गाना है ये, और ये गाना कहता है कुछ यूं, बजकर 38 मिनट 7 में कुछ सेकंड्स, जमशेद हूं आपके साथ शाम अवध में। अभी और ढेर सारी बातें हैं, सोने चांदी का भाव भी बताना है, सेंसेक्स भी बताना है, आज मंडे हो गया है, ऊपर है या नीचे है, उतार चढ़ाव के साथ साथ ये सब बताऊंगा मैं, बने रहिए हमारे साथ।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
5: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
6: धड़कन लखनऊ की।
7: बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से। संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के। पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है अजब सा रिश्क है।
8: कैसा ये इश्क है अजब सा रिस्क है। फिलहाल रिस्क इसमें भी है कि क्या है सोने का भाव, क्या है चांदी का भाव, ये भी आप तक पहुंचा दूं। तो अगर हम सोने की बात करेंगे, 24 कैरेट गोल्ड की बात करूंगा, खामोशी सुन लीजिए। हालांकि कोई खास फर्क नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आज का रेट है 1,62,005 रुपये। और वहीं अगर हम चांदी की बात करेंगे तो 2,90,000 प्रति किलोग्राम है, और सोना जो है वो प्रति 10 ग्राम है 24 कैरेट, यानी 1,62,005 रुपए, और चांदी है प्रति किलोग्राम 2,90,000।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: और हौले हौले वक्त आ गया है कि मैं आपको बता दूं आज का सेंसेक्स यानी बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तो 75,315.04 और निफ्टी की बात करेंगे तो 23,649.05 अंक रहा आज का।

ढेर सारी बातें होले होले होले होले। अगर जल्दबाजी वैसे भी जिंदगी में बड़ी कहते ना दिक्कत देती है, तो कोई भी काम करें बस होले होले आराम से काम करें तो काम बेहतर भी होगा और अच्छा भी होगा। फिलहाल 6:54 हो चुके हैं, 7 सेकंड्स। चलिए चलते चलते बात कर लेते हैं वेंकट रामन राधाकृष्णन की, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 18 मई 1929 को हुआ था। एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के सदस्य। 1988 से 1994 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के उपाध्यक्ष है और नीदरलैंड्स फाउंडेशन फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी की विदेशी सलाहकार समिति, ऑस्ट्रेलिया टेलीस्कोप नेशनल फैसिलिटी CSIRO, ऑस्ट्रेलिया की संचालन समिति के वो रहे ग्रीन बैंक रेडियो टेलीस्कोप, नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, यानी कई सारी उपाधियां कई सारे पद इनके पास रहे। और लगातार इन्होंने जो भारत के लिए योगदान दिया वो भी अतुलनीय है। चलिए फिलहाल मैं यानी जमशेद आपसे लूंगा इजाजत प्रोग्राम शामे वक्त से। अगला प्रोग्राम आपका है जहां पर होंगे आपकी कॉल, लाइव बात करूंगा मैं। तो बस आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ। और नंबर कुछ देर के बाद बताऊंगा, बता दूं नहीं अभी बताऊंगा न्यूज के बाद। फिलहाल आपसे ये कहूंगा कि आप बने रहिए हमारे साथ, और चलते चलते ये गीत आपके लिए छोड़े जा रहा हूं।

नमस्कार, अब सुनिए यूपी की टॉप 10 खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 3932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वाराणसी में कहा कि देश में पेट्रोल और गैस में कोई कमी नहीं है और केंद्र सरकार वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हर संभव कदम उठा रही है। प्रदेश में ग्रामीण भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश में सर्वाधिक गर्म जनपद के तौर पर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लखीमपुर खीरी में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी वाहन का आमने सामने से टक्कर हो गई। पीलीभीत जिले में बाल विकास विभाग में चयनित 105 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर रामपुर रजा पुस्तकालय एवं संग्रहालय द्वारा संरक्षित दुर्लभ एवं ऐतिहासिक कलाकृतियों की विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बलरामपुर जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने अपील की है कि वे 14 वर्ष आयु वर्ग की बच्चियों को HPV टीकाकरण अवश्य लगाएं। यह टीकाकरण सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है। देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। कल देश में कहीं से भी चांद दिखने की पुष्टि नहीं हुई है। इसके बाद चांद कमेटियों ने कल 19 मई को इस्लामी माह जिलहिज्जा के पहले तिथि होने की घोषणा की। गोरखपुर के रामगढ़ताल में आज 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने किया। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा।

0: only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: ये है 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की.
3: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग.
4: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned 100.7
3: Stay tuned 100.7 FM Rainbow
4: धड़कन लखनऊ की।
5: चलिए करता हूं शुरुआत आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा बस हेलो एफएम बस जल्दी से हमें मिलाइए। फोन नंबर्स 22 38 852 या 22 38 845 ये है आपके नंबर। मैं हूं जमशेद आपके साथ और जब तक आपके फोन आते हैं इस गीत को एंजॉय करते हैं। शुरुआत करें

बस एक छांव। बस पुकारता हुआ मैं भी चला हूँ और पुकारते पुकारते मैंने किसी को दी है आवाज और हमारे साथ कोई फोन लाइन पर जुड़ चुका है। जानते हैं कौन है और कहां से पहली

0: कॉल लगी है, नहीं लकी कॉल है हमारे लिए, बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है। हेलो।
1: हेलो
0: जी, गुड इवनिंग।
1: जी गुड इवनिंग सर,
0: नाम बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: जी सबसे पहले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार।
0: जी नमस्कार,
1: प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम जी, अब अपना नाम बता दीजिए, नाम सुनने को बेकरार है लोग आपका।
1: मेरा नाम है मोहम्मद फैज
0: जी,
1: रामपुर कटरा फुलवारी बाजार बाराबंकी से बोल रहे हैं सर।
0: क्या बात है, क्या बात है, आपने ऐसे अल्फाज कहे हैं, इतने स्टाइल में आपने बोला है कि मेरा दिल बाग बाग हो गया है, कसम से बता रहा हूँ।
1: जी जी जी सर
0: जी, और कुछ अपने बारे में बताइए फैज साहब।
1: हेलो सर।
0: जी बताएं, सुन रहा हूँ।
1: क्या कहा सर जी आपने?
0: कुछ अपने बारे में बताइए, आज पहली बार बात हो रही शायद हमारी आपकी।
1: जी जी जी सर, आप जी मतलब जब से मैंने कम से कम 7 साल हो गए आप सुनते हैं रेगुलर, पहली बार आज बात हुई है सर।
0: क्या बात है, मेरी खुशकिस्मती है।
1: बाकी तो सभी आरजीओ से बात हो चुकी है लेकिन खास करके आपसे नहीं थी।
0: हाँ, ये
1: हो भी गई तो मेरी तमन्ना पूरी हो गई सर।
0: क्या बात है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फैज साहब से बात कर रहा हूँ।
1: जी सर।
0: फैज साहब गाना कौन सा सुनेंगे?
1: जी सर गाना सुनना चाहेंगे, जिंदगी भर का सनम सा तभी बाकी मुलाकात अभी बाकी है ना।
0: मुलाकात बाकी है, मुलाकात फिर भी होगी, किसी दिन होगी जरूर, मुलाकात अभी बाकी है। फिलहाल मैं ये चाहूंगा कि जो जिंदगी भर का साथ अभी बाकी है, ये है फिल्म आजमाइश का गीत, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज, फैज साहब की पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर। ये रहा फैज भाई, सुनिए।

0: और हमारे साथ अपनी फरमाइश के साथ कोई और जुड़ चुका है। हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग, कौन बोल रहा है?
1: जी गुलफ्ता सिद्दीकी बोल रहे हैं, संडिला। गुलफ्ता
0: जी, संडिला से आपने हमें किया है फोन।
1: जी सर।
0: जी कुछ सर, अपने बारे में बताइए। मेरी तो पहली बार बात हो रही है आपसे।
1: जी सर, आपसे तो पहली बार बात हो रही है, लेकिन मेल से बात होती रहती है। आप जब रेनबो कैफे पे आते हैं?
0: रेनबो कैफे नहीं, ये पॉप टाइम है। नाम थोड़ा सा बदल गया है
1: हम लोगों को, रेनबो कैफे।
0: जी जी जी, और बताइए कुछ अपने बारे में।
1: जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? हम घर पर रहते हैं, हाउस वाइफ।
0: आप संडिला में हैं? संडिला में क्या गर्मी उतनी ही पड़ रही है जो लखनऊ में पड़ रही है?
1: तो हो ही नहीं सकता।
0: संडिला में गर्मी नहीं है, कोई बता रहा था कि संडिला में शायद गर्मी नहीं होती।
1: ऐसा कैसे हो सकता है कि गर्मी नहीं है? शिमला थोड़ो ना, नैनीताल नहीं है।
0: अच्छा, मुझे लगा कि शायद संडिला वाले जो हैं इस बात से पूरी तरह से फ्री हैं कि यहाँ गर्मी नहीं हो रही, आराम से सुकून से ठंडी ठंडी हवा।
1: गर्मी झेल रहे
0: हैं। आप ही नहीं, समय पूरे हिंदुस्तान में लोग जो हैं, बांदा में आज सबसे ज्यादा, जी गुलफ्ता जी, बांदा में सबसे ज्यादा टेम्परेचर था आज, मालूम है आपको?
1: जी जी सर, आज बहुत गर्मी थी।
0: और उसका असर आपके संडिला में भी पहुंच गया है न?
1: जी सर, संडिला दुनिया में है।
0: जी जी, गाना कौन सा सुनेंगे आप?
1: टार्जन द वंडर स्टार का।
0: जी जी जी
1: जी सर, वही सुना दीजिए, कुछ नाम ले लें।

0: नाम ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए
1: साहिबा अंसारी, सादिया अंसारी, समा परवीन, निशा अंसारी, ममता गौतम है, महक
0: अंसारी,
1: जितने लोग सुन रहे हैं सबको।
0: चलिए आपकी पसंद का गीत ये रहा आपके रेडियो सेट पर, एंजॉय कीजिए।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
4: बस खुशबू नहीं स्वाद भी है, शुद्धता का एहसास भी है।
5: एम के बंधानी हींग, हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
6: प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम और हमारे साथ कोई फोन लाइन पर जुड़ चुका है। हेलो,
7: मुसाफिर हूँ जारो, घर है
6: ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है,
7: चलते जाना।
6: चलिए अपना तारुफ कराइए जल्दी से अपने सुनने वालों को।
7: जी
6: जी, नाम बताइए अपना, अपना तारुफ कराइए। कौन सा?
7: सत्यम कुमार है, ग्राम पोस्ट परसेंडी कैसरगंज बहराइच से बोल रहा हूँ सर।
6: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो एफएम में, मैं हूँ जमशेद आपके साथ। जी
7: अगर आप कहें तो मैं नंबर सर एक बार दोहरा दूं, क्योंकि नंबर शायद जो आपने बताया है वो नहीं चल रहा।
6: हाँ हाँ, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए।
7: नंबर ये चल रहा है 0522 29 3 शायद 22।
6: चलिए मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा। चलिए पहले गाना बता दीजिए, अपना गाना बता दीजिए, वरना न्यूज का टाइम हो जाएगा, आपकी बात कट जाएगी। गाना बता दीजिए
7: सर, गाना मुझे सुनना है
6: जी।
7: बड़ी

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये आयोग पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जाँच करेगा।
1: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। आप सब लोग जानते हैं, बड़ा प्रदेश है, 59,000 से भी ज्यादा पंचायतें हैं, हमारे सैकड़ों विकास खंड हैं, 75 जनपद हैं। तो पंचायत चुनाव कराने से पहले हमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना और भी चीजों को देखना है। उसके लिए अब आयोग अध्ययन करेगा और आयोग जैसा रिपोर्ट देगा उसके आधार पर पंचायत के चुनाव की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
0: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इनमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। श्री खन्ना ने कहा कि केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से बसंत कुंज तक के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी।
2: परिषद की दिनांक 5/3/24 को संपन्न बैठक में लखनऊ मेट्रो परियोजना फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर DPR पर माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन पहले प्रदान किया गया। ये खास तौर से इसी सरकार संबंध में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से बसंत कुंज परियोजना की अनुमोदित लागत 5,801.05 करोड़ रुपए पर सहमति प्रदान की गई। इसमें 50-50% हिस्सा है भारत सरकार, 50% राज्य सरकार।
0: बैठक में मंत्रिमंडल ने पशु चिकित्सा के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते

0: को 4,000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रूपये प्रतिमाह किये जाने और मिर्जापुर में 2,799 करोड़ रूपये की लागत से बिजली ग्रिड उन्नयन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। परिणामस्वरूप आज प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
1: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है। अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
0: प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल शाम मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों में भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सौंपा गया है। वहीं मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को राजनीतिक पेंशन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग दिया है, जबकि सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल विभाग सौंपा गया है। 4 नवनियुक्त राज्य मंत्रियों में कृष्णा पासवान को पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कैलाश राजपूत को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वाराणसी में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने देश में पेट्रोल, पीएनजी और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर लोगों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक घरों तक पीएनजी सुविधा पहुंचाना है।
2: भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना एलपीजी की कोई कमी हमने होने दी। एक हमने जो बहुत कोशिश की है, काशी में हम ये चाह रहे हैं जो एलपीजी कनेक्शन थे उसको ज्यादा तेजी से पाइप गैस में कन्वर्ट किया जाए। उससे सुविधा लाभार्थियों को भी होगी। एक तो पाइप गैस ज्यादा एफिशिएंट है, उस सस्ती भी है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण आयात में बाधा के बावजूद देश में रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। आज नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
0: डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने अपने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुसार डीजल, पेट्रोल के न्यूनतम प्रयोग के साथ साथ सोने की खरीद से बचें। देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। कल देश में कहीं से भी चांद दिखने की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद लखनऊ स्थित मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद और शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने बताया कि बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। लखीमपुर खीरी में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी वाहन की आमने सामने से टक्कर हो गई। ट्रक चालक हादसे के बाद घटनास्थल से फरार हो गया। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। साथ ही दोनों ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश में सर्वाधिक गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। श्री योगी ने सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था और बिजली आपूर्ति बाधित न होने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि अत्यधिक गर्मी और लू के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकले। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का किया ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग।
5: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग।

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned.
3: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
4: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
3: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov

0: aasthanahi.in।
1: चार धाम यात्रा, सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow।
3: धड़कन लखनऊ की।
4: और धड़कन लखनऊ की मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त जमशेद। 7:33 साथ में कुछ सेकंड्स प्रोग्राम आपका अपना हेलो एफएम, और उसमें हमारे साथ कोई जुड़ चुका है। हेलो,
5: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं?
5: साहिबान सारी मेहरागंज जिला लखीमपुर खीरी से बोल रही हूं।
4: कैसी हैं आप? ठीक हैं
5: जी सर, हम बहुत अच्छा, अपना बताइए। आपके?
4: नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ, और आप लोगों से बात होती तो और अच्छा हो जाता हूँ। यही बात है, क्योंकि आप लोग हमारे लिए खास हैं, हमारे लिसनर हमारे लिए हैं, तो हम तो खुश हो ही जाएंगे। और बताइए कुछ अपने बारे में बता दीजिए।
5: आपसे बात हो गई हमारी।
4: जी जी जी, बहुत शुक्रिया, मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपसे बात हो गई। और बताइए कुछ अपने बारे में। जी कुछ अपने बारे में बताइए।
5: खाना
4: बना लिया आपने?
5: जी हम खाना बनाते हैं। आपका जो फोन ट्राई करे थे।
4: और फोन ट्राई करते करते आपका फोन लग गया?
5: जी लग गया, हमने नहीं सोचा कि आपसे बात हो गया हमारी।
4: नहीं नहीं, कहते ना शिद्दत है अगर किसी चीज में, तो वो चीज हासिल बहुत होती है, बहुत जरूर होती है।
5: सर आइए, हम आपको कद्दू के फूल की सब्जी खिलाए।
4: कद्दू के फूल की सब्जी बन जाती है? कद्दू की सब्जी तो मैंने खाई है।
5: और कद्दू के फूल की नहीं खाई है?
4: नहीं, मैंने भी नहीं खाई। कैसे बनती है ये किसी दिन पूछूंगा आपसे जरूर, कि उसमें क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं, कैसे बनती है कद्दू के फूल की सब्जी। बिल्कुल। चलिए गाना आपको खूबसूरत सा सुना दूं। दो गाने हमारे सामने हैं, एक गाना है गली में आज चांद निकला, और एक है मेरा चांद मुझे आया है नजर। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
5: जी सर, दूसरा वाला कौन सा बताया?
4: मेरा चांद मुझे आया है नजर, मिस्टर आशिक का, कुमार सानू।
5: जी सर यही वाला बजा दीजिए।
4: चलिए, आपने कहा और मैंने आपको ये गाना सुनाया।

और इस तरह आप भी अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है, आपको फोन नंबर्स मिलाना है। फोन नंबर्स हमारे हैं 2982-378-52 या फिर 2238-845। और हाँ, इससे पहले लखनऊ का कोड यानी 0522 लगाना ना भूलिएगा। मैं हूँ जमशेद, आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर आपके अपने प्रोग्राम हेलो FM के साथ।

0: हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
1: मैं संतोष कुमार मौर्य, ग्राम निकला कोठावा हरदोई।
0: जी जी, बहुत स्वागत है आपका हेलो एफएम में।
1: जी सर,
0: गर्मी पड़ रही है कोठावा में?
1: जी, गर्मी तो आज खूब पड़ रही थी दोपहर को।
0: तो हमने सुना है कुछ लोगों ने जो है, गर्मी पड़ रही थी तो गर्मी में किसी ने रोटियां बना ली, किसी ने खाना वाना बना लिया। इतनी गर्मी है क्या?
1: जी सर, मेरे घर में आज खीर बन रही है।
0: खीर? वो गर्मी में बनाई है आपने?
1: जी सर, गर्मी में ठीक होती है खीर।
0: नहीं मतलब धूप से खीर बनाई है या मतलब कैसे बनाई है? लोग कह रहे थे कि गर्मी जो इतनी है, धूप इतनी है कि उससे खाना बन जाता है।
1: जी सर, मैं कोहला में, लकड़ी से बनी है।
0: अच्छा, लकड़ी से बनी है। कुछ अपने बारे में बताइए।
1: जी सर,
0: जी कुछ अपने बारे में बताइए। और गाना आपने सुनना चाहे, कभी खुशी कभी गम का टाइटल ट्रैक किसको सुनाना चाहते हैं?
1: जी सर, मैं अपनी बीबी मीना देवी मौर्या को।
0: जी जी, आपने कहा और उनको हमने ये गाना पहुंचाया। और अगर आप भी सुनना चाहते हैं गीत तो बस हमें मिलाइए फोन। मैं हूं जमशेद आपके साथ।

0: 7:43 साथ में कुछ सेकंड्स फोन लाइन पर है हमारे साथ कोई। हेलो
1: जी सर, अस्सलाम वालेकुम।
0: और इस्लाम, कौन सा बोल रहे हैं?
1: सुल्तान से बात कर रहा हूँ
0: जी, कैसे हैं आप?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: बढ़िया, पता बता दीजिए अपना।
1: मैं कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से बात कर रहा हूँ।
0: जी जी, बस यही तो बात है। और ये बताइए, कुतुब खाना सब्जी मंडी ये जिला कौन सा लग रहा है?
1: बरेली।
0: बरेली, बरेली की क्या चीज मशहूर है? हमने बरेली का नाम बड़े गानों में सुना है, क्या खास है बरेली में?
1: बरेली का झुमका है सबसे ज्यादा।
0: और
1: उसके बाद आता है सुरमा।
0: बरेली का सुरमा और बरेली का झुमका, वाकई दोनों चीजें बड़ी मशहूर है। मैं जानना चाह रहा था, देखता कि आपको जानकारी कितनी है। और कुछ मशहूर है
1: बरेली के अंदर? बाकी तो और बहुत सारे ऐसी दरगाह हैं आला हजरत साहब की।
0: अच्छा, खान पान वहाँ का कुछ ऐसा मशहूर है जो लोगों तक पहुँचाया जा सके?
1: खाने में
0: खाने
1: में जैसे यहाँ पे ज्यादातर लोग आते हैं खाने, तो वो यहाँ पे वो मिलता है, मुरादाबादी बिरयानी आती है।
0: नहीं तो मुरादाबाद पहुंच गया, मैं बरेली की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, बरेली का झुमका मशहूर है, कौन सा गाना था, जरा गुनगुनाइए
1: गाना मेरे को।
0: गाना झुमका बरेली वाला कौन सा था, कैसा था, हम भूल रहे हैं, थोड़ा सा बताइए गाना, गुनगुनाइए।
1: वो जो मेरा साया फिल्म का गाना है।
0: कौन सा?
1: झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में।
0: झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। हेलो, देखिए शायद लाइन में कुछ ऐसा डिस्टरबेंस हो गया है, लेकिन ये गाना जरूर पहुंचाऊंगा। और ये है, दो लोग लाइन पर थे हमारे साथ और एक की लाइन कट गई और एक की लाइन चालू रही, और ये गाना आपके लिए आपके रेडियो सेट पर।

0: और फिर एक फोन हमारे साथ आ गया है, जुड़ गया है, और वो भी बरेली से। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोरिया, तहसील नवाबगंज, बरेली, पुराना गांव चिड़िया सैदपुर।
0: हाँ, ये आपने अच्छा किया कि आपने पूरा पता बताया। और अभी बात ये चल रही थी कि गाना बड़ा मशहूर था बरेली से, तो
1: हाँ
0: थोड़ा वो
1: जी,
0: गाना आप
1: पूरा
0: गुनगुनाइए गंगवार जी।
1: गाना तो
0: नहीं,
1: नहीं आता है।
0: गुनगुना दीजिए हल्का फुल्का।
1: अच्छा, जितना आता है उतना
0: हाँ हाँ
1: गुनगुना
0: जितना
1: देते
0: आता
1: हैं।
0: है, कोई दिक्कत नहीं।
1: हाँ जी, वो क्या कहते हैं, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ऐसा ही कुछ सॉन्ग है, मुझे इतना ही मालूम है।
0: चलिए, आपने एक गाना सुनना चाहे दाग द फायर मूवी का, कुछ खास इस गाने में?

0: हाँ जी, जैसे मित्रों के नाम।
1: जी, पहले बताइए, गाना जो सुनना चाहते हैं ये डॉग द फायर मूवी का, मतलब कुछ खास है इस गाने में?
0: हाँ जी, इसका म्यूजिक और डांस बढ़िया लगता है गाने में।
1: म्यूजिक और डांस बढ़िया लगता है, लेकिन जो है गाना आप नहीं गुनगुना पाए हैं। हमें ये थोड़ा सा बड़ा मतलब अजीब लगा, बरेली वाला गाना आपने नहीं गुनगुनाया, लेकिन गाना हम आपको जरूर सुनाएंगे।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: साथ उसके 51 मिनट साथ में कुछ सेकंड्स में हूँ जमशेद आपके साथ आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम हेलो एफएम में और हमारे साथ भी कोई है। हेलो
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उज्जैन के क्या हाल चाल है? उज्जैन किस चीज के लिए मशहूर है, किस चीज के लिए जाना जाता है?
1: जी महाकालेश्वर बाबा के लिए मशहूर है, फेमस है, प्रसिद्ध है हमारा महाकालेश्वर बाबा का दरबार लगता है उज्जैन में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और वाकई उज्जैन बहुत मशहूर है। और कुछ अपने बारे में बता दीजिए आप।
1: जी जमशेद जी बताऊँ, फिल्म का नाम है जन्नत और गाने के बोले जो ख्वाबो ख्याल में सोचा नहीं था।
0: क्या बात है, जो ख्वाबो ख्यालों में सोचा नहीं था, ये गीत आपके लिए। और आप भी अभी मिला सकते हैं फोन 29 82 377 और 22 38 852 22 38 845 ये हमारे नंबर। मैं हूँ जमशेद आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर।

0: और मेरे इरादों में आप सभी लोग हैं जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं। और मेरा इरादा ये रहता कि ढेर सारी कॉल्स हों, ढेर सारे लोग हमारे साथ जुड़े और उनसे बात हो। जैसे कि इस वक्त को कोई लाइन से जुड़ चुका हो लाइन पर हमारे साथ और ये आखिरी कॉलर होंगे। हेलो,
1: अस्सलाम
0: वालेकुम। वाले साहब, कौन बोल रहा है?
1: सर, मैं यास्मीन बानो बात कर रही हूँ, बिस्मा सीतापुर से।
0: जी अच्छा, सीतापुर में गर्मी उसी तरह से पड़ रही है जैसे लखनऊ में पड़ रही है?
1: हाँ सर, बहुत गर्मी पड़ रही। मैं तो धूप में जाती हूँ 10 बजे, तो इतनी अल्लाह तौबा करने वाली धूप है।
0: तो उस धूप का सामना कैसे करती हैं? मुंह ढक के जाती हैं मुंह पे?
1: सर, मैं पूरा हिजाब पहन के जाती हूँ, छाता लेकर जाती हूँ, ठंडा पानी भी लेकर जाती हूँ अपने साथ में।
0: ये देखिए, बहुत जरूरी है गर्मी में अपना ख्याल रखना, बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं लगता कब गर्मी लग जाएगी। और टेम्परेचर देख रहे हैं बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: जी सर, बहुत हाई हो रहा है आज तो। मतलब जब 10 बजा था तभी, शायद 11 बजा था,
0: जी
1: 38 डिग्री था शायद।
0: जी जी और आज बांदा में सबसे ज्यादा था जैसा कि हमने अभी समाचारों में सुना ना।
1: जी जी जी
0: चलिए, गाना किसको सुनवाना चाहेंगी? बहुत जल्दी से बता दीजिए, वक्त बहुत कम है।
1: सर, जितने लोग सुन रहे हैं सभी को गाना स्पेशली डेडिकेट है। और बस
0: जी, बहुत शुक्रिया, और ऐसा ही डेडिकेशन बढ़िया रहता है, बहुत शुक्रिया। और ये आखिरी कॉलर का गीत, और मैं यानी जमशेद अब लूंगा आपसे इजाजत इस वायदे के साथ कि फिर किसी रोज किसी प्रोग्राम में मुलाकात जरूर होगी आपसे। तब तक खुदा हाफिज, शबा खैर। और हाँ, चलते चलते एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। खुदा हाफिज।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नववर्ष में 9 लाख से अधिक नौजवानों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये नौजवान नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं कर पाते यदि अच्छी सरकार नहीं होती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि यह आयोग पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जांच करेगा। मंत्रिमंडल में आगरा और लखनऊ मेट्रो के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज बांदा में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि जहां कहीं पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है उसे तत्काल ठीक कराया जाए। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण आयात में बाधा के बावजूद देश में रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं और भारत के पास पर्याप्त कच्चे तेल का भंडार है। आज नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और घबराहट में जमाखोरी न करने की अपील की है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग।
5: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग।
6: तो

0: Stay tuned. 100.7.
1: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तराने हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुनते रहिए आप शार 100.7 एफएम रेनबो पर, धड़कन

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow।
3: धड़कन लखनऊ की।
4: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुनते रहिए आबशार 100.7 FM रेनबो पर।

0: अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार।

0: जरूरी नहीं कि हर आरजू पूरी हो, लेकिन फिर भी कुछ चाहते ऐसी होती है जो मुकम्मल हो ही जाती है। और उन्हीं में से एक चाहत वो है जो अभी मेरी पूरी हुई है। जी हाँ, आपसे मिलने की ख्वाहिश, आपसे मिलने की चाहत, आपसे कुछ कहने की, कुछ सुनने की आरजू।
1: बस अधूरी सी।
0: क्योंकि यूं तो जिंदगी में कोई कमी महसूस नहीं होती, फिर भी कुछ लोग होते हैं तो लगता है जैसे नूर आ गया हो।

8:38 और ठीक 49 सेकेंड्स। आप शार से इजाजत लेने का वक्त आ गया है। थोड़ी देर में हम जुड़ेंगे हमारी दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या के लिए।

0: समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व

0: अर्थव्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े,

संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बड़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को

मंत्री ने बताया कि दोनों आयुक्त पहली जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के

0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
2: भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी से लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
1: Prime Minister Modi said the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
2: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: The Prime Minister hoped that using the scale, speed and talent of India, in collaboration with the technology and the capital of Norway, Indian companies would develop global solutions. Norway will also be joining the Indo-Pacific initiative. Both the leaders reiterated their common belief in rules-based world order and commitment to dialogue and diplomacy. Prime Minister Modi thanked Norway for standing firmly with India against terrorism during that difficult period and described it as a reflection of true friendship.
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
1: Multiple MOUs were signed in this bilateral meeting in the sectors of high-tech health solutions, digital health and digital public infrastructure. An MOU between India's ISRO and Norway's space agency will ensure deepening of ties in the space sector. A triangular cooperation agreement was also signed today. In this, India and Norway will jointly provide human development solutions to the country.

0: अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे यंगस्टर्स पढ़ाई कर ही नहीं पाते अगर उनके कानों में हेडफोन ना लगा हो।
1: मैं
0: हमारे भी जमाने में कुछ ऐसे ही होता था, हम रेडियो पर गाने सुनते थे और रेडियो पर गाने सुनते सुनते म्यूजिक को एंजॉय करते करते ये शो करते थे कि बड़ा हमारा मन लग रहा है, लेकिन कई बार लिरिक्स में या बीट्स में कुछ ऐसे उलझ कर रह जाते थे कि पढ़ाई तो कहीं पीछे छूट जाती थी। अब भाई आज के टाइम क्या होता है मैं ठीक से कह नहीं सकती क्योंकि मेरी पढ़ाई तो खत्म हो गई है, बट यस आपका क्या कहना है, स्पेशली मैं उनसे जानना चाहूंगी जिन्होंने इस गाने को सुपर डुपर हिट बनाया है। क्योंकि बोलने को तो ये भी कहा जाता है कि ये वाला गाना सुनते सुनते पढ़ाई में जी बड़ा ही मन लग जाता है, बड़ा ही मन लग जाता है। तो अनुव जैन के म्यूजिक का कमाल है या फिर यू ही फैशन का धमाल है। आजकल पढ़ाई का मतलब बारिश ही क्यों हो गया है, बारिश मतलब ये सॉन्ग सुनिए और अगर आपको पता है तो मुझे जरूर बताइए।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

नाचे नाचे खूब धूम मचाइए, लेकिन भाई पायल वायल बिल्कुल भी मत तोड़िए, क्योंकि नाचते टाइम भी अपना ध्यान रखना ये तो आपका काम है, आपका खैर मतलब इतना तो हमारा फर्ज बनता है ना। प्रोग्राम के नाम पॉप टाइम, मेरा नाम ज्योति मिश्रा और आप सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को 100.7 FM।

मनोज विश्वकर्मा जी का भी ईमेल मेरे सामने और ये लिख रहे हैं कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और भी मजेदार से शेयर करिए हमारे साथ तो बिल्कुल मजा ही आ जाए, है ना। सुल्तान रजा जी ने लिखा है, प्रोग्राम की शुरुआत बहुत खूबसूरत

ओके, जो शुरुआत में आपने बोला वो बात दिल को छू गई। और इन्होंने जो लिखा है वो भी बड़ी खूबसूरत सी बात है। कुछ सालों के बाद ना जाने क्या समा होगा, पता नहीं कौन सा दोस्त कहाँ होगा, फिर मिलना होगा तो मिलेंगे यादों में, जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में। नीलू शर्मा, स्नेहा सोनी, इन्होंने लिखा है, रिश्ता चाहे किसी से रखो पर हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा मगर कीमती और अनमोल। कैसी हो ज्योति दीदी जी, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। सारा, पीयू, मनु, रोशनी, बबीता, वंदना जी को भी नमस्कार बोला है। मोनू सेठ जी लिख रहे हैं कि जब हम पढ़ते थे तो मम्मी पापा डांटते थे, कहते थे कि पढ़ाई करते टाइम टीवी बाजा कुछ नहीं चलेगा, लेकिन अब तो कान में ब्लूटूथ लगा के पढ़ाई होती है। तब ऑफलाइन थे, अब ऑनलाइन हो गए। भाई देखिए मोनू सेठ जी, तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि चीजें बहुत ज्यादा बदल गई हैं। आजकल बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर के ही पढ़ाई करते हैं, और आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन दरअसल इस चीज से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि ज्यादातर नोट्स पीडीएफ में आते हैं, ज्यादातर लेक्चर्स ऑनलाइन होते हैं, और अभी तो ट्यूशन कोचिंग भी ऑनलाइन होने लग गई है। तो मैं इस बात के बारे में अब बस क्या कहूं, बट यस ऑफ कोर्स इतना जरूर कहा जा सकता है कि वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है। अरविंद दुबे ने धर्म देवा छठहा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से लिखा है, अरविंद दुबे, गोविंद, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, श्यामा कुमारी, दीपा, तन्वी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं कि चिंता मत करिए 12 बजे तक हम आपके साथ हैं। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट। नसीम अंसारी, मुन्नन अंसारी, फैज अंसारी, कुलदीप गुप्ता, बाबू अंसारी, सारे लोग लिख रहे हैं कि प्रोग्राम में मजा आ रहा है, कुछ और भी बताइए, कुछ मजेदार है ना, तब फिर बस प्रोग्राम की खूबसूरती और बढ़ जाती है। हवा के झोंकों पर तैरती आपकी आवाज जब भी कानों में घुलती है, पूरा दिन महक उठता है, ओ माई गॉड। माधव राज, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले, ग्राम गुबराहा से, थाना रानीपुर से, सबको ईमेल कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बातें इन्होंने लिखी हैं। पूरा ईमेल नहीं पढ़ूंगी क्योंकि अपनी तारीफ अपने आप पढ़ना अच्छा नहीं लगता है ना। इंद्रपाल मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे ईमेल के लिए। अमृता मोहली सीतापुर से, आशा, अवनीश, विनीश, अक्षत और गरिमा के साथ आपने ईमेल किया है। रामराज जी, जिला रायबरेली, गांव पहाड़ीपुर से, रामराज, राजू, भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, पवन कुमार, मिर्जा, इमरान बेग लिख रहे हैं कि जब आप ईमेल पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। भाई आपका ईमेल हम तक पहुंचता है तो यकीन मानिए हमें भी बहुत अच्छा लगता है। ये महसूस होता है कि आप सुन रहे हैं और अपना फीडबैक हम तक पहुंचा रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे साथ नाच रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, थिरक रहे हैं और तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन ताना ना करने की कोशिश भी कर रहे हैं।

9:37 and 14 seconds. तो अपनी अपनी घड़ियां मिला लीजिए और मेरे साथ ताल से ताल यू ही मिलाते रहिए। चलिए भाई, आगे कुछ और भी ईमेल्स आए हुए हैं जिन्हें पढ़ना ऑफ कोर्स बनता है। राजेश कुमार जी ने लिखा है, ओके, चिंटू से एक आदमी ने पूछा, बेटा आपके पापा का क्या नाम है? चिंटू ने कहा, अंकल अभी उनका नाम नहीं रखा गया, बस प्यार से पापा ही कहता हूँ। भाई वाह। मोनू सेठ जी ने लिखा है, कैसी हैं पॉप टाइम में एक बार फिर आपको सुनकर खुशी हुई। जिस तरह लू का प्रकोप शुरू हो गया है, बेवजह घर से ना निकलें, रेनबो से जुड़े रहें, दही छाछ तरबूज खरबूजा इत्यादि खाते रहें। बिल्कुल सही बात है मोनू जी, हमारी प्रकृति इतनी कंसिडरेट है और इतनी रिच है कि मौके के हिसाब से, मौसम के हिसाब से हमको ऐसी चीजें जरूर देती रहती है जो हमें हेल्दी रहने में मदद करें, लेकिन हम हैं कि उसकी वैल्यू समझते ही नहीं है ना। राजेश यदुवंशी ने हथरोना अमेठी से लिखा है, दुनिया में अपना केवल वक्त है, वक्त सही हो तो सब अपने हैं वरना कोई नहीं। प्रोग्राम पसंद आ रहा है जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और ये जो आपने बात लिखी है ना, बिल्कुल दिल जीत लिया आपने। विजयलक्ष्मी कुशवाहा ने लिखा है सांडी जनपद हरदोई से, रेडियो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, रेडियो का साथ हमेशा मेरे साथ रहे भी, क्यों नहीं सुबह 6 से लेकर रात 12 बजे तक 18 घंटे हमें ना आपके साथ लगातार। हेलो गुड इवनिंग मैम, गुलफशा सिद्दीकी संडीला से। मैम मैं इस वक्त अपने घर की छत पर हूँ और छत पर बहुत अच्छा लग रहा है और आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, खाना खा के आराम से प्रोग्राम सुना जा रहा है। भाई वाह क्या बात है, सही बात है, शाम का वक्त हो, ठंडी ठंडी चलती हुई हवा हो और खाना वाना खा के टहलते हुए अगर रेनबो सुना जाए तो क्या कहने। तो बस यूँ ही जुड़े रहिए हमारे साथ, अभी भी हमारे पिटारे में आपके लिए बहुत कुछ बचा हुआ है।

ये घर आना क्या है? मुझे लगता है कि ये घर आना है हम सबकी होम कमिंग। कैसे धीरे धीरे धीरे करके वक्त बदलता ही जा रहा है, हम कुछ करें या ना करें हमारे हाथ में फोन जरूर रहता है। यस, इस 5G की दुनिया में इंटरनेट से तो हम बड़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है। हालत ये है कि वॉशरूम भी जाते हैं तो फोन साथ में लेकर जाते हैं, लेकिन खुद से बात किए हुए हफ्तों गुजर जाते हैं। तो भाई थोड़ी देर के लिए इस चक्रव्यूह से बाहर निकलिए, स्क्रीन से नजरें हटाइए, जिंदगी की खूबसूरत धुन को महसूस करिए और खुद से कहिए कि अगर कोई और नहीं है जीवन में तो खुद से ही सही, लेकिन मोहब्बत कर ले रे।

ढेर सारे ईमेल्स मेरे सामने अपनी बारी का इंतजार करते हुए, तो जल्दी से इन्हें पढ़ दिया जाए। ऑलराइट, हियर वी गो। तो भाई इस वक्त जो ईमेल है मेरे सामने वो है सुनील सिंह जी का, विपुल सिंह इटहुआ कैसरगंज बहराइच से लिख रहे हैं, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है ब्रिज सिंह, दीपू छोटा भाई विपुल सिंह। एमन का भी ईमेल है संदीला से, हेलो डियर दी। जावेद अख्तर साहब, हद से आगे बढ़ गई चाहत मेरी, पहचान लेता हूँ कदमों की आहट तेरी, वो इजाजत तू सुकून जहन में उतारू, तेरे होठों पे रखी है राहत मेरी, पॉप टाइम कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से शमशुल कमर राही बेगम रुखसार। और किसका ईमेल है, किनका ईमेल है, किनका है, जीशान खान साहब, जीशान खान संडीला से लेकिन इस वक्त सऊदी अरेबिया में है, आपको सुन रहे हैं, मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं और मेरी वाइफ गुलफशा सिद्दीकी हम दोनों की तरफ से ओके आने वाली बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी सुनने वालों को। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया जो कि अपने टाइम निकाला और इतने खूबसूरत मैसेजेस हम तक पहुंचाए।

अब काला चश्मा जचता है या नहीं इसमें तो नो कमेंट्स, बट यस आपके रेडियो सेट पर एक ही चैनल जचता है एंड दैट इज 100.7 एफएम रेनबो। सो जुड़ी रहिए इसी चैनल से, स्टे ग्लूड, क्योंकि आपके लिए एक से बढ़कर एक जबरदस्त

0: कहते हैं ना कि जब आप अच्छे लोगों के साथ होते हैं तो वक्त बड़ी तेजी से गुजर जाता है। देखिए ना, 9:55 और ठीक 23 सेकंड्स हो गए हैं। इतनी तेजी से घड़ी की सुइयां आपके साथ जब होती हूं तो भागती रहती हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करने का टाइम जरूर आ गया है, लेकिन आपका और मेरा साथ अगले 2 घंटे और बना रहने वाला है। तो इस भागती दौड़ती जिंदगी में म्यूजिक को अपना हमसफर बनाए रखिए, अपनों के साथ दिल खोलकर मुस्कुराते रहिए और लाइफ को थोड़ा सा लाउड और कभी कभी थोड़ा सा सोलफुल भी बनाकर रखिए। एंड यस, स्टे ग्लूड टू योर ओन स्टेशन जिसका नाम है FM रेनबो। जय का ईमेल है सोनू परवाना का, आंचल सेठ का, विनीत कुमार का एंड सुनील सिंह जी का भी। तो बस इसी के साथ ज्योति इस प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करती है, लेकिन हमारा साथ यूं ही बना रहने वाला है। तो प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज कहीं मत जाइएगा।
1: प्ले, क्या बात है।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन लखनऊ में आयोजित कैबिनेट बैठक में आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेट्रो कॉरिडोर 2 आगरा कैंट से कालिंदी विहार में मेट्रो स्टेशन एवं वायडक्ट सेक्शन के निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस निर्णय पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री एवं आगरा दक्षिण के विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे आगरा के नागरिकों के लिए बड़ी

महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस निर्णय पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री एवं आगरा दक्षिण के विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे आगरा के नागरिकों के लिए बड़ी सौगात बताया। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यूपी कैबिनेट द्वारा समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दिए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि उसके लिए सामाजिक न्याय केवल राजनीतिक नारा नहीं बल्कि जमीन पर लागू होने वाली व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक और कानूनी रूप से मजबूत आधार देने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन एक ऐतिहासिक कदम है। ये आयोग ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्गों की सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी का अध्ययन करेगा ताकि आरक्षण का निर्धारण सही आंकड़ों, पारदर्शी प्रक्रिया और संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने आज विधान भवन स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में पशुपालन, दुग्ध विकास एवं पशु स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पशु चिकित्सा के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 4,000 रूपये से बढ़ाकर 12,000 रूपये किए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार का ये निर्णय पशु चिकित्सा शिक्षा को नई ऊर्जा देने वाला है। इससे छात्रों का उत्साहवर्धन होगा तथा पशु चिकित्सा सेवाओं में दक्ष मानव संसाधन तैयार करने में मदद मिलेगी। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में आजादी के बाद विभिन्न युद्धों में शहीद सैनिकों की स्मृति में स्मारक निर्माण की कार्ययोजना प्रस्तावित की गई है। इसमें से कुछ जनपदों में स्मारकों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। ये जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। वाराणसी में प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने हमारी जनगणना हमारा भविष्य अभियान को विकसित भारत की मजबूत आधारशिला बताते हुए नागरिकों से जनगणना में सक्रिय भागीदारी की अपील की। वाराणसी में उन्होंने कहा कि सटीक जनगणना आंकड़े शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और सामाजिक कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बेहद जरूरी है। मंत्री ने स्वयं जनगणना फॉर्म भरकर लोगों को सही और तथ्यात्मक जानकारी देने के लिए प्रेरित किया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 11 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

दिन भर की भागदौड़ के बाद अब शहर की रफ्तार धीरे धीरे थम रही है। सड़कों का शोर कहीं दूर छूट चुका है। खिड़कियों की रोशनियां एक एक कर बुझ रही हैं, लेकिन कुछ दिल हैं जो अभी भी जाग रहे हैं। कुछ बातें हैं जो दिन के उजाले में कह नहीं पाते, और कुछ यादें हैं जो सिर्फ रात की खामोशी में आवाज पाती हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर आपका अपना महकता हुआ कार्यक्रम रजनीगंधा। अगले दो घंटों तक हम साथ चलने वाले हैं उन गीतों के साथ जो सिर्फ कानों तक ही रुक कर नहीं रह जाते, बल्कि दिल के किसी बहुत पुराने कोने में जाकर ठहर जाते हैं। कभी किसी अधूरी मोहब्बत की तरह, तो कभी किसी पुराने खत की खुशबू की तरह। तो आइए रजनीगंधा के इन महकते फूलों के साथ इस खूबसूरत रात का सफर शुरू करते हैं।

0: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

पुराने वक्त की वो सादगी, वो मासूमियत, जब मोहब्बत निगाहों में होती थी, खामोशियों में होती थी, जज्बातों में होती थी और होती थी एहसासों में। कुछ गीत ऐसे ही हैं जिन्हें सुनते हुए लगता है जैसे किसी पुराने एल्बम का सबसे खूबसूरत पन्ना खुल गया हो।

चलिए इसी एल्बम का एक और खूबसूरत पन्ना खोलते हैं और आप तक पहुंचाते हैं एक और ऐसा ही खूबसूरत गीत।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुबह की खूबसूरत शुरुआत, सुकून से भरा दोपहर, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
3: है जगह,
2: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
4: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
2: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: स्टे ट्यून्ड टू स्टे अपडेटेड, कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की। अच्छा, कभी कभी किसी किसी को देखकर ऐसा क्यों लगता है कि आप इन्हें हमेशा से जानते थे? वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ आप अपनी पूरी उम्र गुजार देते हैं, फिर भी वो आपके लिए अजनबी ही बने रहते हैं। क्या हैं ये दिल के रिश्ते, कैसे हैं ये दिल के रिश्ते, और क्यों हैं ये दिल के रिश्ते?

यही रिश्ते यही नाते तो हैं जो जिंदगी को जीने के काबिल बनाते हैं। कभी होठों पर मुस्कान लाते हैं तो कभी दिल को दर्द से भर देते हैं। कुछ दर्द आंखों तक ही ठहर कर रुक कर रह जाते हैं, तो वहीं कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो रोम रोम में आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं। अगला गीत इसी दर्द को महसूस कराएगा आपको। किशोर कुमार की आवाज, संजीव कुमार की खामोश अदाकारी और मजरू सुल्तानपुरी के अल्फाज। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।

इश्क और मुश्क, इन्हें छुपाना आसान है क्या? अब देखिए ना, जब दिल में जज्बात होते हैं तो आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन फिर भी वो आंखों से, आवाज से और कभी कभी खामोशियों से झलक ही जाते हैं। और जब बात मोहब्बत की होती है तो लगता है जैसे पूरी कायनात बस उस नाम को ही बार बार दोहरा रही है। '72 की फिल्म एक नजर, मीर की अमर शायरी, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें। आप बस जैसे सुनना शुरू करते हैं आपको महसूस होता है मानो दिल किसी पुराने दौर में लौट गया हो। तो चलिए जाने कि क्या जानता है पत्ता पत्ता बूटा बूटा।

0: लखनऊ है तो महज गुम्बदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन

और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका।

का है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कह।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

जिंदगी कभी काश और कभी अगर मगर के बीच ही ऐसे ही बीत जाती है। कभी लगता है काश ऐसा होता, तो कभी लगता है काश वैसा होता। अगर ये होता तो क्या होता, अगर वो हो जाता तो क्या होता। लेकिन सब हमारे हिसाब से हो तो जिंदगी जिंदगी होती नहीं, ऐसा हो ही ना पाता। और तब हम ही कहते कि ऐसा समाना होता। जी हाँ, ये दिल ही तो है जो कभी कहता है कि उनके साथ चलते चलते ही जिंदगी बीत जाए, तो कभी ये दिल ही बोलता है कि ऐसा समाना होता, कोई भी यहां ना होता। चलो बाकियों की तो बात छोड़ दो, कम से कम मेरे हमराही तुम तो ना होते।

वक्त हुआ है 10:44 और ठीक 22 सेकेंड। आप सुन रहे हैं रजनीगंधा के फूलों से महकते मधमाते सदाबहार पुराने फिल्मी गाने, आज ज्योति मिश्रा के साथ।

चांद का हुस्न भी, चांद का हुस्न भी जमी से है, चांद का हुस्न भी जमी से है, चांद पर चांदनी नहीं होती।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर,
2: पुरानी जींस और गिटार,
1: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
3: है, आशिके जगा।
1: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
4: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
1: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की। जिंदगी में कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो परमानेंट है, लेकिन फिर भी जाने क्यों आप, मैं, हम सब इतने परेशान रहते हैं, ये जानने के बावजूद कि जो आज है वो भी नहीं टिकेगा और जो कल था वो भी टिका नहीं। फिर ऐसा क्यों है कि छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी सी टेंशन्स हमें इतना परेशान कर देती है। तो सीधी सी बात है ये कि 10:54 हो चुके हैं, आने वाला पल जाने वाला है और ये पूरा घंटा आपके साथ बिताते हुए मेरे मन में बस एक ही ख्याल बार बार आ रहा है कि अच्छा वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है ना। थोड़ी देर में लूंगी एक न्यूज ब्रेक और उसके बाद फिर ये सफर जारी रहेगा रात 12 बजे तक। सुनते रहिए रजनीगंधा, आज ज्योति मिश्रा के साथ।
5: सब्सक्राइब कीजिए और ये...

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन लखनऊ में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, व्यापक तथा गुणवत्तापरक बनाने के उद्देश्य से कई महत्व

महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के उपरांत आयोजित प्रेस वार्ता में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि योगी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार और गुणवत्ता दोनों स्तरों पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व जहां प्रदेश में केवल 16 राजकीय विश्वविद्यालय थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 24 हो चुकी है। इसी प्रकार निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 29 से बढ़कर 53 तक पहुंच गई है, जबकि 8 अन्य निजी विश्वविद्यालयों को आशय पत्र जारी करने की प्रक्रिया गतिमान है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आयोजित की जाने वाली वर्ष 2026 की पॉलिटेक्निक कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पूर्व में 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई थी। अभ्यर्थियों एवं विभिन्न संस्थानों द्वारा तिथि बढ़ाए जाने की मांग को दृष्टिगत रखते हुए छात्रहित में आवेदन की अंतिम तिथि को 20 मई 2026 तक अंतिम अवसर के रूप में विस्तारित किया गया है।

प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पूर्व में 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई थी। अभ्यर्थियों एवं विभिन्न संस्थानों द्वारा तिथि बढ़ाए जाने की मांग को दृष्टिगत रखते हुए छात्रहित में आवेदन की अंतिम तिथि को 20 मई 2026 तक अंतिम अवसर के रूप में विस्तारित किया गया है। परिषद द्वारा अभ्यर्थियों से अपेक्षा की गई है कि वे इस विस्तारित अवधि का अधिकतम लाभ उठाते हुए समय से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में समाधान समारोह 2026 के अंतर्गत एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रणाली को सरल, सुलभ एवं जन भागीदारी आधारित बनाना है, ताकि आमजन को त्वरित एवं प्रभावी न्याय उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने बताया कि ये महत्वाकांक्षी अभियान 21 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो चुका है और इसके अंतर्गत देश भर में विभिन्न स्तरों पर सुलह समाधान की प्रक्रिया निरंतर संचालित की जा रही है। इस कार्यक्रम का समापन 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयोजित